0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान शिव की और संपूर्ण गणों के साथ में उपासना हो रही है। षण्मुखः शिव संभूतः शक्ति वज्रधर प्रभुः अग्निशतनयो देवो ह्यापर्णातनय पुनः गंगायाश्च गणाभ्यायां कृत्तिकानां तथैव च विशाखेन च साखेन नैगमेये न चावृतः। जिनके छह मुख हैं भगवान शिव से ही और जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, शय इंद्रजित।

0: इंद्र सेनानी तारका सुरजित तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा तप्त चामीकर प्रख्यः शतपत्र दले क्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत् शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चकः सदा सत्कृत्य शिवयो राज्ञां समेदिशतु कांक्षतं। जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, और जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त और शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ज्येष्ठानां वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सामेदिशतु कांक्षितम्। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मान करके मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षाद उल्काकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विविध्यर्थम ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। मित्रता की कसौटी। यो मित्रताम निष्कपटम करोति निष्कारणो धन्तपम सह एवं विधाय मित्री कपटम विध्ययतात् तम लंपटम हेतुम पटम नटम धीकाम। जो किसी वस्तु की कामना नहीं रखता और सुधांत कारण हो मित्रता स्थापित करता है वही अनेकशः धनवान का पात्र है। जो मैत्री करके हृदय में कपट रखता है वह तो महाद्रुत है, उसके तो कार्यवश स्वांग रच लिया है एवं ऐसे मित्र को धिक्कार है। सभी ग्रहों का अंतशय सर्वेशयांतम निश्चयाः पतानांतम समुच्चया संयोग विप्रोगातम मारणातम च जीवतम। सभी ग्रहों का अंतशय है, बहुत ऊंचे चढ़ने वाले का अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। महात्माओं की वाणी

कल्याणकारी चंद्रशाशवम योक्तार्थम तमाशास्तम मृदा अंत शीतल योक्तेताम महामालाम त गिरह। महात्माओं की युक्तिपूर्ण निर्मल वाणी चंद्र किरण के समान निर्मल, सुख

0: है, जहां सत्य वहां भगवान वही विजय। यतम सत्यम यतो धर्म यतो ही राजवनम यतः तौ तो भवति गोविंदम यतः कृष्ण अस्तु हो जयाम। जिस ओर सत्य धर्म लज्जा और सरलता है उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वही विजय है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानामर्थ संघाणाम रसाणाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीणान पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं आज वेडनेसडे 26 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में। शिव सती की चरित्र को आगे बढ़ाते हैं।

कहानी। शिव जी सती माता से कहती है कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे दक्ष, उससे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं, इसलिए हे भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी।

यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बसन ज्ञान।

शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगत ब विदा की न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर लिया। पिता अब

ता भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे से उनकी सभी लोगों ने स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिले, बहनों ने भी बहुत मुस्कुराते हुए मिली। चले आज इसको यही विराम दूं आपकी ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।

करते हैं। सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। श्रावण मास तथा ब्राह्मण पर्व की श्रृंखला में आप श्रोताओं के लिए मेरा यह वक्तव्य इस प्रकार है। यह मंत्र अथर्ववेद के 12वें कांड के 5वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। 4 शब्दों के इस छोटे से मंत्र में गागर में सागर भर दिया गया है और सफल जीवन का पूर्ण चित्र खींच कर रख दिया है। सत्येन सत्य से आवृता सब ओर से युक्त श्रीया लक्ष्मी से धन से प्रावृता और अधिक युक्त यशसा यश से कीर्ति से परि चारों ओर से वृता युक्त हम सब जीवन भर रहे। इस मंत्र में सफलता की 3 सीढ़ियां बताई गई हैं। जीवन की पहली सफलता सत्य है। मनुष्य की उन्नति और अवनति की कसौटी सत्य है, जिसका साक्षी मनुष्य का अपना आत्मा है। इसी बात को योगिराज श्री कृष्ण जी ने गीता में कही है, उद्ररेदः आत्मनः आत्ममन्नः आत्ममानम् ह वसा दीयत् आत्मै वात्मनौ बंधुरः आत्ममय रिपु आत्मनः, कि अपनी आत्मा से अपने आप उद्धार करें, अपनी दृष्टि से अपने आप को न गिरा लें। यदि सत्य पर चलना हो तो मनुष्य का आत्मा बंधु के समान है जो उसकी सहायता करता है। यदि असत्य और धर्म पर चलना हो तो उसका आत्मा विरोधी बन जाता है। महाभारत में विदुर ने कहा, यह आत्मना पत्र पतेह भृशम नर स सर्वलोकस्य गुरुत्यवत भवत्युक्त। जो व्यक्ति किसी भी काम करने से पहले यह देख लेता है कि कहीं ऐसा काम न हो जाए कि मेरा आत्मा ही मुझे लज्जित करने लगे, वह समस्त संसार का गुरु होने योग्य होता है। इसीलिए सत्यमय व्यवहार जीवन की पहली सफलता है। ऋग्वेद में यह कहा गया है, सत्य नोप्तः भीता भूमि। इस संसार को सत्य ने संभाल रखा है। अगर सत्य निकल जावे तो संसार नहीं चल पाता। यह पृथ्वी सत्य पर टिकी है। सतपथ ब्राह्मण में और उत्तम बात आई है, स यह सत्यम वदति तथा अग्निनम समिज्यतम तम घृतेन अभीषितं चेत। जो मनुष्य सत्य बोलता है उसका जीवन घृत से प्रदीप्त अग्नि के समान उत्तरोत्तर प्रकाशित होता जाता है। वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनु महाराज का कथन है, नहीं सत्यात् परो धर्मो नात्रितात् पातकम परम, कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रद्धेय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती त्वरिया रामभोजन का सादर नमस्ते। वेदों का स्वाध्याय सच्चे अर्थों में जीवन का निर्माण करना है। ऋग्वेद का मंत्र प्रस्तुत है।

शांति शांति ही। शब्दार्थ इव जिस प्रकार मातृभिः अपनी माता से हिन्वानः प्रेरित परिवर्धित और पालित वस्तः बछरा अजयते सहायक प्रकार कांतिमान बनना है उसी प्रकार देवावीह इंद्रियों का संयम करने वाला मद सदा प्रसन्न रहने वाला मतिभिः परिष्कृतः सत्कारों सद्विचारों द्वारा सुशोभित अथवा विद्वानों द्वारा सुशोभित और विद्या आदि अलंकारों से भूषित विभूषित इंदुह परमेश्वर उपासक भी साधन के पथ पर चलता हुआ अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है। भावार्थ बछड़ा माता का दूध पान करते हुए अपनी माता का स्नेह और प्यार प्राप्त करता है। माता निस्वार्थ भाव से उसका पालन और पोषण करती है। परिणाम क्या होता है? बछड़ा कुछ ही समय में कांति संपन्न बन जाता है, देखने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों की संयम रखने वाला, दुख में शोक में आपत्तियों और विपत्तियों में कष्टों

और क्लेशों में सदा प्रसन्न रहने वाला, सत्कर्म करने वाला, सत विचार रखने वाला और विद्वानों द्वारा विद्या आदि शुभ गुणों से युक्त उपासक जब साधना करता हुआ ईश्वर की ओर बढ़ता है तो वह अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। हे ईश्वर, हमारे शुभ विचार एवं शुभ कर्म सब ओर से निर्विघ्न ऊपर उठते हुए चले जाएं।

0: यज्ञा यज्ञावु अग्नय गीरा गीरा च दक्षसे प्रप्रवयम् अमृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं नवंसिषम्।
1: विद्वान जनों का कर्तव्य है कि वे हर एक यज्ञ में सुमधुर वाणी से दिव्य शक्ति पाने के लिए प्रयत्न करें। जो शक्ति नाश रहित मनोहर और मित्र के समान है, उस शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे विद्वान लोग सभी से प्रीति उत्पन्न करते हैं और अपने कार्य को शांति के साथ साधते हैं, वैसे ही सभी को यथाशक्ति शुभ आचरण करना चाहिए।
0: ओम गाथपथिं मेधापतिं रुद्रं जलाशभेषजं तच्छंयो सुम्नमीमहे।
1: कोई भी मनुष्य परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के बिना स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा गाथपतिम है, अर्थात स्तुति करने वालों के रक्षक हैं। वही परमात्मा मेधपति है, अर्थात यज्ञ, परोपकार एवं पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों के रक्षक हैं। परमात्मा ने संसार में दुख एवं कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ, तप, योग एवं उपासना का मार्ग प्रशस्त किया है।

0: स्वाहा।
1: जिस धारणावती बुद्धि को देवता व विद्वान लोग चाहते हैं और पितर जानी जन जिस मेधावी बुद्धि की कामना करते हैं, वे सर्वोन्नति साधक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे आज ही मेधा बुद्धि का वरदान प्रदान करें। इसी जीवन में मुझे तेज बुद्धि से संपन्न करें। जिस बौद्धिक शक्ति को प्राप्त कर हमारे पितर और देवगण भगवान की उपासना में लगे रहे, मुझे वैसे ही मेधा शक्ति की प्राप्ति हो।
0: ओम मेधा मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु मे।
1: सर्वश्रेष्ठ तथा वरणीय परमेश्वर, आप मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करें। बुद्धि की शक्ति ही एक मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अग्निदेव जो सबको आगे ले चलता है और सबका कार्य सिद्ध करता है, मेधा बुद्धि प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो।

0: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम विधिमा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको विधिमा।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। खुशबा में 25 अगस्त को 7 महीने के मासूम आंध्रिया नुपेरिन के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी, जहां पिता द्वारा की गई उसकी हत्या से पूरा देश स्तब्ध और भावुक नजर आया। इस दुखद त्रासदी से आहत होकर बड़ी संख्या में रिश्तेदार और पड़ोसी उसे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि किस प्रोटोकॉल के तहत मंत्री के निजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया, और क्या इस दौरान सरकारी उपकरणों व कर्मचारियों का उपयोग हुआ, तथा ऐसी सुविधा अन्य आम मरीजों को भी मिल सकती है या नहीं। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी करना और अवैध शिकार पर रोक लगाना है। इसके तहत जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है, ताकि अधिकारियों को सटीक आंकड़े मिल सके। विदेश में कंट्री संगीत की दिग्गज गायिका डोली पार्टन का कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया, और कनाडा ने अमरीका पर 50% तक के डॉलर फॉर डॉलर जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। और
2: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
3: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये RM3 है, परवीज़ा के साथ है। उर्दू तशरियात बनामे सबल खैर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ीज़ामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताज़गी नसीब होती है। तो आइए मज़ीज़ामीन, इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया।

सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीजान आदल कायम कर दी कि उस मीजान में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तो

और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ए गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

ए गिरोह जिन्न इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बाहों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें दो चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है।
1: सदकल्लाहु लजीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कुरान पाक की तिलावत समात फरमाई। वजी सामीन, कोई शाफी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक कुरान से अफजल शान और मंजिलत वाला नहीं होगा। ना कोई नबी कुरान से अफजल होगा, ना कोई फरिश्ता। अल्लाह ताला हम सब को उन आयात मुबारका को समझने और अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों का नूर, हमारी कब्रों की वहशत और तन्हाई में सुकून और तसल्ली देने वाला, हमारी ज़िंदगी का रहनुमा और हमारे लिए रोज़ क़यामत शफ़ात करने वाला बना। आमीन। अल्लाह वो ज़ात है जो खालिक कायनात है, सब पे जहानों का पालने वाला है। वही राज़िक है, वही नाफ़े है, वही शाफ़ी। इंसान की हर सांस, हर लम्हा और हर ज़रूरत उसके हुक्म से पूरी होती है।

शामिल महतरम, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में गली गली चरागा किया गया। अहले सुन्नत की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जुलूसों का अहतमाम किया गया था। मज़ीद सामीन, मिलाद की महफिलों में अकायद व जहाँ से मोहब्बत का इजहार किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें ये सिखाती हैं कि अदल व इंसाफ, रहम व करम, अख़वत व मुसावात और एहतराम इंसानियत एक साले मुआशरे की बुनियाद हैं। आज जब दुनिया इंतहा पसंदी, नाइंसाफ़ी, मुआशर खलाफशार और डिजिटलाइजेशन के बेकाबू रुझानात जैसे चैलेंजेस से दोचार हैं, हमें यकीनन सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उन मसाइल का हल तलाश करना है। बेशक इनका हाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। अल्लाह हम सब को सुन्नत रसूल पर चलने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रख कर चलने की तौफीक दे। आमीन।

ये और एम फ्री हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मजलिस उर्दू बनाम सब अल खैर में, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं महफिल में आपका खैर मकदम है। मज़ीज़ामीन, अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर रबीउन नूर का मुबारक महीना अता फरमाया। क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रबीउन नूर का महीना है, खुशबुओं का सफीना है, जहाँ में आ गई रहमत मदीने का मदीना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से चमक उठा जमाना है। हर एक दिल बाग़ ईमान है, हर एक लब पर तराना है। वो आए तो हुई रोशन ज़मीन व आसमान की फ़ज़ा, वो आए तो हुई कायम मोहब्बत की हुकुमरानी का सदा।

0: सामईन कराम, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्चाई, आजिज़ी, सब्र, इंसाफ, मोहब्बत और रहम की तालीम दी। रबीउन नूर वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर इंसानियत को हिदायत का नूर अता किया है। मज़ी सामीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रोशनी और रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें सबक दिया है। घर के मामलात हो या तिजारत, इबादत हो या मुआशरत, दुश्मनों से सलूक हो या दोस्तों से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल इंसानियत के लिए कामिल मिसाल है।
1: आग

ये आरएम फ्री है पर वीजा का साथ दे रहेगा दिन के 7 बजे तक। उर्दू नशरियात सबल खैर में शामिल मोहतरम, रबीउन नूर का ये मुबारक महीना हमें ये पैगाम देता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सरासर मोहब्बत, अदल, अख़वत और इंसानियत के लिए रहमत है शामिल मोहतरम। लेकिन हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को न सिर्फ पढ़ें और सुने बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएं। ये सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।

यकीनन एक सच्चा मुसलमान वही है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आजजी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह के लिए आजजी करने वाला बुलंद कर दिया जाता है, और तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मज़ीद सामीन, हमें उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरान की आयात, अहादीस सुनात के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रोशन पहलू को समझा और दिल में जगह दी। आइए इससे बाबरकत महफिल का इख्तिताम अल्लाह ताला से दुआ के साथ करें। या अल्लाह, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में मोहब्बत, सब्र, आजजी और नेकी पैदा फरमा। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज और रहनुमा हो। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तकनीकी मदद अंजू से मुयस्सर हुआ है। मशकूर।

योवाणी सिलवाणी रुबेन हरेन गालेन मेवी योबिलन नकीरन दोवेना कियान कियाना यस्वामी गोइंगन कुरुवितार आगियोर इन सार्मिले नोटिकले कुरुगिनार्कल इंट्रिक्कु लंगमोते नूरे चेरंद तिर्मदी सेल्वीना कुलन अवर दे प्रदाप्डावे कुन्दार्किरा अवर उड़ी यतुने वन रिसन मेलों मामियार पद्मिनी मेलों पैतुसा बूरे चेरंद वानं मनोगन मुरुगन विनायगन गांबियोर चेरंद अम्मा नीला ஆகியோரின் சார்பில் வட்டுக்களை கூறுகின்றார்கள். இன்றும் இஸ்தான்லே ரோஸில் வசிக்கும் திருமதி பத்மினி பிசஸோ அவரது பிறந்தவிழாவை கொண்டாடுகிறார். மேலும் சின்ன பயில் குடும்பத்தார் ஆகியோரின் சார்பாக நல்வாட்டுக்களை கூறுகின்றார்கள்.

0: रिंग तड़ तड़ तड़ दुदुम दुदुम
1: इज इट ओके
2: इज इट ओके
1: ओके ओके

चलो गुजराती गीतों की मजा मरता सुंदर मजा आगलो गीत लई ले कीर्तिदान घड़वी अवाज में लेवा गुजराती कंपाइलेशन नु गीत।

नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो। जी हाँ, आज बुधवार 26 अगस्त 2026 और आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में उषा कौर आपके साथ और साथ निभाऊंगी 11:30 बजे तक, आप ही साथ निभाएगा। सबसे पहले लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओ, जीवन में हम हर दिन कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। कुछ कर्म हमें अंदर से सुकून देते हैं और कुछ कर्म बाद में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना, ज़रूरत के समय किसी का साथ देना, ये सब अच्छे कर्म हैं। और जब हम किसी को धोखा देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ गलत करते हैं, तो वही गलत का कर्म बन जाता है। कहते हैं ना, भगवान से कुछ छुपा नहीं होता। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाइए। आज एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए, शायद आपके लिए वो बहुत छोटा हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही सबसे बड़ी खुशी होगी।

11:05 हुए हैं दोस्तों। पुण्य और पाप की बात केवल मंदिर पूजा या धर्म तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोज के व्यवहार से जुड़े हैं। हम किसी से कैसे बात करते हैं, किसी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, किसी की ज़रूरत में उसका साथ देते हैं या नहीं, ये सब हमारे कर्म है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा काम वही है जो दुनिया को दिखाई दे, परंतु सच्चा पुण्य तो वो है जो बिना किसी को बताए किए जाए। और पाप भी हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी किसी का भरोसा तोड़ना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना या जानबूझकर किसी को दुख देना भी गलत कर्म है। इसीलिए ज़िंदगी में इतना ही ध्यान रखिए, हमारी वजह से किसी को दुख कम और खुशी ज़्यादा मिले, शायद इसी का नाम अच्छे कर्म है।

11:13 हुए हैं। श्रोता गणेश जी हमें एक बात बहुत सुंदर बात सिखाती है, हर बड़े काम की शुरुआत धैर्य और विश्वास के साथ होनी चाहिए। गणेश जी को बुद्धि और समझ का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि जीवन में केवल तेज चलना ज़रूरी नहीं, सही सोच के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है। जब रास्ते में रुकावट आए तो घबराए नहीं, हर रुकावट हमें कुछ सिखाती है और भी मजबूत बनाने का अवसर देती है। और गणेश जी से प्रेरणा लेकर आज एक संकल्प लीजिए, रुकेंगे नहीं, सीखते रहेंगे और हर नए दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ करेंगे।

तो श्रोताओं, अब इस सुंदर कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। आज हमने भक्ति की बातें की और गणेश जी से यही सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, हमें अपनी सोच और हौसला नहीं खोना चाहिए। गणेश जी को याद करके अपने मन में अच्छे विचार रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आइए। गणपति जी से बस इतनी प्रार्थना, हमारे घर में सुख रहे, मन में शांति रहे और हर कदम पर सही रास्ता मिले। इसी सुंदर भावना के साथ उषा को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम और नए विचारों के साथ। नमस्कार, शुभ दिन। हमारी मुलाकात होगी दिन के 12 बजे सुनहरे सुहाना सफ़र प्रोग्राम को लेकर।

0: चलिए अगले सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। पहली अक्टूबर से टॉफी, जाम, बिस्कुट, वेफर, जेली और च्युइंगम जैसे मीठे उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स विस्तार फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उद्योग मंत्री अदिलामिया मियान की अध्यक्षता वाली समिति ने इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। समिति ने सोमवार को GESTE के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर टैक्स की लागत, कीमतों और स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पर चर्चा की। अंतिम फैसला समिति की सिफारिशों और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी मजबूत करना और अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। नए नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त मछली पकड़ने वाले जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है, जिससे अधिकारियों को गतिविधियों और पकड़ी गई मछलियों का डेटा हासिल करने में मदद मिलेगी। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्री के निजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में उनकी चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी। MHOA के अध्यक्ष डॉक्टर विनेश सिवसन ने निजी डॉक्टर के चयन के अधिकार का सम्मान करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें सरकारी अस्पताल के उपकरण और कर्मचारियों की सेवाएँ किस आधार पर उपलब्ध कराई गईं। NCE 2026 की परीक्षाएं 2 से 16 अक्टूबर तक 7 दिनों में आयोजित होंगी। परीक्षा की शुरुआत आर्ट एंड डिज़ाइन से होगी, जबकि 16 अक्टूबर को गणित यानी मैथमेटिक्स की परीक्षा के साथ सत्र समाप्त होगा। इस बीच सरकार ग्रेड 9 में NCE समाप्त करने की तैयारी कर रही है। सुधार का अंतिम ब्लूप्रिंट पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा गया है और समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। और विदेश में रूस के अमूर इलाके में एक गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से 6 चीनी नागरिकों सहित 7 लोगों की मौत हो गई है और 152 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रुई एडवा हर्ट ट्रेफल रोसिल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की बीबी वाहिदा बी रामजान, जो वाहिदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम 4:15 बजे उनके घर रुई एडवा हर्ट ट्रेफल रोसिल से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए खुद उगने की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए सैमोते मोहश का कब्रस्तान। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 4:15। मारूसम स्ट्रीट रूट जॉर्डन क्यूपिप में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड के जनाब हफेज इब्राहिम, जो हफेज नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे स्वाले जुधन के घर मारूसम स्ट्रीट रूट जॉर्डन क्यूपिप से उठाकर बिगाहा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। नंबर 51 इनका मान स्ट्रीट वालीपितो में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की बीबी नसीबा जोदू, पैदाइशी नाम कानुआ और जो बैन

0: नाम से भी जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनकी बेटी रुकाया बी फुतुली के घर नंबर 51 इनकमान स्ट्रीट वाली पीतो से उठाकर कौंडमास पावे का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: RN Free Radio Manoranjana Sathi Pahilya Vati Divsachi Hardik Shubhechha.
5: Pahila Varasni Varsgaanthni Tamne Baddhane RM2 Ane RM3 Tarafthi Ghani Ghani Shubhkamnao.
6: Radio Manoranjan Aur Radio Masti Ke Pahil Ka Salgira Ke Dher Bana Shubhkamna.
7: Radio Masti Mari Radio Manoranjan Ku Duli Varshikotsava Shubhabinandanalu.
8: Eeniya Mudal Aandu Niraivu Nalvaattukkal RM Free RM2.
9: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
10: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: दिन के 12:05 हुए हैं दोस्तों, नमस्कार आप सबको। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ आरएम फ्री रेडियो, और आज बुधवार 26 अगस्त 2026 प्रस्तुत है सुहाना सफर कार्यक्रम। और आज का दिन दोस्तों बहुत ही खास है। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 2 बजे तक। जी हाँ, भी साथ निभाएगा। और क्या कहते हैं, हमारा जो आज का दिन है बहुत ही खास है आज का हम सभी के लिए, क्योंकि हमारा अपना RM2 और RM3 रेडियो अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं। एक साल का ये सफ़र सिर्फ एक साल का सफ़र नहीं, बल्कि हज़ारों यादों, खूबसूरत गीतों, मुस्कुराहटों, आवाज़ों और आप सबके प्यार के भरा सफ़र है। और आज का ये दिन रेडियो का जश्न नहीं, हमारी पूरी टीम का जश्न है। और साथ आप भी साथ मिलकर ये जश्न मनाएंगे। और हमारे जो पूरे टीम है यहाँ पर इस समय गुडलैंड्स में है, और गुडलैंड से लेकर अभी अर्बन टर्मिनल चले गए हैं पोर्टरिस में, जहाँ वो लोग मना रहे हैं रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की पहली साल की सालगिरह। तो आप भी साथ निभाइएगा, खूबसूरत गीतों को हम लेकर आए हैं, सुनते जाइए और बीच बीच में हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने कहा RM2 और RM3 रेडियो अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं, तो आइए इस खास मौके पर हम साथ मिलकर मनाएं और ये आवाज़ यूं ही दिलों तक पहुंचती रहे। और यहाँ पर हमारी सहयोगी सुमी है, उनको जाकर सुनते हैं कि वहाँ पर अर्बन टर्मिनल में क्या हो रहा है। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून उषा, गुड आफ्टरनून हमारे सभी रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स को।
0: यस,
1: इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी और इस समय रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम है यहाँ पर। सवेरे हम कुछ बेंच में थे और अभी हम विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल ऑफिस में है। अगर हमारे लिसनर्स आस पास है, हमें सुन रहे हैं, तो आइए हम चलिए।
2: जरूर, हाय उषा एंड हेलो हमारे सभी फोन,
0: हेलो
2: सभी हमारे रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स को। तो उषा, मैं जानती हूँ कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये लोग बड़े मस्ती कर रहे होंगे।
0: क्या
2: हम जरूर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, जिस तरह से आप हमारे ऑडियंस को मनोरंजन का कर रहे हैं वैसे ही। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, काफी सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब हम आएंगे उनसे मिलेंगे। तो अभी हम पब्लिक से सबसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल उषा जी, आप अभी इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ हैं, तो रेडियो मनोरंजन पर आप जानते ही हैं, कल से यानी कि कल से नहीं, काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन है और कल तो स्टूडियो में सेलिब्रेट किया था, लेकिन आज हम आए हैं स्टूडियो के बाहर टू सेलिब्रेट विद ऑल द लिसनर्स। हर एक रीजन में हम जा रहे हैं, गुडलैंड से निकल के अब हम पोर्टलुइस आए हैं अर्बन टर्मिनल। तो अगर

0: आप आसपास है काम कर रहे हैं, जो काम अमीट अचीव जहाँ पर आपके लिए इनाम है, आपके लिए गातो है, आपके लिए कादो है, बहुत कुछ है। सो वंस अगेन हमारे सभी लिसनर्स का तहे दिल से हम धन्यवाद कहेंगे, इतना प्यार आपने हम तक पहुँचाया। एक साल कंप्लीट हुआ है और उम्मीद करते हैं कि कई और साल तक आपको ऐसे ही मनोरंजन हम देते रहेंगे।
1: एक्चुअली जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको बता दें एनडीसी रेडियो की पूरी टीम है ही यहाँ पर, साथ ही हमारे जो स्पॉन्सर है लोटोवेयर उनकी भी पूरी टीम है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इस समय अभी हम लाइव है पोर्ट लुइस में, तो आइए हमसे मिलिए, थोड़ी देर में यहाँ का पूरा प्रोग्राम जो है आप रेडियो पर भी सुन पाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नीतू भी है, हेलो उषा,
2: हेलो नीतू,
3: रेडियो मनोरंजन के हमारे लिसनर्स है श्रोता है सबको कहेंगे आप सभी को हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी एनिवर्सरी आपको भी, क्योंकि आप सभी हमारे साथ मना रहे हैं। यस वी आर अर्बन टर्मिनल और जितने भी लोग, कई लोग हमें सुनकर गुड लेंस से सुनकर यहाँ पर आ गए हैं, हमको फॉलो भी कर रहे हैं, तो हमारे जो पार्टनर हैं लो तो वे हमारे साथ हैं, तो जुड़े रहिए और मस्ती करने वाले हैं। कोटली से निकलकर हम जाएंगे होसबेल और होसबेल से हम खत्म करेंगे इस रोड शो को आज फ्लाक। तो अभी तो वी आर सपोर्ट विद रेडियो मनोरंजन और एम टू मस्ती टीम हमारे साथ है, आप सब भी जुड़े रहेंगे, आपका प्यार इतना बेशुमार मिलता है। तो आइए यहाँ पर चिप्स है, केक है, गातो है, सब कुछ शेयर करेंगे, शेयरिंग एंड लव एंड हैप्पीनेस आप सभी के साथ।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना हमारी टीम जो वहाँ पर है इस समय तैयार हो जा रही है, क्योंकि शुरू हो रहा है सेलिब्रेशन टाइम, और वो भी हमारी टीम के साथ।

12:24 हुए हैं दोस्तों, तो आप कहीं मत जाएगा। जैसे कि हमने कहा, अभी हमारे पूरे टीम रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन टीम अभी समय पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल में है, जश्न मना रहे हैं हमारी पहली सालगिरह। जी हाँ, और आज का दिन हमारे नाम और आपके नाम भी, तो बारी बारी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।

0: Well, a very good afternoon to you, Nilmani. That was Nitusha. Nitusha ke haath mein mic tha, apne Ginisha bol diya aur hum hazir ho gaye. Yes, Nilmani, we are right now at Urban Terminal at Port Louis. We are celebrating the first anniversary of RM2 Radio Masi aur RM3 Radio Manoranjan. Cake bhi hai, gatto jaise bolte hain. We have gifts, we have giveaways, and sare RJs hain, Nitusha hain, main hoon. We have Sumi, we have Vedita, we have Pari. Hamari puri team hai, and Lotto Vea. Yes, they are with us, and yes, we would love to thank our sponsors as well. Jo hain jinhone gato sponsor kiya hai, wo hain Mulka Boulangerie and Patisserie from Okule. So ye sare cheezon ko lekar itne sare log jo hain hum aa gaye hain right now at Port Louis to celebrate. Aur Nitusha batayegi ab kya karenge next.
1: Well, subah se dhamaal kar rahe hain. We were at a Goodland, so Goodland se nikal kar hamari puri team with Lotto Vea, we are at Urban Terminal. So once again wishing you all a very good afternoon. Namaste sabko ke. Hello. Yes, बहुत सारे लोग हैं. हम कहेंगे और भी आप आगे आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ है बहुत सारे लेडीज टेबल के पीछे पड़े हुए हैं गातो कुपे करने के लिए, एकदम रेडी है. तो बस हमारे साथ है, जैसे कि हमने कहा, हमारा जो मेन पार्टनर है Lotto Vea, एंड वी हैव विद अस मिस्टर पृथ्वी राज.
0: सबसे पहले जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको हम इन्वाइट करना चाहेंगे, टू ऑफ दोज लवली पीपल जो अभी फूड कोर्ट में बैठे हैं, जो ऊपर से भी आप देख रहे हो, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, जो बसेस बस स्टैंड पे खड़े हैं बसेस पकड़ने के लिए, आप यहां पे आ जाइए, क्योंकि वी आर गोइंग टू हैव अ बिग सेलिब्रेशन ऑफ आवर फर्स्ट एनिवर्सरी.
1: तो चलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात चल पड़ी है. As I said, Lotto Vea Nure Fea. बस Lotto Vea की बात चल पड़ी है. वी हैव मिस्टर पृथ्वीराज सिबोरत, और आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, यू आर अ पार्टनर, इट्स अ प्रिविलेज हमारे लिए RM2 RM3 रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट एनिवर्सरी. तो आप हमें बताएं Lotto Vea का हमारे साथ जुड़ने का पर्पोज क्या है.
2: नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून एवरीवन. या एज यू सेड, Lotto Vea wanted to join the celebration and celebrate the first anniversary of RM2 and RM3 because we believe MBC as a national broadcaster and Lotto Vea have some heritage values and cultural values that we share in common. MBC brings some happiness through the entertainment and music, and Lotto Vea, we bring happiness through our game.

0: we bring smile in families and in every household. We put some smile after every row because we have what we call Payer Bank Asset. Every row, we guarantee there will be winner. So we believe that this is a great opportunity to collaborate with MPC and share our common values.
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि MBC Radio, MBC TV जो है हम entertain करते हैं music के जरिए और आप लोग entertain करते हैं लुधुविया के जरिए. And ये एक दिन के लिए ये नहीं है, ये हर हफ्ता होता है.
0: बिल्कुल ठीक, because we have two draws every week, Tuesday and Fridays, where we guarantee our big win amount will be won. And to celebrate as it should be, this Friday, to end the month of August, we are giving people not one, not two, but a big win of 3 million rupees guaranteed to be won on this Friday.
1: Oh, so, my God. 10 million.
0: 3 million guaranteed to be won.
1: मैं गिर जाऊंगी, सुमी पकड़ो.
0: गिरना नहीं, अभी we have the full day to carry on.
1: चलिए, thank you so much. So यहाँ पर लुधुविया की बात चल पड़ी है. Why not कुछ थोड़ा सा questions हो जाए?
2: बिल्कुल. और जितने रेडियो मस्ती के listeners हमारे साथ हैं, इस समय रेडियो मनोरंजन पे भी हम live हैं. So आप सभी का भी हम welcome करते हैं. आप अगर आसपास से हमें सुन रहे हैं, please come and join us. और यहाँ पर games है, आपको gifts मिलेंगे, vouchers मिलेंगे. थोड़ी देर में केक कटिंग होगी. हमारी पूरी टीम यहाँ पर आज आई है आप सभी को एंटरटेन करने के लिए. क्यों वेदिता?
3: एग्जैक्टली सुविधा, थैंक यू सो मच गाइज. अभी हम लोग पोर्ट्रेस में अभी सबके साथ मुंह मीठा करने वाले हैं, केक काटने जा रहे हैं. सो आप लोग प्लीज हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए. एंड वंस अगेन हमारे पूरे रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन टीम की तरफ से थैंक यू सो मच.
1: तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. यस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने से पहले Let cut the cake.
2: Yes.
1: Cake cutting हो जाए पहले, then questions पूछेंगे आराम से.
2: जितने भी लोग हैं हम कहेंगे थोड़ा सा पास,
1: थोड़ा सा पास आ जाएगा प्लीज. आप लोग आगे आ जाएगा, सबके लिए गातो है, सबके लिए केक है, स्वीटनेस एवरीवेयर. एंड ऑफ कोर्स वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन.

0: साल, एक सफर और हजारों यादें, म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें।
1: RM2 रेडियो मस्ती, हर पैशन के संग
0: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक, आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरी बीट ऑफ RM2। एक साल में मिले कितने सारे दोस्त और सबसे बढ़कर आपका प्यार। आज बोलियो थोड़ा लाउड करो, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो। दिस इज आवर सेलिब्रेशन।

मस्ती का स्टेशन, म्यूजिक का सेलिब्रेशन, RM2 रेडियो मस्ती, वन ईयर ऑफ प्योर सेंसेशन, हैप्पी एनिवर्सरी RM2। रेट्रो रिदम RM2।

चलिए दोस्तों, खूबसूरत गीतों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। ऐसे ही बारी बारी में हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे लाइव फ्रॉम अर्बन टर्मिनल पोर्ट लुइस, जहां हमारे आर एम टू रेडियो पहली सालगिरह मना रहे हैं।

0: कि आरएम फ्री और आरएम टू रेडियो अपनी पहली सालगिरह मना रही है, तो फिर से एक बार हम चले जाएंगे अर्बन टर्मिनल पोर्टलिस, जहां हमारी सहयोगी है सुमी। हेलो सुमी।
1: हेलो हेलो उषा। हेलो हमारे श्रीमती लिसनर्स, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। एक साल हो गया है रेडियो मनोरंजन को, इतना प्यार आप दे रहे हैं, इतना आपका साथ मिल रहा है। ये आप ये जो आवाजें सुन रहे हैं, इस समय इतने लोग इस समय हमारे साथ अर्बन टर्मिनल में जुड़े हुए हैं, हमारी इस खुशियों में आप सभी शामिल हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे गिफ्ट दिए जा रहे हैं और साथ ही हमारे जो स्पॉन्सर है लोटो वेयर, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम गुडलैंड में थे, गुडलैंड से अभी हम ओटूट आए हैं। अभी यहाँ से निकलकर हम रोजवेल मॉल बाय वेस्ट जाएंगे। तो
0: जी
1: हाँ, आप हमें सुन रहे हैं,
0: जी हाँ सुमी,
1: देर में आप आ सकते हैं। यस
0: सुमी, मुझे आभास हो रहा है कि वहाँ का माहौल इस वक्त वहाँ कैसा है। मैं नर्मदा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले, जैसे कि आप बोल रहे थे कि गुडलैंड्स में माहौल बहुत ही जोशीला रहा था, तो मैं उस माहौल को मैं जी कर ही अभी स्टूडियो में आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टूडियो में भी माहौल कुछ कम नहीं है और हम आप लोगों को समय समय पर सुन रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम जी रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं हमसे कनेक्टेड है।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच नर्मदा जी, अंडर योर गाइडेंस इस एक साल के अंदर हमने इतना कुछ किया, इतने सारे इवेंट्स हमने किए। साइड हो गया, होम में रिक्रिएशनल सेंटर्स में होता है, फिर साथ ही हमने इतना बड़ा स्वीट कॉम्पिटिशन किया और आज हम एक साल सेलिब्रेट करने के लिए अराउंड द आइलैंड घूम रहे हैं।
0: जी जी, ये सब आप जितने भी आजिज हैं सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी कहना चाहूँ कि अभी जैसे कहते हैं ना, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे। तो धन्यवाद सुमी,
1: धन्यवाद। और एक बार फिर हमारे लिसनर्स को याद दिला दीजिए कि थोड़ी देर में हम रोजवेल जाने वाले हैं। आस पास है रोजवेल मॉल बाय वेस्ट, तो वहां पर आइए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच
0: जी। थैंक यू सुमी।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

यही वो जगह है जी हाँ जहाँ आप लोगों का मनोरंजन होता है RM Free Radio रेडियो मनोरंजन पर और आप इस समय सुन रहे हैं सुहाना सफर प्रोग्राम इस गीत के साथ हम भरेंगे एक बजे के संक्षिप्त समाचारों के साथ तो आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। एनसीई 2026 के उम्मीदवारों को अब अपनी परीक्षा की तारीखों की जानकारी मिल गई है। परीक्षाएं 7 दिनों में 2 से 16 अक्टूबर तक होंगी। परीक्षा सत्र की शुरुआत शुक्रवार 2 अक्टूबर को आर्ट एंड डिजाइन से होगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को इंग्लिश और आईसीटी, जबकि 7 अक्टूबर को फ्रेंच तथा सोशल एंड मॉडर्न स्टडीज की परीक्षाएं होंगी। 9 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी स्टडीज के दोनों भागों की परीक्षा होगी। इसके बाद 13 अक्टूबर का दिन काफ़ी व्यस्त रहेगा। इस दिन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के साथ साथ भाषाओं की 8 परीक्षाएं होंगी, जिनमें हिंदी, अरबिक और ख्योल मोगसियाँ भी शामिल हैं। वहीं साइंस की परीक्षा 15 अक्टूबर को और मैथमेटिक्स की परीक्षा 16 अक्टूबर को होगी। ये परीक्षा सत्र एक खास परिस्थिति में हो रहा है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ग्रेड 9 में एनसीई को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अंतिम ब्लूप्रिंट पिछले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भेज दिया गया है। अब इसकी समीक्षा की जानी बाकी है, जिसके बाद इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। हमारे समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखना और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करना, इसके लिए फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त मछली पकड़ने वाले जहाज़ों पर इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स को और मजबूत किया जाएगा। ये एक ज़रूरी व्यवस्था है, जिससे अधिकारी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे और पकड़ी गई मछलियों से जुड़ी जानकारी भी इकट्ठा कर सकेंगे। और विदेशी स्तर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज सुबह एक अस्पताल में आग लगने से करीब 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस अस्पताल की नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आग लगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। नंबर 51 इनकमान स्ट्रीट वाले पिटू में 68 साल की 68-year-old की मिसेज बीबी नसीबा जोडू, पैदाइश नाम कानोवा और जो बेन से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुबह बाद के 3 बजे उनकी बेटी रुकैया बी फतेली के घर नंबर 51 इनकमान स्ट्रीट वाले पिटू से उठाकर कौंडमास्क पावे का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। रुई एडवर्ड हार्ट ट्रैफल रोजिल में 65 साल की 65-year-old की मिसेस वाहिदा बी रामजान, जो वाहिदा से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4:15 बजे उनके घर रुई एडवर्ड हार्ट ट्रैफल रोजिल से उठाकर गुत इग्ने की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए सैमोते मोगुश का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4:15 PM। मारूसम स्ट्रीट गुत जौदे क्यूपिप में 92 साल के 92-year-old के जनाब हाफिज़ इब्राहिम, जो हाफिज़ से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुपहर बाद के 3 बजे उनके बेटे स्वाले जोधन के घर मारूसम स्ट्रीट गुत जौदे क्यूपिप से उठाकर बिगाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: RL3 Radio.

0: रेडियो
1: साल भर में सबसे प्यारा
2: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साथी पहला वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
3: पहला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बधाने आरएम 2 अने आरएम 3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
4: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
5: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु।
6: इदिय मुदल आंडु निरेवु नलवाटुकल ऑरएम फ्री ऑरएम 2
7: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
8: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: दोपहर के 1:05 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र ऑन आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन। जी हाँ, अब हम जारी रखते हैं ये खूबसूरत कार्यक्रम, और जैसे कि हमने कहा आरएम टू और आरएम फ्री रेडियो अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं, और वो भी हमारी पूरी टीम के साथ। एक साल सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि हज़ारों यादें, अनेक मुस्कुराहटें, मेहनत, नए अनुभव और सबसे बढ़कर आप सभी श्रोताओं का प्यार। जी हाँ, यहाँ पर हम जारी रखेंगे ये खूबसूरत कार्यक्रम 50s, 60s और 70s के पॉपुलर गाने के साथ, और हम आपको आप लोगों से हम मांग करते हैं कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ मनाना चाहते हैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, तो आप कुछ बातें कर सकते हैं हमारे साथ, दो लाइंस, कि आपको कैसा लग रहा है, महसूस कर रहा है घर पर बैठे बैठे ये सब जो हो रहा है यहाँ पर, और हमारे जो टीम है बाहर है मना रहे हैं अपनों के साथ। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4020280704028070।

अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर सुहाना सफ़र आप लोग सुन रहे हैं इस समय। धन्यवाद साथ देने के लिए। याद दिलाने के आप इस समय हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028070। और जैसे कि हमने कहा, रेडियो की दुनिया में आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं होती, वो

0: तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक श्रोता है, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको, आपका नाम?
1: मैं अनीता बेलरोज से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी।
1: आपका प्रोग्राम तो बेहद अच्छा लगता है।
0: बहुत धन्यवाद आपको। और आपको कुछ कहना है? क्योंकि
1: मुझे अच्छा लगता है, मैं पुराने गाने की शौकीन हूँ। बहुत अच्छा लगता है। 12 बजे से तो ओजे वैकेंड से मैं राजो रहती हूँ, तो शाम तक सुनती रहती हूँ
0: जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमारी रेडियो, हमारा जो रेडियो है, पहली सालगिरह मना रहे हैं, तो बस उम्मीद है कि जो प्रोग्राम हम चलाते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, आपको पसंद
1: बहुत अच्छा आए। लगता है।
0: बहुत धन्यवाद आपको।
1: बहुत धन्यवाद।
0: चलिए, शुभ शाम आपको।
1: आपको भी।

0: जी हाँ, सुहाना सफर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 1:18 हुए हैं और देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते बेटी जी।
0: नमस्ते जीवंती जी, है ना
1: जी? हाँ।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: अच्छा जी, तो आप
1: हाँ? गाना सुन बता अपना अच्छा हो जाए।
0: तो रेडियो के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं बहुत खुश हूँ।
0: हम्म,
1: आप तो मिलते हैं 12 बजे से 2 बजे ले।
0: हम्म,
1: अपना फरमाइश करेगी, अपन फरमाइश। और

0: जीना आसान हो,
1: जान पहचान हो, जीना आसान हो, और रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन जो है जीवन आसान करने के लिए हम यहाँ हैं, और हम देखेंगे यहाँ पर कौन है। हेलो
2: हेलो उषा जी, मैं राधा मोतीदा से।
1: नमस्कार आपको।
2: नमस्कार आपको भी
1: जी।
2: और मैं कहूँगी रेडियो के बारे में, वैसे संगीत से तो हम जुड़े ही हैं
1: जी।
2: एक जमाना था जब हम रेडियो सैलन, आकाशवाणी, विविध भारती सुनते थे, बड़ी मुश्किल से वो मिलती थी। थोड़ा थोड़ा वो जब हम खींचते थे वो उसका जो रेडियो का जो सेट, हम उसको सेट करती थी, बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छा गाना हमें सुनने को मिलता था उस जमाने में। क्योंकि उस जमाने में हम खपरेल के घर में रहते थे, छतों के घर में रहते थे, कुछ आसान नहीं था, रेडियो बहुत दूर था हमसे माध्यम। लेकिन फिर भी संगीत से हम जुड़े हैं, और आज रेडियो इतना बढ़ गया है, उसका संचार जोर आया पूरे पूरी दुनिया में, तो उससे कितने लोगों की फायदा हो रही है। बीमार लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं, और जो लोग कैसे कहें टेंशन में है, स्ट्रेस में है, वो भी इससे अब संगीत से जुड़ जुड़ कर वो इससे मतलब छुटकारा पा रहे हैं, और ये कैसे कहूँ एक दवा की तरह, एक औषधि की तरह उनके जीवन में काम कर रही है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई आपकी रेडियो की जन्मदिन पर।
1: धन्यवाद आपको राधा जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। शुभ दिन आपको।
2: शुभ दिन आपको भी।

0: रफी जी और उनका जो अंदाज है, चलिए मस्ती भरी गीत। और यहाँ पर हम देखते हैं मस्ती करने आया कौन। हेलो,
1: नमस्ते जी, मैं सीता हूँ पदलास्कर।
0: नमस्ते सीता जी,
1: हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे,
0: धन्यवाद।
1: बहुत खुश हुए तुम्हारे रेडियो मस्ती का एक बरस हो गया
0: और साथ में रेडियो मनोरंजन
1: 100 बरस रहे।

0: जी
1: हाँ मनोरंजन, ये जो गीत सुनते हैं, ये जो जी अपना दिन निकाल लेते हैं, क्या करें, हम तो अकेले घर में रहते हैं ना है।
0: आप लोग अकेले नहीं हैं, हमेशा हम आप लोगों का साथ देते हैं सुबह शाम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी देने वाले को खुशी मिलेगा।
0: धन्यवाद आपको, चलो शुभ दिन आपको।
1: सब सुनने वालों के लिए खुशी मिले, थोड़ा दुनिया में खुशी तो मिलेगा ना।
0: थोड़ा क्यों, बहुत सारा।
1: थोड़ा ही ज्यादा हो जाता है,
0: थोड़ा ही ज्यादा हो
1: जाता है, जरूरी नहीं।
0: हाँ जी,
1: जो थोड़ा मिलते हैं ना उसमें संतोष कर लेना।
0: चलिए बहुत धन्यवाद आपको।
1: हाँ मैं खुश हुई, बहुत बहुत खुश।
0: धन्यवाद। कहते हैं ना, आप खुश हम भी खुश, और हम तो यहाँ खुशी बांटने आए हैं गानों के जरिए, अपनी बातों के जरिए। और आपको याद दिला दे दोस्तों कि हमारे जो रेडियो टीम है RM2 और RM3 टीम, अभी जो पोर्ट लुइस में थे, अर्बन टर्मिनल मना रहे थे, जन्मदिन जश्न मना रहे थे अपनों के साथ, हमारे पब्लिक के साथ, और वो लोग इस समय जा रहे हैं रोजबेल,
2: इस दुनिया में जीना,
0: रोजबेल वेस्ट। तो आप लोग साथ दीजिए, समय समय पर हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और जी हाँ, अगर आप लोग उस तरफ रहते हैं रोजबेल की तरफ, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जा सकते हैं उनके साथ, मस्ती कर सकते हैं।

0: RM3 Radio. Radio.
1: हमारी तरह आप भी यूं ही गाते चलो, हंसते मुस्कुराते चलो और इस खूबसूरत मौके को मिलकर यादगार बनाते हैं।

0: अच्छा दोस्तों आए प्यार के दिन आए चलो मिलकर मनाए साथ मिलकर हां जी बर्थडे RM to RM free की पहली सागिरा और यहां पर हमारी कॉलेग्स जो है नीतूषा हम उनको सुनेंगे वो हमें कुछ अपडेट्स देंगे हेलो नीतूषा
1: हेलो शायक बात फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार ऑफ कोर्स यहां पर हमारी जो पूरी टीम है यानी कि ये जो कारवान है चल पड़ा है हम रास्ते पर हैं और गुडलैंड्स और अर्बन टर्मिनल पोर्ट से होकर अब हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स यानी कि होस्टबेल तो वहां पर भी केक कटिंग करेंगे गिव अवेज होंगे यानी कि गिफ्ट्स होंगे यानी कि एक तरह से जैसे हम सुबह से कहते आ रहे हैं एक हमारी तरफ से यस ऑफ कोर्स हमारी तरफ से ये जो प्यार भरा है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम धन्यवाद कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पार्टनर लुचोवेयर तो टिकटॉक पर भी आप हमें देख पा रहे हैं फॉलो कर पा रहे हैं लाइव है हम रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन पर तो एक साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यानी कि रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन ये एक साल आपने हमको इतना सारा प्यार दिया है लुटाया है अब हमारी बारी है ये जो प्यार है आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी भेंट गाटो है स्वीट है केक है हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं जैसे कि मुल्किया वगैरह सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस सफर में खूबसूरत तरीके से जुड़े हुए हैं तो बस साथ निभाते रहिएगा हम होस्टबेल की ओर बढ़ रहे हैं होस्टबेल कहाँ पर होस्टबेल मॉल माई वेस्ट जी हाँ होस्टबेल मॉल माई वेस्ट और वहां पर हम अपने जो लिसनर्स है ऑडियंस है प्यार करने वालों से हम भेंट करने वाले हैं मुलाकात करेंगे और मस्ती और मनोरंजन करेंगे
0: चलिए बहुत धन्यवाद आपको नीतूषा तो जी हाँ दोस्तों जैसे कि आपने सुना वो लोग जा रहे हैं रोजबेल वेस की तरफ से और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वेलकम हो यू आर मोस्ट वेलकम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं साथ मिलकर वहां पर भी केक कटिंग होंगे साथ मिलकर ये जो पहली सालगिरह है साथ मनाएंगे और यहां पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद ऐसे ही साथ दीजिए इस सफ़र में आप हम सफ़र बनकर साथ देते हैं हमेशा की तरह उषा को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ दिन

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात के मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। विक्टोरिया हॉस्पिटल कॉन्डस और SSIN हॉस्पिटल पॉप्लेमोसिस के बाद अब सर अनिरुद्ध जगन्नाथ हॉस्पिटल में भी स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई है। फ्लाक में आज सुबह इस विशेष इकाई का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। ये इस स्ट्रोक यूनिट का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के मरीजों को जल्द से जल्द आवश्यक इलाज उपलब्ध कराना है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम कमेटी को हायर एजुकेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य श्रम बाजार की जरूरतों का आकलन करना है। इस त्रिपक्षीय समिति की सह अध्यक्षता बिजनेस मॉरिशस और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि ऐसे स्नातक तैयार किए जा सकें जो बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकें। उदाहरण के तौर पर पिछले 10 वर्षों में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डिजिटल क्षेत्र के विकास और आर्थिक बदलावों के कारण 140 पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया था या संशोधित किया है। इन बदलावों के चलते रोजगार के नए क्षेत्र और नए पेशे भी सामने आए हैं। और विदेश स्तर पर भारत और सेशेल्स ने मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की सहमति जताई है। इस दिशा में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने कल सेशेल्स के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक लगाई। भारत ने मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने माना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्थिरता तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: RM3 Radio.
6: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
7: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत करत है जा। ई साप्ताहिक कार्यक्रम जो न आप सुनेला ई महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत करल जात बा। तो महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग और साथ में MBC रेडियो ई कार्यक्रम तैयार करते जा। तैयार होत बा तई तैयारी में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू के योगदान बा। बीच में हमनी अपन सहयोगी जय गणेश डाउ सिंह के भी सुनब जा, लोक कथा भी सुनब जा, अभी चुन चुन के लोक कथा अनब जा। पर आज शुरुआत में तो लोग के विशेष रूप से भोजपुरी लोक गीत के अंतर्गत जो गीत गवाए आवेला ओकर पर एक दुगो जानकारी देव जा। वैसे हम तो उतना बड़ा जानकार नहीं है एकर पर,

हमनी के जितना दादी लोग चाची लोग हमनी के सुनत हुन जा वो लोग एकर बारे में बहुत जाने लन जा काहे वो लोग एकर संगे जिए लन जा एगो समय रहल गीत गवाए शादी में शादी के धला सुख के जस्ती यानी हल्दी के एक दिन पहले सगरो हुआ था अभी भी होवेला रूप बदल गलवा पर होवेला और आजकल तो धला गीत गवाए के कोनो टोली जब खोजे के रही तो दू बरिस आगे पर ही रोक दे के लोके पर ई अच्छा है कहे कि जे लोग गीत गवाए में भाग लेवे लन जा गिथारीन लोग जिसे भूल जा आज तक छोकरा लोग भी पुरुष लोग भी एकर में भाग लेवे लन जा वो लोग न केवल एकरा एगो धला एगो मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एकरा एगो सादगी एकर में जाने लन जा उप परंपरा के महत्व कौन सी है एगो शादी से पहले और साथ में आजकल एगो धला लोग एगो आमदनी मिले के एगो माध्यम बन गल बा जैसे कि एकर में जस्ती निम्न से सकेंजा आगे लेके जाए तो ई कैसे होल कि आज गीत गवाए के इतना मान्यता मिलल बा जनब आप गीत गवाए के लगभग 50 गो स्कूल देश के कोना कोना में बा तो ई जब एकरा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होल काहे प्राप्त होल कहे कि ये वो बहुत ही सशक्त माध्यम है मानव अभिव्यक्ति के कहे कि बोला जा कि लोक साहित्य में जो लोक गीत है उकर स्थान सबसे ऊंचा है मानव जो है वो हमेशा राग प्रिय रहेला कहे कि उकर मनोभाव छंदमय होएला एक बोले नहीं तो लोके कि डॉक्टर हजारी सिंह वो बोले रहलन कि हमी के जोन पुरखन लोग आ रहलन जा वो लोग काफी कठिनाई के सामना करलन जा पर वो लोग हजा डट के ई देश के आगे लेके गेलन जा कहे कि वो लोग के नस नस में संगीत भर रहल भोजपुरी के उस संगीत ता ई स्वाभाविक अनुरक्ति के कारण उकर मनोभाव में जोन भाषा के माध्यम से गीत के रूप में आवेला वह लोक गीत लोक गीत के अनेक रूप है तो सब कोई जाने लगा इससे पहले कि हमनी चर्चा कर अब जा भी आगे लोक गीत में अलग अलग रूप आवेला तब हमनी बात करते जाए यूनेस्को यूनेस्को के जो अमूर्त विरासत सूची में भोजपुरी फोक सॉन्ग्स इन मॉरिशस गीत गवाए ई एकरा मान्यता प्राप्त होलबा कौन सी है ई एकर बारे में तरुण अभी थोड़ा घरी बात चर्चा कर अब जा एगो गीत सुनी जा

0: RM3 Radio.
1: तो जैसे बोलनी जा जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्थान जो शिक्षा कला संस्कृति विश्व भर पर उकर देख रेख करेला, वो ये बात मनलक कि जो गीत गवाय है मॉरिशस के लोक गीत, एकरा चाहेला मान्यता दे के और ये अमूर्त विरासत के रूप में सुरक्षित रखेगी। तो एकरा जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी नाम देवल गलबा 2016 में, मतलब ई बरिस 9 बरिस हो गल जब से ई मान्यता प्राप्त हो बा और ई 11.com सेशन में मिल रहल। तो एकर जो फैसला हो रहल एकर बाद उस सब गीत के चुनल गल जकरा बोई लजा शादी के पहले के गीत, यानी प्री वेडिंग सेरेमनी। खाली गीत नहीं है, एकर में जोन रीति रिवाज बा, जोन धरोहर के रूप में हमने के मिलल बा, एकर में जोन जोन प्रार्थना बा, एकर में जोन गीत बा, जोन संगीत बा, जोन नृत्य बा, इस सब एकर में आवेला। तई तो जनबे करेला मॉरिशस में ई जोन होला दुल्हा दुल्हिन दुनो घर में होला, जहां पर ही घर

के परिवार लोग, आसपास के लोग आवेलन जा और शुरू में पूजा पाठ करके तब बाद में गीत गावेलन जा। तेकर में है जब विधि सब हो जला गीत गवाई के तनिकुन जलसा गीत जैसे बोले जाओ सब गावेलन जा, तब बाद में चल के अगला दिन जो है वो हल्दी के दिन से आवेला। तो एक तरह से जब एक मान्यता प्राप्त होल गीत गवाई के तेकर में जो सामाजिक बंधन बा वो मजबूत होला, जरा बोला जा सोशल कोहिजन। और एक में न कोनो धर्म, न कोनो जात, न कोनो पात, हर प्रकार के एगो एगो सांस्कृतिक विरासत के रूप में आगे आवेला। जैसे बोला जाए कलेक्टिव कल्चरल मेमोरी एंड आइडेंटिटी, यानी हमने के एगो पहचान के रूप में सामने आवेला। तक कोची चाहना करेगी ये जब मान्यता प्राप्त होल तेकर में चाहेला कि एक जो जानकारी बा, जो ज्ञान बा, ओकरा अपन तक नहीं रखे के बल्कि दूसर तक पहुंचाए के। जैसे बोले जाए ना धरोहर के सरोवर, तो वो ज्ञान जो बा उस सरोवर के जरिए दूसर पीढ़ी दर पीढ़ी तक ऐसे जाए, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। अभी कैसे एक देख बा, ऑब्जर्व कर बा, एक में भाग ले बा, पार्टिसिपेशन, और सामाजिक संगठन लोग मिलके घर में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, इस सब में एकर पर चलना काम होगी। तो लोग के शुरू में तो बोलबे कर लेनी कि मॉरिशस में इतना गीत गवाए के जो स्कूल बा, याद करते हैं हम के रीता पुनीत जी के जो पेचिकाफ रहे हलन, बहुत बड़ा योगदान बा उनकर, और डॉक्टर सरिता बुधू जी के भी बहुत बड़ा योगदान बा इस सब गीतहारिन लोग के एगो एगो महत्व दिलाए के इस समाज में। आज मॉरिशस के कोना कोना में भी ई बात, लीलो माथुर जी के भी नाम हमने किसी से कब्जा भुलाए, रंबा राम तोहर के नाम किसी से कब्जा भुलाए, ये लोग धला गीत गवाए के दिग्गज होवन जा। और आजकल तनकुन पुरुष लोग भी कर में आगल बन जा। तो ई एगो सामाजिक पारिवारिक रूप से ई मनावल जला, पर जब एकरा मान्यता मिल गल, इंस्क्रिप्शन हो गल, तो ई सकी अब पब्लिक परफॉर्मेंस यानी जनता के सामने भी सकी प्रस्तुत करल जाए। आपके याद हो जब राष्ट्रीय दिवस मनावल जला, तब कुन सब कार्यक्रम में तनिकुन गीत गवाई पर जानकारी देवल जला, गीत गवाई प्रस्तुत करल जला, शॉडी बाउंस में हो रहल। नरेंद्र मोदी जी जब मॉरिशस आ रहलन तो उनकर स्वागत करे खातिर तनिकुन गीत गवाई के गीत गावल गए रहल। है जाले कि मॉरिशस के गीत गवाई मॉरिशस से बाहर भी गल, जो इंटरनेशनल ड्रम फेस्टिवल रहल इजिप्त में, हम के गीतारिन लोग ही होजा परी गए रहलन जा। त ई जो गीत गवाई के जो भाग है वो नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ मॉरिशस में सबसे पहले आनल गल, फिर यूनेस्को में वो दस्तावेज भेजल गल ताकि उकरा मान्यता प्राप्त होई। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात। तो ऐसे में यूनेस्को बुल्लक मॉरिशस के कि ये जो गीत गवाई है एकरा चाहेला एकर जब ढेर कोई समझिए कर बारे में, ढेर कोई जानकारी प्राप्त करिए कर बारे में, तो ई सब जो गीत है लोग के अनुवाद हर गो भाषा में कराए के ताकि गीत गवाई के अंतर्राष्ट्रीय रूप से सकब जा, एकरा आगे बढ़ाए। तो ई जो अगला जो सोमवार आवत अभी सोमवार के रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट जो है ईलो देवीने में होजा पर एगो खास कार्यक्रम आयोजित करल जात बा, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के सहयोग से, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन करत बाई। और होजा परी जब 9 बरिस होगल भोजपुरी गीत गवाई के मान्यता प्राप्त होल, तो होजा एगो खास कार्यक्रम आयोजित करल जात बा।

आज हमनी के मॉरिशन गीत गवाय पर चर्चा करब। मॉरिशस के भोजपुरी लोकगीत बहुत ही रंगीन और मसालेदार बाटे। कई दशक से भारत से

आयल हमनी के पूर्वज के परंपरा ई छोटे द्वीप में जीवित बाते। उ लोग यहाँ गिरमिटिया मजदूर बन के आयल रलन और ई द्वीप एगो सुंदर सांस्कृतिक धरती बना के छोड़ दिलन जा। कई संस्कृति में ई भोजपुरी गीत गवाय आजो बहुत ही लोकप्रिय बाते। गीत गवाय एक संगीत समूह जे भारत के भोजपुरी इलाका के 182 साल पहले मॉरिशस आयल प्रवासी मजदूरन के साथ यहाँ से आयल गेल सांस्कृतिक विरासत के बचा के रखे रलल जा। आज ई मॉरिशस के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में एगो जरूरी हिस्सा है। 2016 में यूनेस्को द्वारा मॉरिशन गीत गवाय की ई श्रेणी में नामांकन भैले से लोक गीतवन के विशेषण और महत्वपूर्ण हो गए बा। हिंदू परंपरा में पूजा आराधना के तत्व बहुत ही जरूरी बाते। हर आदमी की पूजा करे के अपन कारण होला। मॉरिशस के भोजपुरी लोकगीत में पूजा के मनोविज्ञान एगो रोचक अध्ययन के विषय है। गीत गवाय शादी के एक रसम है जे शादी के एक दो दिन पहले मनावल जाला। पहले ये पूरा हफ्ता चलत रहल। ये पूजा गीत संगीत और नृत्य के मेल रहल जे भोजपुरी भाषा में परंपरा के जीवंत रूप में व्यक्त करेला। ये स्वाभाविक मधुर और परंपरा के धड़कन में बसल कला है। अधिकतर एगो मुख्य गवैया होवेला और 10-12 नारी शक्ति के समूह रहेला जे परंपरा के बचावे खातिर उलोग के गिथारिन कहल जाला। उ सब अपन माई सास दादी नानी फूफू मौसी सभी के नन्हिका उमेर में ई कला सिखले रलन। गीत गवाय उलोग के जीवन के हिस्सा है। उलोग सांस ले रहल जीवत बाड़ी और कला में गिथारिन सब पीढ़ी दर पीढ़ी ई परंपरा के आजले सुरक्षित रखले हवंजा। गीत गवाय के प्रमुख चरण समारोह तब शुरू होला जब घर परिवार और मोहल्ला के नारी शक्ति पारंपरिक लिबास पहन के दुल्हा दुल्हन के घर अर्घ गोलाकार में बैसन सा। पांच सुहागिन औरत घूंघट डाले हल्दी धान डोप और रुपया अलग अलग करियन जा। इस समय लगन गीत गावल जाए, फिर सुमिरन और संध्या गावल जाए देवी देवता के सम्मान करे खातिर। धरती बंधाई घर और जगह के पवित्र करे खातिर गीत गावल जाए इस शुद्धिकरण के प्रतीक है। उनकर बाद ढोलक पर पूजा होवे संगीत के साधन के सम्मान देवे खातिर। फिर गीतवन में ढोलक झाल चमच लोटा लकड़ी के टुकड़ा वगैरह के ताल देवल जाला। शादी गीत सुहाग गीत महादेव गीत और आखिर में झूमर ये सबसे रोमांचक हिस्सा होला। गीत गवाय आज परिवार से बाहर निकल के गमत और स्टेज परफॉर्मेंस तक पहुंच गए बा। गीत गवाय के प्रमुख गीत लगन गीत शुभ मुहूर्त की घोषणा सुमिरन देवी देवता गीत भक्ति भाव के समूह गान संध्या सांझ देवी के अवहारन धरती बंधायल जगह के पवित्रकरण ढोलक पूजा वाद्य यंत्र के सम्मान सुहाग गीत देवी देवता के कृपा मांगे खातिर झूमर नाच गान के चरम रूप।
अब सवाल उठेला कि ई गीतवन में पूजा आराधना के मनोविज्ञान कौन सी है, काहे लोग भगवान के नाम लेके गीत गावे लंजा। भोजपुरी लोकगीत में ई पूजा भावना डर से ना, बल्कि प्रेम, सम्मान, आशा, सुरक्षा और सामुदायिक एकजुटता से उपजलबा। लोकगीत के भगवान से अपनापन महसूस होवेला और अपन खुशी, आस्था, डर, उम्मीद सब उझल देवेला। इन लोकगीत मनुष्य के मन के स्थिरता, विश्वास और आध्यात्मिक संतुलन बनाए खातिर बनेला। एहसास बा गीत गवाई में पूजा भावना न केवल धार्मिक अभिव्यक्ति है, बल्कि एगो मनोवैज्ञानिक संतुलन, सामाजिक जुड़ाव और भावनात्मक मुक्ति के माध्यम होके। गीत गवाई हमनी के धरती बंधाई जोन है एगो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखेला। जे लोग वर्षों से धरती माता के सम्मान में गावे लंजा, पृथ्वी माता के पूजा डर और सम्मान दोनों से कई जाला और लगभग सब हिंदू देवी देवता के सम्मान देवल जाला। ई रस्म में प्रकृति पूजा के विशेष महत्व बाटे, जे निश्चित रूप से कई साल ले जिंदा रही। मरुशन गीत गवाय ए विश्वास के दर्शावेला के वास्तविकता और दिव्यता एके है। ब्रह्मांड एगो दयालु और शाश्वत भगवान से बनावल है। ई विश्लेषण में बारुच स्पिनोजा के पैंथेइज्म के सिद्धांत लागू होला, जे नन ड्यूअलिज्म के विचार से मेल खाला। अंत में यही बुलब के हमनी के गीत गवाय हमनी के पुरखन के दिन है। मोशस में ई बरसों ले चली हमनी के सुमिरन देवी गीत और झुमर अमर रही। नमस्ते। RM3 Radio.

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
1: तो इसने भोजपुरी लोक परंपरा में जैसे ओरल ट्रेडिशंस भी डाला, अंग्रेजी में ओरल लिटरेचर, एकर में मॉरिशस में भारत में भी बहुत प्रचलित भोजपुरी के मुहावरा कहावत और लोकोक्ति आवेला। आज एक दो लोकोक्ति एक हब्जा एक दो मुहावरा कहावत मिलके ध्यान से सुना। अंतर मंतर घोंगा सारी, अंतर मंतर घोंगा सारी, बुढ़िया मांगे लहुंगा सारी। एक रचा समझाए कि ई उस समय में प्रयोग करल जाला जब कोनो नानी या फिर दादी अपन नाती या नातिन के धला घाव लगल बा, तब दादी या नानी ओकरा ओंचते ओकरा ओंछेला और बोलेला कि वो खुद भुरिया हो गल बा, लहंगा और उस सारी मांगता। इस सुन के लड़का लोग अपन तलगुन दर्द भुला दलन जा लगे लन जा हंसी। अंतर मंतर

घोंगा सारी बुढ़िया मांगे लहुंगा सारी। अंग्रेजी में बोला जा धलब लड़का लोग संगे एगो जोक करे के। इसने अंधरा के कुत्ता बतासे भूकेला, अंधरा के कुत्ता बतासे भूकेला, एकर अर्थ है सोचा जानो थे बधेर कोई अर्थ है व्यर्थ में बेकार में चिल्लाना, टू बॉक अब द मून। अब कोई चांद के देख के भूखी तक कुछ होई भला बेकार में कोनो काम करेगी। और उगो लिख लिया था ऐली न गैली फलाना बो कहैली, ऐली न गैली फलाना बो कहैली। एकर मतलब है जिकर से कोनो संबंध न बा, कोनो रिश्ता नहीं बा, उनकर से रिश्ता या फिर संबंध बा बोलबा कि हाँ बा, यानी ऐली न गईनी फलाना बो कहलैन, टू एसोसिएट थिंग्स विच आर नॉट सो, जोन चीज नहीं बा ओकर संगे संबंध जोड़े खोजबा है गुहा। और ले ले जा अकल बड़ा बा बल नहीं खे, भारत में नहीं खे जिसे मोर्चस में नहीं बा, अकल बड़ा बा बल नहीं बा। एकर अर्थ है बल से अधिक बड़ा बुद्धि है, बल जितना भी रही बुद्धि से काम नहीं कर बा तक सब बेकार जला। इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन माइट। और वो छोटा सुन नहीं बा कोई बोलेला जैसे बतियाला मुझाला अगम जानी है, अगम जानी है। एकर अर्थ निकलेला क्यों भविष्यवाणी कर लेला कि आगे कौन सी हुई, आगे से कुछ जानने वाला है, अगम जानी और फोरटेलर। ये काफी धला जे ढेर बतियालन जा बोलन जा हम तो जानी ला है ये इसे होई हवो उसे होई, तो उनकरा अगम जानी बोली लजा। और बोले लजा अगली भैल पिछली पुरधाइन। पुरधाइन के मतलब है मालकिन, अगली माने पहली, भैल हुई, पिछली माने अंतिम। एकर अर्थ है जहां पीछे होला के आगे होला के तुलना में जस्ती सफलता मिल जाला हो जा से लागू होला, यानी टू गिव मोर इंपोर्टेंस टू द लास्ट वन। जैसे एगो चीज तोहर लगे बा बहुत दिन से तेगो दूसर मिल गल, जो आगे से रहल ओकरा भुला देबा, जो बाद में आल ओकरा जस्ती महत्व देबा। अगली भैल पिछली, पिछली भैल पुरधाइन, वो मालकिन बन गल। और जिनको ले जा अघायल बकरी लकड़ी चबावेला, अघायल बकरी लकड़ी चबावेला। बकरी का वो लकड़ी चबावेला तक कौन सी कर अर्थ है, इकर अर्थ है जेके बहुत मिलेला ढेर कुछ मिलेला वो कर महत्व नहीं जानेला। अघायल बकरी लकड़ी चिबावला, ए कंटेन्ड पर्सन हैज लिटिल डिजायर है। एगो औरों को बहुत आसान है, अन के कन बना दिलक, यानी जो चीज बनल बा ओकरा बर्बाद कर दिलक, अन के कन बना दिलक, टू स्पॉइल।

कबो ई भी सुनो बात दादी लोग बोले लंजा अनेत करता उत अनेत करता यानी हद से ज्यादा काम करता अनेत टू अब्यूज दूसर मां अपन अंडा बच्चा या अपन रोना भवना अपन अंडा बच्चा या अपन

0: अपन कुरुक धुन निकैले बा। सुन ले बा, मुर्गी कुरुक हो जाला। अपन कुरुक धुन निकैल लगैले बा। कुरुक मुर्गी जने कुरुक मुर्गी ओकर धुन लगाते रहला। ई उक्ति जुन है ई उ समय होला जब रह रह के पानी आवेला, पानी बरसेला और काम में जाए के परेशानी होला। तो हवे बार बार कुछ मांगे के प्रार्थना करब या फिर सुनने होला तंग आ जाए। टू बी फ्रीक्वेंट अपन कुरुक धुन लगैले बा, बार बार वही रट लगैले बा, जैसे बोले जा। तो ई आज के हमनी के ई भाग में मॉरिशस में प्रचलित, भारत में प्रचलित एक दुको मुहावरा कहावत और लोकोक्ति अन्नी जा और सभार बा ई हमनी स्वर्गीय दीनलाला मोहित जी के जिनकर पुस्तक हीरामोती रिडल्स एंड सॉन्ग्स में ऐसा ढेर बा। कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा, को गीत सुनब जा, फिर और बहुत कुछ बा धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में तुलो खाजी।
1: RM3 Radio.

धरोहर के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।

0: धरोहर के सरोवर में ऊ भाग लेके आल है जा जहां पर आपके भी परितन को अपन दिमाग लड़ाई के आप भी सगबजा बोले एक उत्तर ढूंढे तनकुन समय दे जा। आज हमनी के भाई योगेश के पकड़ कर नी जा है जे परी महात्मा गांधी संस्थान में घूमत रहल काम कर जा रहल। योगेश भाई ठीक बा?
1: हाँ ठीक बा।
0: भोजपुरी बतिया लजमन से?
1: हाँ नीमन से बचायला।
0: लालमाती रहेला?
1: लालमाती रहेला घरे भोजपुरी बचायला से पिताजी से।
0: अच्छा अच्छा। और भोजपुरी के कौन चीज से अच्छा लग रहा तुहरा?
1: ये भोजपुरी के गाना और तनी सवाल जवाब तनी जालोगे तनी गीत।
0: कबो तुहर घर में या फिर घर के बहरा कबो बुझावल सुनले हुआ?
1: हाँ बुझावल सुनी है पिताजी बहुत पूछेलन बुझावल।
0: अच्छा आज
1: मजाक में
0: तो आज तोहर से पूछब जाए दुगो बुझावल है ना तनिक लंबा बा निमन से सुना आप भी हम के श्रोतागण निमन से सुना। चार चिड़ैया चार रंग खोता के भीतर एक ही रंग। फिर से बोल ले जा। चार चिड़ैया चार रंग खोता के भीतर एक ही रंग।
1: अच्छा चार चिड़ैया चार रंग
0: खोता के भीतर
1: एक ही
0: रंग। चला एगो टिप दे ला आपके एकर से पूजा होला
1: चार चिड़ैया चार रंग तो पूजा से एगो हमर दिमाग में आवता एगो पत्ता होए
0: बेल आवता आवता आवता
1: बेल पत्तर नहीं पान होए।
0: हाँ पान बितेल।
1: अच्छा
0: कहे कि उकर अलग अलग रंग रहेला।
1: हाँ
0: पर जब उकरा चबैबा तब एक ही रंग हो जाला।
1: हाँ
0: खोता के भीतर एक ही रंग। चला एक अंक एकरा मिल गल।
1: धन्यवाद।
0: लालमाती रहेला नहीं?
1: लालमाती। हाँ
0: अच्छा लालमाती तो है तनिकुन तोहर गांव के तनिकुन आगे जेबा तो कौंडिमास्क गांव मिलेला कौंडिमास्क पावे गांव मिलेला हो जा पर ढेर है तनिकुन जान जेबा।
1: अच्छा
0: एक पैर हिया एक पैर कलकत्ता ओकर फर के ऊपर पत्ता। ध्यान से सुना। एक पैर हिया एक पैर कलकत्ता ओकर फर माने ओकर जो फुई।
1: हाँ
0: ओकर फर के ऊपर पत्ता। अब सुधर कौन फर के ऊपर पत्ता रहेला?
1: अच्छा तो फर के ऊपर
0: गाँव में ढेर मिले
1: तो कौंडिमास में जनाना मिलेला
0: जनाना
1: हवे हो
0: हवे।
1: हाँ
0: सुना वना होगी जने ना लेकन छोकरी।
1: हाँ।
0: निमन गीत है संजू भाई ये गीत खूब गावेलन। अभी चा पिया तो नहीं चा पिए के समय है 2 बजे से 3 बजे ले और को ले जा। हम ओके देखत है ऊ हमके देखता
1: जी।
0: छोकरी
1: होई
0: ओकरा देखब तोरा देख
1: नहीं नहीं नहीं
0: देखे
1: हमेशा नहीं होला
0: नहीं देखेला। हम ओके देखत है ऊ हमके देखता।
1: अच्छा
0: कब भूला ऐसा
1: अब या तो सेल्फी लेवत हो।
0: हाँ।
1: या तो आईना में दिखा जो।
0: हाँ आज के जमाना में हुई तो सेल्फी।
1: हाँ सेल्फी
0: हो जमाना में ऐनक आईना।
1: अच्छा।
0: मीरा जब देखबत तू ओकरा दिखत हुआ ऊ तोहरा दिखता तू और ऊ एक ही हवा
1: एक ही हवा।
0: चल है मिल गल है लखाला तब बरिये लाल बीबी हा हा ही खेबत खाए की चीज है
1: ये तो आसान है
0: बोला था
1: लाल मिर्च।
0: मिर्ची चला मिर्ची ये मिर्ची बोला था पॉइंट उपीमा के हमने के अधेर को याद आवता भोजपुरी औजा बड़ी बोल जा हमने के भाई सुबग और वो हमने के गुरुजी लोग हम जा होजा परी तो उन लोग के नमन करब जा। भाई योगेश बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अरविंद हमके मौका मिलल तनी और कुछ जाने के बुझावल जाने के।
0: तो योगेश भाई एगो नौजवान हुआ न और भोजपुरी बोले लन तमी के यही कोशिश बात तो लोग के बताए कि भाषा में खाली गीत इधर उधर नहीं है एकर में बुझावल है और नौजवान लोग भी एकर में भाग लेवत हो जाते। चलो धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा एगो गीत संगे
2: RM3 रेडियो।

0: उच्च शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम कमिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य श्रम बाजार की ज़रूरतों का आकलन करना है। इस त्रिपक्षीय समिति की सह अध्यक्षता बिजनेस मॉरिशस और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि ऐसे स्नातक तैयार किए जा सकें जो बदलती ज़रूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकें। पिछले 10 वर्षों में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डिजिटल क्षेत्र के विकास और आर्थिक बदलावों के कारण 140 पाठ्यक्रमों को बंद या संशोधित किया है। इन बदलावों के चलते रोजगार के नए क्षेत्र और नए पेशे भी सामने आए हैं। विदेशी खबरों में नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और चीनी सीमा के पास 9 जवान लापता हैं। अधिकारियों ने भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

0: रविवार का दिन 26 अगस्त और आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ एक बार फिर एक स्वास्थ्य की एक समस्या का प्रोग्राम लेकर, जहां पर आज हम बात करेंगे स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रॉमा के बारे में। जी हाँ, स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रॉमा। साथ ही साथ आज हमारे डॉक्टर होंगे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर करुणागरन, डॉक्टर के जिनके नाम से बिल्कुल बहुत सारे लोग परिचित है, और आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं फैजान, प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरिसा बानो, और साथ ही साथ शीतल लुबिन हमारी प्रोड्यूसर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बेशक अगर आपके मन में कोई भी सवाल है स्पाइन इंजरीज़ को लेकर, तो 9:30 बजे के बाद आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। 4028085 पर आप हमारे साथ कॉल पर बिल्कुल अपने सवालों को तैयार रखिएगा। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यानी मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर याद दिला दें आपको, इसी कार्यक्रम को आप दोबारा से सुन पाएंगे 3 बजे से 4 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए डॉक्टर जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर करुणागरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल देखा गया है, बहुत कई बार ऐसा होता है कि जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग रफ्तार बढ़ाते हैं और कई सारे दुर्घटनाएं रास्तों पर होती है। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि एक्सीडेंट्स होने के बाद डॉक्टर की भूमिका, रोल क्या होता है डॉक्टर का?
1: देखिए, एक्सीडेंट्स और मॉरिशस में ये हर साल ये बढ़ते जा रहा है
0: जी।
1: तो जो स्टैटिस्टिक्स जो इस साल अभी तक है, तो पिछले साल से जो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है, पिछले साल 3,287 per 100,000, अभी ये 3,355
0: के लिए,
1: तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो माइनर इंजरी, सीरियस इंजरी, डेथ सब ऊपर हो गया, तो 2.8% डेथ ज्यादा हो गया। तो अभी तक जुलाई 26 तक 80 पीपल मरे हुए हैं,
0: यानी एक्सीडेंट से।
1: और ये सब लोग ये यंग, यू नो, मोटरसाइकिलिस्ट या ओल्ड पेडेस्ट्रियंस। तो दूसरी डेथ से ये काफ़ी अलग है, क्योंकि आप उन पर्सन को अभी आपने देखा है, आधा घंटा एक घंटे के पहले बाइक बोल के घर से गया है।
0: हाँ।
1: और आपको फोन आ रहा है, वो अभी नहीं है। तो ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल सिचुएशन भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट
0: है और ज़रूरी। और कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना जब होती है तो आपके अपने आपके पास नहीं है, और उस टाइम पर कई सारे लोग आपके सामने, कोई ऐसी जानलेवा दुर्घटना जब होती है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से उस इंसान को आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें रखना बहुत ही आवश्यक है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सारी जानकारियों का खुलासा हम करने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, पहले तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे, पॉलीट्रॉमा ये शब्द का मतलब क्या होता है और इसको दूसरे जो इंजरीज है उससे कैसे अलग माना जाता है?
1: ये पॉलीट्रॉमा हम बोलते हैं जब दो या उसके

0: पर इंजुरी है दो ऑर्गन सिस्टम से, और साथ ही साथ में इंजुरी स्कोर्स भी है। अगर इंजुरी स्कोर ज़्यादा है या साथ में पेशेंट को बेहोश हो गया या बीपी कम हो गया, शॉक है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन जब ये
1: बढ़ जाता है तो
0: पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। ये दूसरी ट्रॉमा जैसे आपने चल रहा है, गिर पड़ा, एक हड्डी टूटा है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, इससे भी काफ़ी अलग है क्योंकि इनका मोर्टिलिटी ज़्यादा है और मॉर्बिडिटी जो फंक्शनल मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है,
1: यानी इंसान ऑन द स्पॉट मर सकता है।
0: हाँ, तो ये कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है।
1: तो डॉक्टर जी, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे कहा जाता है कि पेशेंट को, वो जो मरीज है या जो लगा है, जिसे घाव लगा है, उसे हिलाना नहीं चाहिए। तो एक्सीडेंट के टाइम पर कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को लेकर, मतलब अगर उसे हॉस्पिटलाइज करवाना भी है तो कैसे इंसान उसकी मदद करे?
0: जैसे आप ये एक एक्सीडेंट साइट में हो बाय चांस, तो आप पहले काम करना है एम्बुलेंस सर्विस को बुलाना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। दूसरा, अननेसेसरली पेशेंट को हिलना नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट हार्म्स में है, जैसे उधर आग लगा हुआ है, तो मूव आउट ऑफ द हार्म वे। लेकिन अगर आदमी कार में फंसा हुआ है तो खींचना नहीं उसको, क्योंकि वो खींचने में आप
1: उसको और इंजर्ड कर सकते, और उसको डैमेज कर सकते।
0: और इसको गर्दन को हिलाना नहीं है बिल्कुल, गर्दन और स्पाइन को। तो लॉग रोल टेक्निक जैसे, तो अगर पेशेंट ज़्यादा डेंजर में नहीं हो तो आप जस्ट होल्ड द हेड और इन्फॉर्म एम्बुलेंस एंड पुलिस और जस्ट वेट,
1: जैसे वेट करना है। और डॉक्टर जी, जब हम कहते हैं गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर क्या है और इसमें, इसके दरमियान किस तरह से पेशेंट को हमें, मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए?
0: ये गोल्डन आवर ये कॉन्सेप्ट है जैसे, मतलब सिर्फ घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचा देते पेशेंट को, उतना
1: उसके बचने के चांसेस
0: बहुत अच्छा है। जैसे आप, जैसे एम्बुलेंस वाले उधर आते हैं, पहले चीज़ वो देखते हैं पेशेंट कॉन्शियस है नहीं है, ब्रीदिंग कर रहा है, वो ATLS बोलते हैं हम, उसके हिसाब से एयरवे एस्टेब्लिश करते हैं, आईबीलाइन एस्टेब्लिश करते हैं, उसका कॉलर लगाते हैं और स्पाइन बोर्ड में लगा के उसको बिल्कुल हिलाते नहीं। तो जितना जल्दी वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है उतना
1: अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इमरजेंसी, मान लीजिए एक दुर्घटना हुई है, तो इमरजेंसी में अगर कोई मदद करना भी चाहे तो किन किन बातों का हमें विशेष रूप से, जैसे आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसके अलावा कौन सी बातों का ध्यान रखना है? जैसे मतलब हॉस्पिटलाइज कर दिया, उसके बाद किस तरह से,
0: जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो ये टीम अप्रोच, जैसे हम एम्बुलेंस वाले हमको फ़ोन करते हैं तो वो हमें थोड़ा अपडेट देते हैं ऐसे पेशेंट आ रहा है, तो हम जल्दी से ये टीम बना जाते हैं। टीम में ICU स्पेशलिस्ट होता है, इमरजेंसी स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी, अगर चाहिए तो न्यूरो सर्जन, और डिपेंडिंग ऑन द इंजरी। लेकिन ये टीम पहले रिसीव करके हम ATLS जो ABCDE बोलते हैं, ए एयरवे, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहे तो उसको इंटुबेट करना पड़ता है, तो बी ब्रीदिंग, अगर कुछ लोग को चेस्ट इंजरी हो जाता है, चेस्ट में ब्लड और एयर हीमोनियोथोरैक्स हो जाता है, उसको हम इमरजेंसी चेस्ट ट्यूब डालना है। और साइड बाई ये एक एक करके नहीं होता है, साइमल्टेनियसली होता है, तो इसलिए टीम वर्क हर मिनट इम्पॉर्टेंट है। तो एक लाइन लगा के फ्लूइड रश करते हैं, और जब स्प्लिंट लगा देते हैं, जैसे भी ब्रेस या अगर फ्रैक्चर हो गया तो, या कुछ ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बैंडेज लगा देते हैं, जैसे इसका स्टेबलाइज होते हो जाता है, पहले स्टेबलाइज द पेशेंट, तो पहले
1: ये सारी चीज़ें होती है। तो डॉक्टर जी, जैसे एक पेशेंट मान लीजिए आपके यहाँ पर आ जाता है इमरजेंसी में, आपने टीम तैयार सारी कर ली, तो अब इन्वेस्टिगेशन का जो साइड है वो कैसे शुरू होता है, कि आपको कैसे पता चले कि आप एसेस कैसे कर पाओगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चोट होती है वो अंदर की तौर पर है, बाहर में दिखाई नहीं दे रही है, और हो सकता है कि इन दैट केस अगर पेशेंट बोलने की भी स्थिति में नहीं है, तो हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट, शुरू कैसे किया जाता है?
0: जैसे हम बोलते हैं, जैसे जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट को कमर में दर्द है या नेक में दर्द है या कुछ भी है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हम अस्यूम करते हैं इसको इंजरी।

0: रही है, तो हम सर्वाइकल कॉलर स्पाइन बोर्ड को हटाते नहीं है, जैसे इनका थोड़ा स्टेबल हो हम इसको सीटी स्कैन लगता है।
1: अच्छा।
0: तो हर एक एक एक्सरे करने में टाइम लगता है, व्यू भी अच्छा नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: सीटी स्कैन जल्दी से जल्दी हो जाता है और ओवरव्यू, अगर चेस्ट में इंजुरी
1: है, बॉडी का आपको दिखाई देता
0: है, इंजुरी है, अगर ब्लीडिंग अपडोमन हो रहा है या कुछ लिम्ब इंजुरी है या स्पाइन फ्रैक्चर है हो जाता है। उसके बाद ये सीटी स्कैन के बाद, उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन लाइक एमआरआई स्कैन करते हैं, नहीं तो पेशेंट को जल्दी से आईसीयू शिफ्ट करते हैं। आईसीयू शिफ्ट करके पेशेंट को और स्टेबलाइज करना पड़ता है।
1: ओके, तो आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद जैसे ट्रीटमेंट कैसे शुरू की जाती है वहां पर, और आपका जो टीम का रोल है वो किस तरह से आगे बढ़ता है?
0: जैसे आईसीयू में भी हमारा टीम पूरा
1: स्टैंड बाय रहता है,
0: नहीं पूरा काम करता है, स्टैंड बाय नहीं है, पूरा काम करता है। जैसे आईसीयू में हम रिससिटेशन होने के बाद जब वी कैटेगराइज द पेशेंट स्टेबल है या बॉर्डरलाइन स्टेबल है, अनस्टेबल है या एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, तो अगर पेशेंट स्टेबल है तो इन पेशेंट को हम देन उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा के, चाहे अगर एक फ्रैक्चर है या एक स्पाइन इंजरी है, उसका डेफिनेटिव सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर पेशेंट अनस्टेबल है या बॉर्डरलाइन स्टेबल है, उसको अगर ब्लड देना है, जो भी देना है, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों को एसिडोसिस हो जाता है और बीपी कम हो गया तो उसको ब्लड दे के या वॉल्यूम दे के बीपी बढ़ाना पड़ता है और उसको फिजियोलॉजिकली थोड़ा और स्टेबल करना पड़ेगा।
1: ओके।
0: तो और तीसरा कैटेगरी बॉर्डर अनस्टेबल पेशेंट है ये और एक्सट्रीमली अनस्टेबल, इसको तो अभी आप स्टेबलाइज करने के बाद सर्जरी के लिए इसको ले नहीं सकते, क्योंकि इन पेशेंट को एक्सट्रीमली अनस्टेबल और अनस्टेबल पेशेंट को सर्जरी करेगा, सर्जरी भी एक फॉर्म ऑफ इंसल्ट है टू पेशेंट, छोटा है तो इसका कंडीशन और डेंजर हो सकता है। इनको हम डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, मानिए अगर इनको पेल्विक फ्रैक्चर है या ब्लीडिंग है, उसको ब्लीडिंग को रोक के फिक्सेटर लगा के, अगर ए पेशेंट को लाइफ सेविंग सर्जरी, सिर्फ लाइफ सेविंग सर्जरी जैसे,
1: अच्छा मतलब सर्जरी भी डिसीजन लेना एकदम तुरंत आप नहीं लेते, देखना चाहिए कि उसकी कंडीशन कैसे।
0: स्टेबल पेशेंट को डेफिनेटिव सर्जरी करने में हमको काफी एडवांटेज है, क्योंकि जल्दी इसको रिकवरी हो जाता है, लेस नंबर ऑफ आईसीयू डेज, लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल डेज, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके कॉम्प्लिकेशन है और ये भी कम हो जाता है, और इस लोगों को ये हम अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हम कम कर सकते हैं अगर स्टेबल पेशेंट को जल्दी विद इन 24 आवर्स ऑपरेशन करें तो। लेकिन अनस्टेबल पेशेंट को डेफिनेटिव सर्जरी नहीं करना है, जो अनस्टेबल फ्रैक्चर को फिक्स करना है एक्सटर्नल फिक्सेटर, वो हम आईसीयू में या बेड साइड में पिन लगा के उसको स्टेबल करके इसको डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स करते हैं।
1: अच्छा, पहले उसको जो डैमेज हुआ है उसको पहले कंट्रोल करके,
0: क्योंकि अनस्टेबल फ्रैक्चर्स लगातार ब्लीड करते जाता है, तो उसको फिक्स करके जो लाइफ सेविंग सर्जरी है, जैसे सिचुएशन में पेशेंट को पेल्विक इंजरी है, उसको हम फिक्सेटर बेड साइड में लगा के, इसके साथ में इसको लिवर इंजरी है या स्प्लीन इंजरी है या
1: मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रायोरिटी है उसको पहले ध्यान दिया जाता है,
0: लाइफ सेविंग सर्जरी करते हैं, उसके बाद पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं,
1: तो
0: एक दो दिन या तीन चार दिन जो भी है, तो जब पेशेंट स्टेबल होने के बाद ही इनको डेफिनेटिव सर्जरी करना चाहिए।
1: मतलब डिपेंड करता है कि पहली क्या प्रायोरिटी है, अगर वो अनस्टेबल है तो उसको पहले स्टेबल करवाना बहुत जरूरी हो जाता है और तब जाकर इंजरीज को फिर उसको सर्जिकल दिया जाता है, सर्जरी की जाती है, और जब तक वो स्टेबल नहीं है पहले तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यकता है। तो हर एक एक्सीडेंट जिस तरह से डॉक्टर ने हमें समझाया, ऐसी बहुत सारी इंजरीज हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी ऐसी इंजरीज हैं जिसको प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उनकी पूरी टीम बिल्कुल तैनात रहती है किस तरह से उसे हैंडल करना है। चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में।

जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर, और आज हमारे साथ ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम स्पाइन इंजरीज पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो खासकर एक्सीडेंट के दौरान कई सारे लोगों को झेलना पड़ जाता है, और स्पाइन इंजरीज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जी, आप एक सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है और स्पाइन इंजरी स्पाइन सर्जन है, तो हमें स्पाइन इंजरी

0: के बारे में बताइए, ये कैसे होता है? और जो गर्दन और पीछे पीठ का जो हिस्सा है, क्या ये भी स्पाइन इंजरी में इंक्लूड किया जाता है?
1: हाँ जी, ये जैसे हमने बात किया पॉलीट्रोमा में, पॉलीट्रोमा में जैसे हम बोलते हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज स्पाइन इंजरी होता ही है, तो हम हमेशा ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और ये स्पाइन इंजरी पेशेंट्स मोस्टली यंग पेशेंट्स है, यंग पेशेंट पॉलीट्रोमा में हो जाता है, एल्डरली पेशेंट भी छोटे इंजरी में भी स्पाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो हमारा अवेयरनेस इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सीडेंट साइड से कुछ पेशेंट अनकॉन्शियस है तो यू हैव टू अस्यूम उसको स्पाइन इंजरी है, तो कॉलर लगाना पड़ेगा, स्पाइन बोर्ड में लगाना पड़ेगा। या अगर पेशेंट बोलता है मेरे को नेक में पेन है, बैक में पेन है, या अगर बोलता है आई कॉन्ट फील दिस, या सेंसेशन नहीं है, या आई कॉन्ट मूव द लेग और आई कॉन्ट पी पी आई यू नो, तो हमारा पहला सस्पिशन स्पाइन इंजरी।
0: तो जैसे ऐसा कहा जाता है डॉक्टर जी कि अगर किसी को स्पाइन इंजरी हुआ है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, इसका कारण क्या है?
1: तो जैसे हमने बताया स्पाइन इंजरी पेशेंट को हम इमोबिलाइज करना चाहिए जल्दी से जल्दी, जैसे सर्वाइकल कॉलर, हॉट कॉलर बोलते हैं, फिलाडेल्फिया कॉलर, और स्पाइन बोर्ड इसके साथ ही हम शिफ्ट करते हैं। तो जब हम मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ये इसके साथ ही करते हैं, तो और उसके बाद जब हम ये डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, ये सब हम फास्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पाइन इंजरी में हम प्राइमरी इंजरी बोलते हैं और सेकेंडरी इंजरी, प्राइमरी इंजरी हमारा कंट्रोल में नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो वो एक्सीडेंट का वेलासिटी के ऊपर है, कितना
0: जोर से उसे लगा है,
1: लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हड्डी है या डिस्क है वो स्पाइनल कॉर्ड को इंजूर कर देता है, ठीक है। और जितने जल्दी हम इसको डिकम्प्रेस, जो इंजरी को निकालेंगे स्पाइनल कॉर्ड से, उसका स्पाइनल कॉर्ड का रिकवरी चांस बढ़ता है,
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा सेकेंडरी इंजरी, हम जितने डिले करते हैं और पेशेंट का बीपी कम हो जाता है या ऑक्सीजनेशन कम होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मांगता है, तो जितना भी आप डिले करोगे तो ये चांस ऑफ रिकवरी आपको
0: बिल्कुल उसका मतलब ज़्यादा होते जाता है। ओके तो यहाँ पर डॉक्टर जी, स्पाइन इंजरी में सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है?
1: हर स्पाइन इंजरी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्टेबल अनस्टेबल इंजरी बोलते हैं, इंजरी विथ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, जैसे इनका मूव नहीं कर सकते हैं, सेंसेशन नहीं हो रहा है, और बाउल ब्लैडर है, पेशाब का तकलीफ है, उसको तो ज़रूर ऑपरेशन करना चाहिए मोस्टली। और जिसको ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, उसको हम इमेजेस में सीटी और एमआरए में देखते हैं, तो अगर ये कोलैप्स स्टेबल है तो लेस देन 50% इंजरी, तो हम इसको कंजर्वेटिव मतलब ब्रेसेस से और बेड रेस्ट से हम
0: ठीक कर सकते हैं।
1: जो अनस्टेबल पेशेंट है, सिर्फ उसको अनस्टेबल और स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा है,
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: हम ऑपरेट करना पड़ेगा।
0: तो डॉक्टर जी, क्या ऐसा होता है कि स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को चलने फिरने में तकलीफ हो? और कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि स्पाइन इंजरी होती है उसे आगे चलकर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है जब चलते हैं तब, तो क्या ये सच है?
1: हाँ जी, जो ये जब ये एक्सीडेंट होता है, जैसे हमने पहले बताया, जल्दी से आप ऑपरेशन करोगे तो इसका रिकवरी का चांस बढ़ता है।
0: अच्छा।
1: तो ये ऑपरेशन कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट जरूर चलेगा, तो ऑपरेशन से इनका चांस ऑफ रिस्क रिकवरी बढ़ता है,
0: जी
1: ठीक है। और ऑपरेशन का एक और फायदा है कि आप जो फ्रैक्चर हुआ है उसको फिक्स किया, तो पेशेंट को जल्दी से आप आउट ऑफ द बेड मोबिलाइज कर सकते हैं, इससे हम कॉम्प्लिकेशन लाइक जैसे बेड सोर, न्यूमोनिया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सबको हम कम कर सकते हैं।
0: तो ये सारे फैक्टर्स मतलब देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के अंदर ये, जितना जल्दी उनको ये रिकवरी के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो एटलीस्ट मोबाइल हो सके, चलने का नहीं बट एटलीस्ट वो बैठ सके, इतना वो अपने आप कर सके,
1: रिहैबिलिटेशन जल्दी शुरू कर,
0: बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा कि स्पाइन इंजरी कहते हैं ना कि रीढ़ की जो हड्डी है वो हमारे शरीर का आधार है।

अगर रीढ़ की हड्डी में कोई घाव या चोट लग जाती है तो बिल्कुल इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हो सकता है कि मरीज़ को चलने फिरने तक की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन उसे जितना जल्दी आप हॉस्पिटलाइज करते हैं, जितना जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की भी नौबत बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत सारे एक्सरेज के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि उस पेशेंट को या उस मरीज को सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं। तो बिल्कुल एक्सीडेंट्स के दम पर कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं ऑन द स्पॉट। कई बार इसी कारण बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हमें झेलना पड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ इंजरीज पर हम बात कर रहे हैं जो एक्सीडेंट में कई सारे लोगों को हो जाती है, लेकिन पहले ही घंटे में अगर इसको बहुत ही ध्यान से इमरजेंसी के दौरान में ही उनकी सारी जो सुविधाएं हैं उसे अगर पहुंचा दी जाए, उपलब्ध करा दी जाए, तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुर्घटना के समय, जब अगर आप किसी रास्ते में कोई ऐसी दुर्घटना देखते हैं तो बीइंग अ सिटीज़न आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। जी हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल करना चाहते हैं तो कम शब्दों में आप हमारे साथ बिल्कुल कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 4028085 हमारा नंबर है। और हमारी टेक्निक पर हमारे साथ बने हुए हैं फिजान उरुसा बानो जो प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन। आते हैं एक गीत का ब्रेक लेकर। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रामा पर, और आज हमारे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर करुणागरन हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं।

0: की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, और आज हम स्पाइनल इंजरीज पर बात कर रहे हैं, पॉलीट्रॉमा के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी। और जैसे हमने बताया कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम अंग है, उसी प्रकार से हमारी कमर यानी हमारा हिप जॉइंट जो है, हमारी जो पेल्विक है, अगर इसमें कई बार घाव लग जाए, अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या ये दूसरी इंजरीज से ज़्यादा सीरियस हो सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर करुणा गरन से, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। तो डॉक्टर जी, क्या पेल्विक और हिप जॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो ये फ्रैक्चर दूसरे फ्रैक्चर से क्या ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है?
1: हाँ जी, ये पेल्विस और हिप फ्रैक्चर्स, ये यूजुअली यंग पीपल में हाई वेलोसिटी इंजरी जैसे पॉलीट्रॉमा में हो जाता है, और ये एल्डरली पेशेंट्स में भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से, जैसे बाथरूम में गिर गया है, जैसे हिप फ्रैक्चर्स हो जाता है। तो और यंग पेशेंट में ये पेल्विक इंजरी हाई रेट ऑफ मोर्टालिटी एंड मोबिडिटी, बिकॉज ये ब्लीडिंग, ये ब्लीड ज़्यादा करता है, कैंसिलस बोन है।
0: जी जी।
1: तो और एल्डरली में अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट, इट कैन लीड ऑन टू डेथ ड्यू टू इमोबिलाइजेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रिकग्नाइज करना और सही तरह से ट्रीट करना।
0: तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? मान लीजिए डॉक्टर, अगर किसी को घाव लग गया है, कोई गिर गया है, घर में ही कई बार ऐसा होता है, बड़े बुजुर्ग फिसल कर गिर जाते हैं, तो इसे किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए?
1: ये हमेशा ये पेल्विस और स्टेबलर और हिप फ्रैक्चर्स तो हम पहले दिन ही नहीं करते हैं यूजुअली, जैसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है, यंग पेशेंट को, उसके बाद ही इसको करना पड़ता है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, जैसे मैंने बोला था ना, डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स, पहले फिक्सेटर जैसे बाहर से पिन लगा के इसको फिक्स करें, देन पेशेंट स्टेबल होने के बाद इसको ऑपरेट करें। और एल्डरली पेशेंट को जैसे पहले हम इसका कार्डिया का और सारा वर्कअप करें और उसको ऑपरेट करें। तो और सही तरह से अगर आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, इसको मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये पेल्विस

0: एस्टेबलम जैसे आपका पैर से स्पाइन को आपको जॉइन करता है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर ये खराब हो जाता है तो आप चल नहीं सकते, तो पेशेंट को बेड रिडन बन
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, इसमें सर्जरी की नौबत कब आती है?
0: सब इंजरी के वैसे हम ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वेट बेरिंग एक्सिस में जो इंजरी नहीं है, जैसे हम रमई प्यूबिक रमई और रमई फ्रैक्चर बोलते हैं, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे इलियल ब्लेड में होता है उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये आपका वेट बेरिंग एक्सिस में इंजरी है और ये इंजरी डिस्प्लेस्ड है, तो अगर इंजरी हेयरलाइन क्रैक है ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर इंजरी डिस्प्लेस्ड है इसको सही तरह से फिक्स करना पड़ता है।
1: तो क्या डॉक्टर इसका आउटकम अच्छा होता है?
0: आउटकम बहुत अच्छा होता है, जैसे ये सर्जिकली आल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये बहुत पेल्विक एस्टेबलर एंड हिप फ्रैक्चर टेक्निकली बहुत डिमांडिंग है, इसको अलग ट्रेनिंग करना पड़ता है, बार बार करने में आपका टेक्निक भी बहुत बेहतरीन हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह इसको फिक्स करोगे तो इसका रिजल्ट्स इज वेरी वेरी वेरी सैटिस्फाइंग।
1: तो डॉक्टर जी, पॉलीट्रॉमा और स्पाइनल इंजरीज जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो इसमें कौन कौन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट को हो सकते हैं?
0: वैसे पॉलीट्रॉमा में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाता है, स्पाइन इंजरी में अगर आपको पैरालिसिस हो गया तो यू आर लाइफ लॉन्ग यू आर पैरालाइज। जैसे पेल्विस में भी आपको सही तरह से फिक्स नहीं किया है, या पेल्विक टिल्ट हो गया या स्टेबलर हिप जॉइंट ठीक तरह से नहीं है, तो यू आर बेड रिडन और यू आर लिम्पिंग, तो इसका मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इंजरीज में कॉम्प्लिकेशन रेट्स, इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी सब ज़्यादा है, और इनका रिकवरी प्रोसेस भी बहुत लंबा है,
1: मतलब टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, और डिपेंड करता है कि अगर आपका एज फैक्टर भी क्या इसमें होता है, कि अगर आपकी एज कुछ ज़्यादा है तो रिकवरी भी बहुत धीरे धीरे होती है।
0: नहीं, अगर एल्डरली पेशेंट्स में रिकवरी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि उसका और भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, और यंग पेशेंट को भी इसका टाइम लगता है। जैसे एक रिस्ट फ्रैक्चर है
1: जी,
0: तो आपने फिक्स किया तो पेशेंट 3 या 4 हफ्ते में काम कर सकता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर एक पेल्विक और स्पाइन फ्रैक्चर हो गया तो आपको महीने लग जाता है रिकवरी में, उस पेशेंट को बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन देना पड़ता है, और इसका फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरत है, और इनका इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन, क्योंकि अगर एक यूजुअली यंग अडल्ट है वो फैमिली का ब्रेड विनर है,
1: बिल्कुल,
0: वो कम से कम उसका 3 से 6 महीने से या 9 महीने को इसका आउट ऑफ अर्निंग हो जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: ये चैलेंज हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: और सीवियर स्पाइन इंजरी में डेडिकेटेड स्पाइन रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ता है, तो फिलहाल अभी मॉरिशियस में इसका फैसिलिटीज बहुत कम है, स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, लेकिन जितना भी गिवन सिचुएशन हम उसको एक सिस्टम बनाया हुआ है तो रिजल्ट्स अच्छा है।
1: तो डॉक्टर जी, रिहैबिलिटेशन की जब आप बात करते हैं तो इसमें रिहैबिलिटेशन की क्या भूमिका है, क्या रोल है?
0: नहीं, वैसे रिहैबिलिटेशन एक पेशेंट को ब्रिंगिंग बैक टू द बेटर फंक्शनल आउटकम, जैसे पहले जैसे, तो सच बोले तो यू कैन, आप पहले जैसे हो नहीं सकते हैं,
1: सही बात,
0: अगर आप 95% बेटर है, 98% बेटर है, 90% बेटर है या पैरालाइज्ड है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल आपका ट्रीटमेंट हुआ है और रिहैबिलिटेशन हुआ है। अ वेल डन सर्जरी इज ओनली आधा डिस्टेंस क्रॉस किया है, तो एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन, गुड रिहैबिलिटेशन आपको पूरा, जैसे आपको अच्छी तरह फिक्स कर दिया है, रिहैबिलिटेशन अच्छा नहीं है तो पेशेंट को स्टिफनेस हो जाता है या मूवमेंट कम हो जाता है।
1: तो क्या इसमें उनको जैसे फिजियोथेरापीज और ये सारी थेरापीज का इंक्लूजन किया जाता है?
0: हाँ, ये रिहैबिलिटेशन इट्स और अलग टॉपिक है,
1: तो
0: फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्वा थेरेपी सब है
1: इसमें। क्या काउंसलिंग भी होती है साथ ही साथ?
0: बिकॉज मैं वो पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो जाता
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: और फ्यूचर का अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आप सोचिए एक 20-year-old he was walking, running, playing, enjoying the best of his life, स्पाइन इंजरी हो गया, पैरालाइज्ड है, ऑन व्हील चेयर, तो सब फ्यूचर

डार्क है, तो इसको रिहैबिलिटेशन में और साइकेट्रिक काउंसलिंग और सब में उसको वो हम उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई अगर आप चल नहीं सकते इवन और व्हील चेयर यू कैन मेक अ लाइफ। तो इसी में रिहैबिलिटेशन में स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर में और भी पेशेंट्स ऐसे आता है, वो आपस में मिलता है।

0: भी इतना अच्छा आया हुआ है तो
1: जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली
0: और वो यू कैन हैव अ इकोनॉमिक अर्निंग ऑल्सो अगर अच्छी तरह रिहेबिलिटेशन उसका मेंटल रिहेबिलिटेशन भी हो जाए तो
1: तो क्या डॉक्टर ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का या एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ही ये होता है या फिर हर छः महीने में या साल में एक बार या इस तरह से उसे दिया जाता
0: है? नहीं, रिहैबिलिटेशन तो स्पेसिफिक टाइम में होता है 3 अच्छा। महीने या 6 महीने या 1 साल उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि पेशेंट और फैमिली को By that time, उसको पूरा समझ में आता है क्या करना है।
1: तो यहाँ केवल पेशेंट के यहाँ पेशेंट का नहीं उनके फैमिली का भी रिहैबिलिटेशन होता है या
0: फैमिली का रोल बहुत है जैसे हम बोलते हैं ना एक अगर एक आदमी मरता है सिर्फ वो नहीं मरता उसके फैमिली उसके
1: को भी अफेक्ट करता है बिल्कुल
0: तो जैसे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो पेशेंट का रिकवरी फंक्शनल थिंग सब अफेक्ट हो जाता है फैमिली स्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और फैमिली का रिहैबिलिटेशन
1: जो रोल है
0: मेंटल काउंसलिंग इज आल्सो बहुत
1: तो क्या डॉक्टर जी मान लीजिए अगर कोई स्पाइन इंजरी या फिर किसी पॉलीट्रॉमा से निकला है तो क्या उसे फिर डेली लाइफ में भी डाइट या ऐसे कुछ चीज़ों का भी समावेश करना चाहिए जो एक तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स दे या हेल्दी लाइफस्टाइल या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उसके लाइफ में फिर बाद में चेंजेस के बाद आती हैं?
0: नहीं, ये हर इंजरी में ये ट्रू है। देखिए पॉलीट्रॉमा में तो इतना चोट हुआ है बॉडी आपका रिबिल्ड करना पड़ेगा तो न्यूट्रिशियस हाईली हाई प्रोटीन एंड बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: और तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बेटर फंक्शनल आउटकम के लिए अफेक्ट करता है तो अगर जैसे मैंने बताया अच्छा सही टाइम में सही जगह पे पहुंचा है अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है अच्छा रिहैबिलिटेशन हुआ है और इनका कुछ पेशेंट्स है हमें भी पता नहीं चलता है इसको एक्सीडेंट हुआ है
1: बिल्कुल कई बार जैसे इंटरनल इंजरीज की वजह से बहुत सारी
0: नहीं अगर सर्जरी अच्छा हो जाता है और उसका रिहैबिलिटेशन अच्छा हो जाता है रिकवर हो जाता है
1: तो पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा
0: बैक टू नॉर्मल
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इसमें 100% 95-98%
1: तो इसमें भी जैसे मरीज की ओर से भी क्या कोई आउटकम देना पड़ता है कि मान लीजिए जैसे बाहर से तो रिहैबिलिटेट किया जा रहा है उसको बाकी सारी चीजें तो प्रोवाइड की जा रही है क्या उनका विल पावर भी इसमें बहुत सपोर्टिव रहता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि कई बार जैसे मान लीजिए अगर आप 25 ईयर ओल्ड की बात कर रहे हैं जब व्हील चेयर पर चला आता है तो क्या उनकी तरफ से भी अगर कोई विल पावर या विलिंगनेस जो होती है जीने की जो चाह होती है विल That also help कि उनको फिर से वो एक तरह से उठकर खड़े हो सके या कई बार जो लोग चलने फिरने की भी हालत नहीं रहती है क्या उनके लिए भी साइकोलॉजिकली ये सपोर्ट हेल्पफुल रहता है?
0: जी ये विल पावर तो सबसे बड़ा फैक्टर है
1: बिल्कुल
0: ठीक है जैसे हम रह सकते हैं हम अच्छा सर्जरी कर सकते हैं हम अच्छी चीज बोल सकते हैं फैमिली रह सकते हैं लेकिन वही पेशेंट इज द वन उसको दर्द उनका है
1: बिल्कुल विलिंगनेस होनी चाहिए हाँ।
0: उनका है पहले कदम वही रखना है तो जब वो शुरू करता है दर्द तो होता है
1: बिल्कुल
0: तो उसको साथ साथ हम दवाई दे सकते हैं
1: हाँ।
0: लेकिन फिर भी
1: हाँ।
0: ये तो मशीन नहीं है ना बॉडी
1: बिल्कुल
0: तो वो उतना विल पावर से शुरू करेगा तो और लगातार उसमें काम करेगा तो उसका
1: रिजल्ट
0: विल पावर बहुत बहुत
1: बिल्कुल और इसमें पेशेंस की आवश्यकता बहुत होती है मैं समझती हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक इंजरी के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और रिकवरी का जो प्रोसेस है वो उससे भी लंबा चलता है तो इसमें कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो विल पावर विलिंगनेस की होती है और बिल्कुल फैमिली का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम होता है बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है और फैमिली के साथ साथ कहते हैं ना कि कई बार जिंदगियाँ दाव पर लग जाती है और जैसे आजकल डॉक्टर ने जैसे शुरू में कहा कि एक्सीडेंट रेट्स आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कम होने का नामो निशान नहीं है तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के ऑलमोस्ट एंड तक हम आ पहुँचे हैं तो डॉक्टर जी जस्ट इस कार्यक्रम को समअप करने के लिए आप कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे?
0: तो पहला चीज़ है आप याद रखना तो ये जो एक्सीडेंट आप

0: प्रिवेंट कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीज़ में आपने कुछ गलती नहीं किया तो सामने आने वाला या पीछे आने वाला आपको लग गया तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है स्पीडिंग, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो एक्सीडेंट का ज़्यादा है
1: चांसेस,
0: और आपका पॉलीट्रोमा का चांसेस ज़्यादा है। आप स्पीड कंट्रोल में जाएगा तो आपका इंजरी के सीवियरिटी कम है, अगर इंजरी के सीवियरिटी कम है आपका जीने का चांसेस और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन भी अच्छा है। तो स्पीडिंग तो प्लीज रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा ड्राइविंग के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल है, बात करना है, वो सब अवॉइड करना है, और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है।
1: बिल्कुल, जहाँ पर एक ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं और उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा यानी सख्त रूल्स है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फ़ायदे के लिए है। और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारी ना होने के बावजूद भी अगर हमें इसका सामना करना पड़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। और जैसे डॉक्टर ने बताया कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें अपने नियमों का पालन करना है, हमारे जो कानून सख्त कानून हमारे लिए जो रास्तों पर बनाए गए हैं उसका नियमों का पालन आप करते चले, और बिल्कुल ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसका ध्यान अगर हम रखें तो बहुत सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। तो जी हाँ, आज हमने स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रॉमा पर बात की, और आज हमारे साथ बिल्कुल सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक सीनियर कंसल्टेंट जुड़े डॉक्टर करुणा गरन हमारे साथ, टेक्निक पर हमें साथ सहयोग मिला फैजान जी का, साथ ही साथ उरुसा बानो हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और शीतल लोबिन हमारे साथ जुड़ी रही प्रोड्यूसर के रूप में। आप सभी दर्शकों ने और श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना, बिल्कुल ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार एक और ऐसे टॉपिक के साथ। और बिल्कुल हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर करुणा गरन का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, उनकी टीम का जो हमेशा तैनात रहती है ऐसे ही एक्सीडेंटल बिल्कुल एक्सीडेंट्स के लिए, जहाँ पर वे लोग बिल्कुल चाहते हैं कि कोई अपनी जान ना गंवाएं, पर हमें भी अपनी तरह से पूरी जिम्मेदारी निभानी है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात के मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। विक्टोरिया हॉस्पिटल कॉन्टेस और SSIN हॉस्पिटल पॉम्पलमसिस के बाद अब सनीरू जगन्नाथ हॉस्पिटल में भी स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई है। फ्लाक में आज सुबह इस विशेष इकाई का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। इस स्ट्रोक यूनिट का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के मरीजों को जल्द से जल्द आवश्यक इलाज उपलब्ध कराना है। एक नया कानून फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि वन क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है और अब केवल 2% मूल वन ही बचे हैं। ये महत्वाकांक्षी कानून जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने की नींव रखेगा। इसमें पहाड़ी ढलानों पर स्थित संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं। इस नए कानून के तहत एग्रोफॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही जंगलों का अधिक समझदारी से उपयोग बायोमास के स्रोत के रूप में करने की योजना है। विदेशी खबरों में

0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ के बाद सैकड़ों यात्री लापता हैं, जिनमें से कम 291 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार लापता लोगों की प्रारंभिक सूची में भारत के 100 से ज़्यादा पर्यटक और ब्रिटेन के 12 पर्यटक शामिल हैं। अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सड़कों, पुलों, संचार व्यवस्था और जल से चलने वाले बिजली उत्पादन के ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रासुआ और नुआकोट सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play. Continuous music.
2: RM3. नमस्कार दोस्तों, इस समय शाम के 4:02 हुए हैं और इस खूबसूरत समय में आपका स्वागत हम कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल से मिले दिल में।
3: दिल से मिले दिल,
2: एक ऐसा सफर जहां बात होगी उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं और कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात समझ जाते हैं। तो अभी से लेकर 5 बजे तक इस शाम महफिल में आप सभी सभी प्यारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आज अनुराधा आपके साथ हैं 5 बजे तक और बेशक 5250-6200 पर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर 4028-0070 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और आज बात हम करेंगे प्यार की, अपनापन की और उन खूबसूरत रिश्तों की जो दिल से जुड़े होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हर रिश्ता कहेगा दिल से मिले दिल।

रिश्ते तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन हर रिश्ते की अपनी कहानी है। कोई रिश्ता हंसी देता है तो कोई हिम्मत देता है, कोई सहारा देता है और कोई जिंदगी भर की यादें। तो इस समय आप सुन रहे हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम, और आज हम उन सभी रिश्तों की बातें कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में खूबसूरत को खूबसूरत बनाते हैं। तो दिलकश समा है, आगे बढ़ते हैं इसी धुन में। वैसे ब्रिटानिया से चांदनी पुरुषोत्तम इस समय हमारे साथ दे रहे हैं, तो चलिए अगला नगमा आप ही के नाम और आपके सभी परिवार वालों के लिए, सभी लिसनर्स के लिए और मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी।

0: दिल से मिले दिल।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम रिश्ते पर चर्चा करेंगे। रिश्ते, जैसे कि हमने कुछ देर पहले बताया, रिश्ते तो बहुत सारे हैं और रिश्ते की बात जब होती तो बहुत जल्द हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे। ये त्यौहार बहुत ही प्यार के साथ सभी भाई बहनों के बीच में ये बहुत ही अनोखा होता है। तो चलिए, जब रिश्ते की बात हम कर ही रहे हैं तो सबसे पहले भाई बहन के प्यार के बारे में कुछ बात कहें। भाई बहन का जो रिश्ता है वो भी कितना अनोखा होता है। बचपन में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, एक दूसरे की शिकायतें, लेकिन जब कोई बाहर वाला कुछ कह दे तो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। यही तो है भाई बहन का प्यार। तकरार भी, अधिकार भी और बेशुमार प्यार भी। तो आइए इसी खूबसूरत रिश्ते को समर्पित करते हैं ये अगला गीत। सभी हितू परिवार के लिए, मनी परिवार, रंगलोल परिवार, दुलार परिवार और पुछराज परिवारों के लिए।

0: और माँ दालबिया से मालिनी की फरमाइश पर राखी के उपलक्ष पर उनके पांच भाइयों के लिए प्यार भेजा है, तो ये अगला गीत आपके लिए बजवाएंगे मालिनी जी। अब आपके परिवार वालों, आपके भाई बहनों में जो प्यार है वो बरकरार रहे।
1: ओ मेरी बहना।
0: हेलो अनुराधा जी, सरिता फ्रॉम गुड लेंस, आपका शो तो सुपर्ब, दिल खुश हो जाता है ये गाने सुनकर। एक गाना हमारे लिए और मेरे पूरे परिवार वालों के लिए।
2: कच्चे धागों का ये।
0: तो चलिए सरिता जी, आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके पूरे परिवार वालों के लिए आपके नाम करते हैं ये गीत।

0: 103 Radio Manoranjan.
1: जैसे कुछ पहले हमने कहा कुछ गीत सुने नहीं जाते बस महसूस किए जाते हैं। अब ज़रा प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में उनके रिश्ते के बारे में कुछ कहें। प्यार वो है एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां तो करना शायद मुमकिन नहीं। कभी किसी की आवाज़ सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कभी किसी की याद पूरी शाम अपने साथ रहती है। प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, ये एक दूसरे को समझने महसूस करने और बिना कहे दिल की बात जान लेना का नाम है। जान लेना मतलब जान लें, इसी का नाम है। तो आइए एक खूबसूरत सा प्यारा सा पुराना नगमा आप सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम हम करते हैं। इस खूबसूरत एहसास के नाम एक खूबसूरत गाना।

नमस्ते अनुराधा जी, आपकी आवाज़ और बेबी साल गाने सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। मेरे 6 भाई हैं जिनको मैं ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं उन सभी को और आपके भाइयों को भी।

मेरे भाइयों के नाम हैं राज, कविराज, धीरज, स्वराज, नीरज और चचेरा भाई सुनील, उन सभी की ढेर सारा प्यार और भाभियों को भी। तो चलिए, अनीता गोविंद जी, आपके प्यार इस गाने में। सदा खुश रहें आप और आपके भाई बहनों का जो प्यार वो बरकरार हो, ये गाना।

चलिए इस प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और इस समय शाम के 4:41 हुए हैं। पिता और बेटे के रिश्ते में प्यार अक्सर थोड़ा खामोश होता है। पिता शायद हर बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ न कहें, लेकिन उनके डांट के पीछे चिंता होती है और उनकी सख्ती के पीछे बेटे के बेहतर भविष्य का सपना। कभी पिता बेटे का हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं और एक दिन वही बेटा पिता का सहारा बन जाता है।

अब जरा माँ बेटी के बारे में बोलते हैं। माँ बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा है जिसमें दोस्ती भी है, प्यार भी है और एक दूसरे की अनकही बातों को समझने की कला भी। बेटी अपनी माँ में अपना भविष्य देखती है और माँ अपनी बेटी में अपने बचपन की झलक। और आज का ये गीत उन सभी माँ बेटियों के नाम जिनके बीच रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, दिल का भी है।

और दोस्तों माँ और बेटा का रिश्ता शायद दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। बेटा जितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ की नज़र में वो हमेशा बड़ी वही छोटा सा बच्चा रहता है। और बेटा भी चाहे दुनिया के सामने कितना मजबूत बने, लेकिन माँ के सामने उसके दिल की हर बात सामने आ जाती है। माँ के आंचल जैसा सुकून दुनिया में कहीं और नहीं। तो आइए सुनते हैं माँ बेटे के इस रिश्ते के समर्पित करते हैं ये गाना।

और हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आपका प्यार ही आपके ब्लेसिंग से बहुत धन्यवाद हम कहेंगे, और आपके यहाँ भी प्यार बरकरार हो यही कामना करते हैं। और गोश्तों से दाखिन श्वेता रविश प्रीशा लविशा और सभी आबादू परिवारों के लिए ये गाना हम समर्पित कर रहे हैं। फिर कभी आपकी पसंद यानी कि फिल्म फरार का गीत अगली बार ज़रूर बजवाएंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

देखते ही देखते ये शाम के 5 बजने वाले हैं और हमारे कार्यक्रम दिल से मिले दिल प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होने वाले हैं। ठीक 5 बजे आप श्री विश्वानंद जी का साथ देंगे 5 से 6 बजे और ये खूबसूरत सफ़र वैसे यहीं पर हम ख़त्म होने करने वाले हैं। और याद रहे आज हमने बात की भाई बहन के प्यार की, प्रेम प्रेमी प्रेमिका के एहसास की, माँ बेटे और माँ बेटी की ममता की और पिता बेटे के उस खामोश प्यार की। एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते अपने आप खूबसूरत नहीं होते, उन्हें खूबसूरत बनाना पड़ता है। तो एक अंतिम भेंट छोड़े जा रहे हैं कुतेज की आशाओं की माँ कुमारी और समस्त जानू परिवार वालों के लिए। तो चलते चलते आप सबको शुभ संध्या और फिर मिलेंगे, ऐसी कामना अनुराधा की ओर से बहुत सारा प्यार।

कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र।

0: अर्थात कर्पूर के समान गौरव पूर्ण या गौरव वर्ण वाला, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर पर राज कुहार के रूप में धारण करने वाले और हृदय कमल में सदैव विराजमान भगवान शिव को माता भवानी सहित मैं नमन करता हूँ। श्रोताओं, इस श्लोक का आधुनिक विश्व के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। कर्पूर गौरव हमें शुद्धता, ईमानदारी और पारदर्शिता का, करुणावतारम मानवता, सहानुभूति और परोपकार का, तथा संसार सारम यह बोध कराता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल धन और भौतिक सफलता में नहीं बल्कि शांति, संतोष और मानवीय मूल्यों में निहित है। भुजगेंद्र हारम हमें भय और कठिनाइयों पर साहसपूर्वक विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, जबकि सदा वसंतम हृदयारविंदे आंतरिक शांति और आत्मचिंतन का महत्व बताता है। वहीं भवानी सहितम समानता, सहयोग और संतुलन का प्रतीक है। इस प्रकार यह श्लोक आधुनिक विश्व को ईमानदारी, करुणा, साहस, शांति और संतुलित जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु बिस्वा। रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी प्रिय श्रोतागण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। सावन का पावन महीना, हरियाली, वर्षा, प्रकृति की नई उमंग और भगवान शिव की आराधना का महीना है। चारों ओर झूमते पेड़ पौधे, वर्षा की रिमझिम फुहारें और मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव का स्वर वातावरण को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। सावन के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव की पूजा में अनेक वस्तुओं का विशेष महत्व है, लेकिन उनमें बेलपत्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट माना गया है। तीन पत्तियों से युक्त बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, भारतीय धार्मिक परंपरा में इसे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसकी तीन पत्तियां हमें अनेक प्रतीकों की याद दिलाती हैं, त्रिदेव, त्रिगुण और जीवन के संतुलन की भावना। लेकिन क्या बेलपत्र का महत्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित है? नहीं श्रोतागण, बेल का वृक्ष हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, संरक्षण और उसके साथ हमारे गहरे संबंध का भी संदेश देता है। भारतीय

0: परंपरा ने जिन वृक्षों और वनस्पतियों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से जोड़ा, उनके संरक्षण की भावना भी उसी के साथ जुड़ी है। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही कहानी में बेलपत्र के महत्व से जुड़ी एक ऐसी रोचक और प्रेरक कथा है जिसमें आस्था है, श्रद्धा है, प्रकृति का संदेश है और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास भी है। तो सावन की इस पावन बेला में बने रहिए हमारे साथ और सुनिए एक ऐसी अनकही कहानी जो हमें बताएगी कि सच्ची श्रद्धा केवल पूजा की विधि में नहीं बल्कि निर्मल मन, विश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान में भी निहित होती है। तो श्रोतागण, कहानी इस प्रकार शुरू होती है। सावन का यह पावन समय केवल वर्षा की रिमझिम फुहारों का नहीं बल्कि शिव और शक्ति के उस महामिलन का प्रतीक है जो सृष्टि के कल्याण के लिए रचा गया है। सनातन परंपरा में कैलाशपति महादेव को अत्यंत दयालु माना गया है, जो मात्र एक लोटा जल और तीन पत्तों वाले साधारण से बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यह बेलपत्र कोई साधारण वनस्पति नहीं है, इसके भीतर माता पार्वती के तप और हलाहल विष की ज्वाला को शांत करने का अलौकिक रहस्य छिपा हुआ है। इस दिव्य रहस्य की शुरुआत सावन के उसी कालखंड में देवलोक से हुई थी जब हलाहल विष के प्रचंड ताप से संपूर्ण ब्रह्मांड झुलस रहा था। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष की भयानक ज्वाला से चारों दिशाएं दहल रही थी। देवताओं के चेहरे पर मृत्यु का भय व्याप्त था और वे अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े थे और सभी देवतागण हाथ जोड़कर भय से थरथर कांपते हुए ब्रह्मदेव से अनुरोध करते हैं,
1: त्राहि माम ब्रह्मदेव, त्राहि माम। हलाहल विष की यह प्रलयंकारी अग्नि संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगी। यद्यपि महादेव ने इस महाविष को अपने कंठ में रोककर हम सभी के प्राणों की रक्षा की, परंतु उस विष के भयानक ताप से स्वयं उनका शरीर ज्वाला की भांति तड़प रहा है।
0: देवताओं को विचलित होते देखकर ब्रह्मदेव भी बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही धैर्य के साथ वे कहते हैं, सत्य कहा देवगण, विष की उस भयंकर जलन से कैलाश की सदियों पुरानी बर्फ भी पिघलने लगी है। यदि महादेव की यह पीड़ा शीघ्र शांत ना की गई तो उनका संताप पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। देवराज इंद्र भी वहीं खड़े थे, वे कहां पीछे रुकने वाले थे।
1: ब्रह्मदेव, आप तनिक भी चिंता न करें, हम देवताओं के पास प्रकृति की अपार दिव्य शक्तियां हैं। हम अपने अस्त्र शस्त्रों, मेघों के शीतल जल और चंद्र किरणों से अभी महादेव की इस ज्वाला को शांत कर देंगे।
0: देवराज इंद्र का उत्साह देखकर ब्रह्मदेव और गंभीर हो जाते हैं और सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं इंद्र, तुम्हारी दिव्य शक्तियां और स्वर्ग का जल इस महाविष के आगे पूर्णतः निष्फल सिद्ध होगा। यदि महादेव को इस प्रलयंकारी दाह से मुक्त कराना है तो तुरंत पृथ्वी लोक जाकर बेलपत्र ढूंढ कर लाओ। केवल वही त्रिदल पत्ता महादेव की प्रचंड ताप को हर सकता है।
1: बेलपत्र? ब्रह्मदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? न तो वह कल्प वृक्ष की भांति समुद्र मंथन से निकला कोई दुर्लभ वृक्ष है और न परिजात जैसा स्वर्ग का अद्भुत पुष्प। वह तो साधारण मनुष्यों के आंगन में और जंगलों में उगने वाला एक मामूली पत्ता है। क्या स्वर्ग के दुर्लभ पुष्पों से परे वह साधारण पत्ता महादेव का संताप हर पाएगा?
0: देवराज इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो इंद्र, वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसका प्रादुर्भाव तो स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती।

0: पति के अनन्य तप की ऊर्जा और उनके श्वेत बिंदु से हुआ है। ब्रह्मदेव के यह कहते ही बेलपत्र का जन्म माता पार्वती के श्वेत बिंदु से हुआ है। इंद्र की जिज्ञासा बढ़ गई। ब्रह्मदेव की वाणी से भूतकाल का वह अलौकिक दृश्य देवलोक के समक्ष जीवंत हो उठा। मंद्राचल पर्वत की एकांत वादियां, चारों ओर दिव्य शांति थी। जहां माता पार्वती शिव के ध्यान में लीन थीं, तभी सप्त ऋषि उनका अटल संकल्प परखने वहां पहुंचते हैं और कहते हैं,
1: हे देवी, आप 84 लाख वर्षों से अन्न और जल का त्याग करके इस कठोर भूमि पर तपस्या कर रही हैं। तीनों लोकों में आपके इस कठोर व्रत की चर्चा है, परंतु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वैरागी शिव आपको पति रूप में स्वीकार करेंगे या प्राप्त होंगे?
0: माता पार्वती ने जैसे ही सप्त ऋषियों की आवाज सुनी, नेत्र खोला और अटूट विश्वास के साथ कहा, हे महर्षियों, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव हैं। यदि उन्हें पाने के लिए मुझे अनंत काल तक भी तपस्या करनी पड़ेगी तो मैं बिना संकोच करती रहूंगी। जब तक वे मुझे स्वीकार नहीं कर लेते, मेरी यह तपस्या समाप्त नहीं होने वाली है।
1: धन्य है आपका यह अनन्य प्रेम देवी। संसार की कोई शक्ति अब शिव और शक्ति के इस दिव्य मिलन को नहीं रोक सकती है।
0: पहले की घटनाओं का जिक्र करते हुए फिर ब्रह्मदेव इंद्र से आगे बताते हैं, इंद्र, जब सप्तऋषि चले गए तब माता पार्वती शिव के ध्यान में और गहराई से उतर गईं। उनके उस घोर तप की प्रचंड ऊर्जा और शरीर के ताप से उनके मस्तक पर पसीने की कुछ दिव्य बूंदें उभर आई थीं। वे केवल जल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण तपस्या का सार थीं।
1: फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? उन बूंदों से उस पावन वृक्ष का जन्म कैसे हुआ?
0: जैसे ही पसीने की वह एक दिव्य बूंद माथे से छलक कर मंद्राचल की कठोर धरती पर गिरी, अचानक पृथ्वी का सीना फटा और एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसी प्रकाश के बीच से एक नन्ना पौधा फूटा और देखते ही देखते वह एक विशाल हरे भरे दिव्य बेल वृक्ष में बदल गया। और तभी उस दिव्य वृक्ष को देखकर बहुत ही प्यार से माता पार्वती कहती हैं, हे वृक्ष, तुम्हारा जन्म मेरे तप के श्वेत से हुआ है। आज से तुम मात एक वनस्पति नहीं कहलाओगे। तुम्हारे रोम रोम में मेरी ही आत्मा और शक्ति का वास रहेगा। जो भी भक्त तुम्हारे पत्तों को मेरे स्वामी महादेव पर अर्पित करेगा, उसे स्वयं मेरे दर्शन और शिव की अपार कृपा एक साथ प्राप्त होगी। और इन घटनाओं का वर्णन करते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, इंद्र, माता पार्वती के अंगों की शक्ति से उस वृक्ष की जड़ में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी सती और पत्तियों में स्वयं पार्वती विराजमान हुई। इसीलिए वह वृक्ष स्वयं शक्ति का स्वरूप बन गया।

0: ब्रह्मदेव द्वारा बेलपत्र में माता पार्वती के अंगों और स्वरूपों के वास की बात सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और इसके तीन पत्तों की संरचना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठे। उत्सुकता बस उन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा,
1: ब्रह्मदेव, यदि इस वृक्ष के प्रत्येक भाग में माता पार्वती की शक्तियों का वास था तो फिर इसके पत्ते हमेशा तीन की संख्या में ही क्यों जुड़े रहते हैं? इस डंठल में केवल तीन ही पत्तियां, न दो न चार, आखिर इस त्रिदल के पीछे कौन सा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा हुआ है?
0: हे इंद्र, यह तीन पत्तियों का समूह कोई साधारण प्राकृतिक बनावट नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे बड़े दिव्य सूत्रों का साक्षात प्रतीक है। ये तीन पत्तियां स्वयं भगवान शिव के त्रिनेत्रों की प्रतीक हैं। उनकी दाई आंख सूर्य, बाई आंख चंद्रमा और मस्तक पर स्थित तीसरी आंख प्रलंकारी अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है।
1: अद्भुत ब्रह्मदेव, क्या इन तीन पत्तियों में त्रिदेवों का भी कोई अंश निहित है?
0: निसंदेह इंद्र, ये तीन पत्तियां त्रिवेदों, ब्रह्मा विष्णु और महेश का साक्षात स्वरूप हैं। इसके साथ ही तीन कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य और तीनों गुणों सत्व, रज, तम को भी दर्शाती हैं।
1: इसका तात्पर्य तो यह हुआ ब्रह्मदेव कि जब कोई भक्त अपनी हथेली पर यह त्रिदल रखकर महादेव को अर्पित करता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ा रहा होता है।
0: बिल्कुल सत्य इंद्र, जब कोई भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वह महादेव से यही प्रार्थना कर रहा होता है, हे प्रभु, मैं अपने तीनों जन्मों के पाप, अपने तीनों गुण और अपना भूत, वर्तमान वो भविष्य सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, मुझे स्वयं में समा लीजिए। और क्योंकि इसमें स्वयं आदि शक्ति का वास है, इसलिए जहाँ पार्वती का कोमल स्पर्श होगा वहां शिव को आना ही पड़ेगा। तीन पत्तियों के गूढ़ रहस्य को जानने के पश्चात देवराज इंद्र के मन में यह जिज्ञासा जागृत होती है कि क्या इस अलौकिक बेलपत्र को किसी भी समय तोड़कर शिव पर अर्पित किया जा सकता है?
1: ब्रह्मदेव, यदि यह वृक्ष स्वयं आदि शक्ति का साक्षात स्वरूप है तो क्या देवगण या साधारण मनुष्य इसे किसी भी समय तोड़कर महादेव पर अर्पित कर सकते हैं? क्या इसके अर्पण की भी कोई विशेष मर्यादा या विधि निश्चित है?
0: कदापि नहीं इंद्र, क्योंकि इस वृक्ष के रोम रोम में माता पार्वती और समस्त देव शक्तियों का वास है, इसलिए इसे तोड़ने और अर्पित करने के लिए अत्यंत कठोर नियम बनाए गए हैं।
1: वे नियम कौन से हैं ब्रह्मदेव?
0: सुनो इंद्र, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और विशेषकर सोमवार के दिन बेलपत्र को तोड़ना पूर्णतः वर्जित है। जो भक्त इन तिथियों से पूर्व ही श्रद्धापूर्वक तोड़े गए बेलपत्रों को सहेज कर रखता है, केवल वही पूजन का अधिकारी बनता है।
1: और इसे अर्पित करने की सही विधि क्या है प्रभु?
0: कभी भी कटा फटा या छिद्र युक्त खंडित बेलपत्र शिव पर अर्पित नहीं किया जाता। भक्त को चाहिए कि वह त्रिदल को शुद्ध जल या गंगा जल से धोकर उसकी चिकनी सतह को नीचे की ओर रखकर शिवलिंग पर स्पर्श कराए। केवल जल से सिंचित यह शीतल पत्ता ही महादेव के प्रचंड ताप को

0: वो शांत करने में समर्थ है।
1: अद्भुत। क्या इस वृक्ष का संबंध केवल शिव और पार्वती तक ही सीमित है या किसी अन्य देव शक्ति की कृपा भी इससे जुड़ी हुई है, यह बताइए।
0: हाँ इंद्र, हाँ, इसे शास्त्रों में श्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसके मूल में स्वयं माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। जो मनुष्य अपने आंगन में बेल पत्र वाले वृक्ष लगाता है, उसके घर से दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
1: अहो, एक साधारण सा दिखने वाला पत्ता इतने नियमों, मर्यादाओं और अपार सिद्धियों को स्वयं में समेटे हुए हैं। अद्भुत।
0: बिल्कुल सत्य इंद्र। अब बिना विलंब किए शीघ्र ही बेलपत्र की व्यवस्था करो, क्योंकि महादेव का दाह क्षण प्रतिदिन बढ़ रहा है।
1: अब मुझे समझ आया ब्रह्मदेव, महादेव के हलाहल विष के प्रचंड ताप को शांत करने के लिए शीतल बेलपत्र का तुरंत प्रबंध करना पड़ेगा।
0: तब व्याकुल देवगण ब्रह्मदेव के आदेशानुसार पृथ्वी लोक से शीतल बेलपत्र लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। महादेव के मस्तक से ज्वाला निकल रही थी, उनका शरीर प्रचंड ताप से जल रहा था। देवता हाथ में बेलपत्र लिए भय और आदर से उनके समीप खड़े थे। व्याकुल होकर और हाथ जोड़ते हुए देवराज इंद्र अनुरोध करते हैं।
1: हे प्रभु, जल की भारी वर्षा और चंद्रमा की संपूर्ण शीतलता भी आपके इस दाह को शांत नहीं कर सकी। ब्रह्मदेव के निर्देशानुसार हम माता पार्वती के स्वेद से जन्मे ये त्रिदल बेलपत्र लेकर आए हैं।
0: ब्रह्मदेव भी कहते हैं, शीघ्र देवगण इन तीन पत्तियों वाले पावन बेलपत्रों को महादेव के धधकते मस्तक और त्रिनेत्र पर रखना आरंभ कीजिए। इनमें स्वयं आदि शक्ति का वास है, जो शिव की ज्वाला हरने के लिए ही जन्मी है। देवताओं ने जैसे ही उन शीतल बेलपत्रों को शिव के मस्तक पर अर्पित किया, एक अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। शक्ति के उस कोमल और शीतल स्पर्श ने विष की भयानक जलन को क्षण भर में ही सोखना शुरू कर दिया, जो काम गंगा जल भी ना कर सका था। महादेव भी एक गहरी और शांत सांस लेते हुए बहुत ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कह उठते हैं, आहा, हे देवगण, इस त्रिदल की शीतलता ने मेरे कंठ और मस्तक की समस्त जलन को हर लिया है। देवराज इंद्र भी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं,
1: प्रभु, आपकी पीड़ा शांत हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः सुरक्षित हो गया।
0: महादेव वरदान देते हुए कहते हैं, हे देवताओं, आज सावन के इस पावन मास में इस बेलपत्र ने मेरे संताप को हरा है, इसलिए आज यह वृक्ष मुझे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रिय होगा। सावन के इस पवित्र महीने में जो भी भक्त मुझे एक लोटा शुद्ध जल और यह तीन पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करेगा, मैं उसके जीवन के समस्त विष, संताप और पाप हर लूंगा। महादेव की बात सुनते हुए इंद्र की ओर तरफ देखते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, देखा इंद्र, इसी कारण सावन का महीना महादेव को अति प्रिय हुआ। सावन की बारिश, एक लोटा जल और शीतल बेलपत्र, ये आज भी शिव के उस हलाहल विष की जलन पर मरहम लगाते हैं।
1: सत्य कहा ब्रह्मदेव, परंतु क्या यह दिव्य कृपा केवल देवताओं तक सीमित थी या किसी साधारण मनुष्य में ने भी इस बेलपत्र के चमत्कार को महसूस किया था?
0: साधारण मनुष्य क्यों इंद्र, एक पापी शिकारी गुरुह द्रुह ने भी अनजाने में बेलपत्र अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया था।

0: एक घना और भयानक जंगल। महाशिवरात्रि की घनघोर अंधेरी रात थी वह। चारों ओर हिंसक पशुओं की दहार गूंज रही थी और गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी प्राण बचाने के लिए एक अज्ञात वृक्ष पर चढ़ा बैठा था। पेड़ की डाल पर बैठा वह भय से थर थर उस अंधेरी रात में कांप रहा था और वह कहता है,
1: आज की रात अत्यंत भयंकर है। राष्ट्रता भटक जाने के कारण मैं इस घने जंगल में फंस गया हूँ। यदि मैं जमीन पर रहता तो ये हिंसक पशु मुझे जीवित नहीं छोड़ते। जान बचाने के लिए मुझे इसी ऊंचे पेड़ पर रात गुजारनी पड़ेगी।
0: उस पापी शिकारी गुरुद्रुह की कहानी को आगे इंद्र से बताते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, पता है इंद्र, वह शिकारी इतना डरा हुआ था कि उसे नींद ना आ पाए, इसलिए वह खुद को जागाए रखने के लिए अनजाने में उस पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। देवराज इंद्र उत्सुक होकर उस कहानी को सुन रहे हैं। वे भी कहते हैं,
2: ब्रह्मदेव, वह कौन सा वृक्ष था और क्या नीचे कोई दिव्य स्थान था?
0: वह एक विशाल बेल वृक्ष था इंद्र, और सबसे बड़ी बात, उस पेड़ के ठीक नीचे पत्तों और मिट्टी के बीच एक प्राचीन सिद्ध शिवलिंग स्थापित था जिसे अंधेरे के कारण शिकारी देख नहीं पाया। वह रात महाशिवरात्रि की महारात्रि थी। वह शिकारी भूखा प्यासा था जिसे अनजाने में उसका उपवास हो गया और उसके द्वारा फेंके गए बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। आगे की कहानी में गुरुद्रुह अपने आप से कहता है,
1: हे ईश्वर, बस किसी तरह यह भयानक रात बीत जाए और सुबह का उजाला हो जाए।
0: आगे की कहानी ब्रह्मदेव जारी रखते हैं। जैसे ही प्रातः काल की प्रथम किरण फूटी, वहां एक अंधी कर देने वाली दिव्य रोशनी फैली और स्वयं महादेव अपने त्रिशूल के साथ उस शिकारी के समक्ष प्रकट हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे व्याद, तुम्हारी अनजाने में की गई इस पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मुझे मेरा सर्वाधिक प्रिय बेलपत्र अर्पित किया है। यद्यपि तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं था, फिर भी तुमने मेरे प्रिय अंश को मुझ तक पहुंचाया है। आज से तुम्हारे जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट होते हैं और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं।
2: अहो भाग्य उस शिकारी का, अनजाने में चढ़ाए गए एक बेलपत्र से महादेव इतने द्रवित हो गए कि एक पापी को भी मोक्ष दे दिया।
0: इंद्रदेव की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, सत्य कहा इंद्र, यही महिमा थी बेलपत्र की। शिकारी गुरुद्रुह को मिले मोक्ष की अलौकिक गाथा सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भाव विभोर हो उठे थे। ब्रह्मदेव और इंद्र का यह पावन संवाद अब अपने अंतिम निष्कर्ष और मानव कल्याण के अमर संदेश की ओर बढ़ चुका था। देवलोक चार ओर दिव्य शांति छाई हुई थी। शिकारी की कथा के उपरांत ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र हाथ जोड़े भावुक मुद्रा में खड़े थे। तभी नेत्रों में अश्रु भरकर देवराज इंद्र कहते हैं,
2: धन्य है देवादिदेव, महादेव, ब्रह्मदेव, जिस प्रभु को बिना किसी मंत्र, बिना किसी ज्ञान और अनजाने में चढ़ाया गया एक बेलपत्र इतना प्रिय लगा

0: कि उन्होंने एक पापी शिकारी को मोक्ष का अधिकारी बना दिया। वे सावन में प्रेम और श्रद्धा से जल अर्पित करने वाले भक्तों पर तो अपार कृपा बरसाते होंगे।
1: इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मदेव गंभीर लेकिन वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, तुमने सत्य पहचाना इंद्र, महादेव को तो न सोने का मुकुट चाहिए, न छप्पन भोग और ना ही कोई दिखावा। वे तो शमशान वासी और परम वैरागी हैं। उन्हें तो बस भक्त के हृदय का सच्चा भाव, एक लोटा शुद्ध जल और तीन पत्तियों वाला एक शीतल बेलपत्र चाहिए।
0: ब्रह्मदेव, आज मुझे ज्ञात हुआ कि बेलपत्र की महिमा केवल एक धार्मिक कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का परम दर्शन है। यदि मन शुद्ध हो तो जंगल से तोड़ा गया एक साधारण सा हरा पत्ता भी ब्रह्मांड के स्वामी को भक्त का ऋणी बना सकता है।
1: बिल्कुल सही इंद्र, सावन और बेलपत्र का यह रिश्ता अनंत काल तक शिव भक्तों के दिलों में धड़कता रहेगा। जब जब भक्त सावन में नमः शिवाय जपते हुए बेलपत्र चढ़ाएंगे, तब तब वे महादेव के उस प्रलंकारी दाह पर मरहम लगा रहे होंगे जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए सहा है। इसी के साथ संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रेम से कहें, हर हर महादेव,
0: हर हर महादेव।

0: प्रिय श्रोतागण, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिएगा। तो इस कहानी का केंद्रीय संदेश है, बेलपत्र की यह कहानी हमें यह सुंदर संदेश देती है कि आस्था का वास्तविक मूल्य बाहरी वैभव में नहीं बल्कि श्रद्धा और सच्चे भाव में होता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व हमेशा भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा से भी जोड़ता है जिसमें प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, बेल का वृक्ष हमें सिखाता है कि पेड़ पौधे केवल हमारे आसपास की हरियाली नहीं है बल्कि वे जीवन और प्रकृति के संतुलन के महत्वपूर्ण आधार हैं। जब हम किसी वृक्ष, नदी या पर्वत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो उसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और उसके प्रति कृतज्ञता की भावना भी छिपी होती है। तो प्रिय श्रोतागण, आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने घर के आसपास एक बेल का पेड़ जरूर लगाएं और उसी बेलपत्र से महाशिव के शिवलिंग का को आप चढ़ाएं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी। साथ ही साथ अब समय हमारा आ गया है मुहावरों का। इस बार के जो मुहावरे हैं वे शिव जी से जुड़े मुहावरे हैं। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। विष पीना और दूसरा मुहावरा है तीसरी आंख खुलना। पहला है विष पीना और दूसरा है तीसरी आंख खुलना। पिछली बार जो मुहावरे आपसे पूछे गए थे उसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे। पहला है दिल पसीजना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है दया या जाना, दया आ जाना या करुणा जागना। वाक्य में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, गरीब बच्चे को ठिठुरते देख सोहन का दिल पसीज गया।
0: और दूसरा मुहावरा गले लगाना।
1: जी हाँ, इसका भावार्थ है प्रेम और अपनापन दिखाना, जैसे समाज को ऊंच नीच भुलाकर सबको गले लगाना चाहिए। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, इसका आनंद उठाइए। एक गांव में अलग अलग समुदायों के लोग रहते थे। वर्षों से छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच दूरियां थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। सभी लोगों ने एक दूसरे की सहायता की और मिलकर गांव को सुरक्षित किया। संकट टलने के बाद गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें समझ आया कि मुसीबत के समय न कोई ऊंचा होता है न नीचा। सभी ने आपसी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन से गांव में प्रेम, एकता और भाईचारा कायम हो गया।
0: धन्यवाद गुरु विश्वा।

0: हर बार की तरह मुहावरे पर आधारित एक लघु कथा हमारे प्यारे श्रोतागण को सुनाने के लिए।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: प्रिय श्रोतागण, आपके लिए एक आमंत्रण संदेश भी है। सावन का यह महीना अब समाप्त होने वाला है, जो बहुत ही पावन है। हमें केवल भगवान शिव की आराधना का अवसर ही नहीं देता है, बल्कि प्रकृति के और अधिक निकट जाने का भी संदेश देता है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा वृक्ष, पौधा, नदी, मंदिर या प्राकृतिक स्थान अवश्य होता है, जिससे हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां और हमारी आस्था जुड़ी होती है। क्या आपके जीवन में भी प्रकृति या किसी धार्मिक परंपरा से जुड़ी कोई ऐसी रोचक, प्रेरक या अनकही कहानी है जो हमें जीवन, आस्था और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हो? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है कि आप अपनी ऐसी कहानियां हमें लिखकर भेजें जो भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं, प्रकृति, पर्यावरण, आस्था और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हों। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में सुनाई जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। तो आइए, सावन के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित प्रकृति प्रेम के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएंगे। अपनी रचनाएँ हमें professorrajsekhar@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी एक छोटी सी कहानी किसी के मन में आस्था के साथ साथ प्रकृति के प्रति प्रेम और संरक्षण का एक नया संकल्प जगा दे। हर हर महादेव।
1: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों और सूचनाओं के लिए हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पापसंहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात तीन दलों वाला, तीन गुणों के स्वरूप वाला, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के त्रिशूल आदि तीन आयुधों का स्मरण कराने वाला यह बेलपत्र तीन जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। ऐसा एक बेलपत्र मैं भगवान शिव को अर्पित करता हूँ। श्रोताओं, इस श्लोक में बेलपत्र की आध्यात्मिक महत्व को दर्शाया गया है। त्रिदलम, बेलपत्र के तीन दल भगवान शिव के त्रिविध स्वरूप के प्रतीक माने जाते हैं। त्रिगुणाकारम, ये तीन दल सत्व, रजस और तमस तीन गुणों का प्रतीक है। त्रिनेत्रम, वे भगवान शिव के तीन नेत्रों का स्मरण कराते हैं, जिनमें तीसरा नेत्र ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। त्रियायुधम, यह शिव के त्रिशूल आदि आयुधों का प्रतीक माना जाता है। त्रिजन्म पाप संहारम, श्रद्धापूर्वक बेलपत्र अर्पित करना पापों के नाश और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। एक बिल्व शिवार्पणम, भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कोई भक्त केवल एक ही बेलपत्र भी सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भावना से शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो वह अपने अहंकार और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर शिव के प्रति समर्पण व्यक्त करता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को विदा दीजिए। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

पहले सुर्खियां। फ्लाक के सैनी रुचकनाथ अस्पताल में नई स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई है। कॉन्डोस के विक्टोरिया अस्पताल और पॉम्पलोमिसिस के एसएसओएन अस्पतालों के बाद अब देश के पूर्वी क्षेत्र में भी स्ट्रोक के मरीजों को जल्द विशेष इलाज मिल सकेगा। समय पर उपचार और बेहतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मॉरिशस के जंगलों और प्राकृतिक संपदा की बेहतर सुरक्षा के लिए नया फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल तैयार किया जा रहा है। नए कानून में जंगलों, नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ खेती में पेड़ों को बढ़ावा देने और जंगलों से मिलने वाले जैविक पदार्थों के बेहतर इस्तेमाल का भी प्रावधान है। और विदेश में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक अस्पताल में लगी भीषण आग में कम से कम 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एयर कंडीशनिंग में लगी आग और ऑक्सीजन की नलियों के कारण तेजी से फैली तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले ये खबर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ के बाद सैकड़ों यात्री लापता हैं, जिनमें कम से कम 291 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार लापता लोगों की प्रारंभिक सूची में भारत के 100 से ज़्यादा पर्यटक और ब्रिटेन के 12 पर्यटक शामिल हैं। अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सड़कों, पुलों, संचार व्यवस्था और जल से चलने वाली बिजली उत्पादन के ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रासुआ और नुआकोट सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। और मॉरिशस में स्ट्रोक यानी मस्तिष्काघात के मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। विक्टोरिया अस्पताल, कॉन्डोस और एसएसओएन अस्पताल पॉम्पलोमिसिस के बाद अब सनिरो जगन्नाथ हॉस्पिटल

0: में भी स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई हैं। फ्लाक में आज सुबह इस विशेष इकाई का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। इस स्ट्रोक यूनिट का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के मरीजों को जल्द से जल्द आवश्यक इलाज उपलब्ध कराना है। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
1: जब एक स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक में इस रक्त प्रवाह में रुकावट होती है। ये एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति है जब हर एक मिनट जरूरी है। स्पेशलिस्ट वालों के लिए एक स्ट्रोक होने पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दिनेश रितु ने कहा, मरीज को जल्द से जल्द सेवा प्रदान करने से उसके दिमाग में होने वाले नुकसानों को सीमित किया जा सकता है और इनसे जुड़ी परेशानियों को भी। बिना समय गवाए कदम उठाने की भारी जरूरत होती है। अब से देश के पूर्वी इलाके के मरीजों के लिए सनेरु जगन्नाथ अस्पताल में एक इकाई, इसके लिए समर्पित विक्टोरिया अस्पताल में और हाल में SSRN अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट्स कायम किए जाने के बाद से सेवाओं के विकेंद्रीकरण में एक नया चरण, जहां पर काफी प्रगति नोट की गई है।
2: Pourcentage death as a result of stroke là-bas dans sa région là, il baissait drastiquement. Là, déjà, nous pouvons faire dire un plaque ici, nous en avons presque 4 lits en tout qui nous pouvons gagner pour stroke patients.
1: विशेष रूप से मरीज की देखभाल करते हुए समय की बर्बादी कम की जा सकती है और खासकर स्ट्रोक के शिकार मरीज को बेहतर रूप से स्वस्थ होने के बेहतरीन मौके भी मिल सकते हैं।
0: इस उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री से पत्रकारों ने उनकी सर्जरी को लेकर उठे विवाद पर भी सवाल किए। उनकी सर्जरी एक निजी क्षेत्र के डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में की थी। हालांकि अनिल बेचू ने इस मामले पर विस्तार से जवाब देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पहले ही अपनी सफाई दे चुके हैं और राष्ट्रसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर फिर से इस पर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और आखिरकार वे एक इंसान हैं। उनको सुनते हैं।
2: Si moi je parle dans privé, moi j'allais faire l'opération, mais là, ah, t'as pas quoi dans l'hôpital. Si moi j'allais en déo, je vais dire, ah, t'en as trop beaucoup l'argent. Et donc nous, qui côté pour aller, qui côté pas pour aller. Moi-même, comme un épaule qui s'en là, moi aussi, moi, j'ai souffrance, moi aussi, j'ai malade, moi aussi, mon âge est avancé, mon bien, mon bon traitement. C'est tout qui m'a bougé, je ne vais pas faire rien qui est illégal.
0: एक नया कानून फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि वन क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है और अब केवल 2% मूल वन ही बचे हैं। ये महत्वाकांक्षी कानून जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने की नींव रखेगा। इसमें पहाड़ी ढलानों पर स्थित संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
1: फिलोसोफी हमारे प्राकृतिक विरासत का एक अहम स्थल, जंगलों के संरक्षण को लेकर चिंता हो चली।
3: La forêt ici, c'est une plantation de pin. Tu m'as dit auparavant, c'est pour produire du bois. Il y a un direct économique bénéfique de la forêt. Mais avec le temps, nous avons réalisé qu'il y a une fonction environnementale avec la biodiversité qui est la forêt. Mais il y a beaucoup plus.
1: Mauritius, il y a 42,000 hectares de zemine par jungle. Les jungles qui sont les plus petits et les zemines qui sont les plus petits et les plus petits sont les plus petits. अभी एक नए कानून फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल की तैयारी चल रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय के एक्टिंग डिप्टी कंजर्वेटर जायद झुमका ने कहा,
3: La forêt pour l'instant nous considérons comme tout bon area qui plus que 0,5 hectare qui a une canopée de plus que 10% ou ça une vegetation cover de 25%. Mais sa définition là dit exclure bon terrain agricole, bon terrain résidentiel.
1: इस विधेयक का एक प्रमुख मुद्दा है कृषि फॉरेस्ट्री में जमीनों की कटनी की समस्या से निपटने के खिलाफ संघर्ष और बायोडायवर्सिटी के हक में कदम उठाया जाना।
3: Capable d'agriculture, soit ban légumes, ban culture vivrière ensemble avec ban zob, ou ça même avec ban l'élevage, que nous mettons ban animaux aussi avec ban zob. Et ça, il y a un aspect bénéfique déjà, l'aide de la protection de la terre. Il y a une autre forme qui amène une autre forme de rentabilité pour les planteurs. Parce que si, par exemple, si je mets des arbres fruitiers ensemble avec des légumes aussi, je gagne le 30 alternatif.
1: इसके अलावा शहरी इलाकों में हरे भरे स्थल कायम करने की भी एक अहम चुनौती है। इसके साथ ही फॉरेस्ट एंड रिजर्व बिल जंगलों को अधिक स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जाता है, जैसे कि बायोमास स्रोत की तरह।
3: And one façon pour adresser ce problème là, diminuer nos carbon footprint, c'est comment dire, servir ban ce qu'on appelle ban forest biomass d'une façon soutenable. C'est-à-dire nous produire ban produits du bois et ban les autres biomasse depuis ban la forêt que nous cave brûler demain se dire pour produire d'énergie. Quand nous coupe ban la forêt ou ça quand nous même quand nous fait ban élagage tout ça, nous fait d'une façon soutenable.
1: साथ ही नदियों और नेचुरल रिजर्व्स की रक्षा पर भी खास ध्यान केंद्रित, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों पर स्थित ढलानों पर भी एक फॉरेस्ट्री इन्वेंटरी कायम किए जाने के अलावा विधेयक में अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स के वर्गीकरण और अनुमति प्राप्त गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ शामिल करने का प्रावधान है। पर्यावरण इंजीनियर Vasen Kopimutu ne kaha.
4: Oui, on a beaucoup de forêts, mais au niveau du CV, de l'espace de forêt qu'on a, des espèces endémiques qu'on retrouve dans chaque forêt, on a encore un trou. Donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail scientifique à faire pour restaurer et pour pouvoir comprendre notre forêt qui est unique au monde. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un niveau d'endémicité extrêmement élevé. Je pense que la base de cette loi qui va être intéressante, c'est du science to policy. Donc intégrer les données scientifiques, les données environnementales pour la gestion de nos forêts, réorganiser le système des bois et forêts, et en impliquant naturellement la société civile, les jeunes, le secteur privé et les chercheurs, je pense qu'on arrivera à faire vraiment un bon mélange pour que cette loi-là soit efficace.
1: एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां पर्यावरण का संरक्षण एक राष्ट्रीय हित बन गया है, नए कानून में संचालन की कई इकाइयों की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसमें फॉरेस्ट्री परिषद और सभी के हितों के वास्ते कदम को अमल में लाना तथा सहयोग बढ़ाने के लिए एक दफ्तर कायम करना शामिल है।
0: मॉरिशस और सेशल्स के बीच संसदीय सहयोग को लेकर आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम और सेशल्स की नेशनल असेंबली की स्पीकर असागेल एनेस्टा के बीच मुलाकात हुई। ये भेंट सेशल्स के एक प्रतिनिधिमंडल के मॉरिशस दौरे के तहत हुई। दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से दोनों देशों की संसदीय संस्थाओं के कामकाज और उनके संचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अफ्रीकी विकास बैंक ने मॉरिशस से टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा फाइनेंसिंग जुटाने की मांग की है। अपने कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 में अफ्रीकी विकास बैंक ने 2027 में मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 3.8% होने का अनुमान लगाया है। इसके लिए बैंक ने कई संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने की जरूरत बताई है। साथ ही सरकारी फाइनेंसिंग के बेहतर संचालन और सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच ज्यादा साझेदारी की भी सिफारिश की गई है। मामी गवातुमांग की सशर्त जमानत की अर्जी पर सुनवाई आज बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी रही। 4 घंटे से ज्यादा समय तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के कार्यवाहक जांच निदेशक से वकील कुशल लोबिन, जो मडागास्कर के इस अरबपति के वकील हैं, ने सवाल किए। पूरी सुनवाई के दौरान वकील कुशल लोबिन ने एक ही बात पर जोर दिया। उनका कहना था कि मामी गवातुमांग को गिरफ्तार किए जाने के बाद से 10 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा जुटाई गई जानकारी के बारे में उनसे कभी आमना सामना पूछताछ नहीं की गई। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को कल इंटरमीडिएट कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। अनुचित व्यवहार के मामले में उन्हें ये सजा सुनाई गई है। ये सजा ऐसे समय हुई है जब डॉक्टर पहले से ही अन्य मामलों को लेकर चर्चा में हैं। इनमें मजिस्ट्रेट वर्षा बिफेन दुर्गा की लिपोसक्शन के बाद हुई मौत का मामला भी शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम कमिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य श्रम बाजार की जरूरतों का आकलन करना है। इस त्रिपक्षीय समिति की सह अध्यक्षता बिजनेस मॉरिशस और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि ऐसे स्नातक तैयार किए जा सकें जो बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकें। उदाहरण के तौर पर पिछले 10 वर्षों में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डिजिटल क्षेत्र के विकास और आर्थिक बदलावों के कारण 140 पाठ्यक्रमों को बंद या संशोधित

0: स्थापित किया है। इन बदलावों के चलते रोजगार के नए क्षेत्र और नए पेशे भी सामने आए हैं। ज्यादा जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
1: हर जगह मौजूद नई टेक्नोलॉजी के साथ नौकरी की नई संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ये नौजवान इससे भली भांति परिचित हैं। इस क्षेत्र में पढ़ाई के बाद बहुत जल्द इनको नौकरी भी मिल सकती है। जो अभी सीख रहे हैं काम पर सहायक होगा। एप्लीकेशंस पर हम काम कर रहे हैं। मैं एनालिटिक्स पर पढ़ाई कर रही हूँ, कंपनियों में डेटा पर काम करके व्यापार को ठोस बनाने पर। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस अपनी करिकुलम को अर्थनीति की मांगों के अनुकूल ढालना चाहती हैं। 140 ऐसे कोर्स में बदलाव लाए गए या हटा दिए गए जो आज के जमाने की मांगों से मेल नहीं खाते। 150 नए कोर्स जोड़े गए हैं। गन्ना क्षेत्र संबंधी शोध प्रोग्राम हटाया गया क्योंकि MSI और IRD द्वारा इसी प्रकार के शोध किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने पिछले मार्च में नेशनल करिकुलम कमेटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और आर्थिक जगत के बीच एक ठोस सेतु तैयार करना है।
2: Deuxième, nous remarquons qu'il y a une mobilité assez parmi nous dans notre propre université publique. C'est la cause de ça, nous disons comme ça, nous devons introduire...
1: हमने हमेशा श्रम क्षमता में कमी की बात की है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में भी ज्यादा विकल्प नहीं थे, इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोर्स लेना होगा।
3: L'aspect théorique, les restes pareils. Mais il y a 20% des programmes qui nous font, qui sont adaptés avec le marché du travail. Alors, ça, 20% qui sont changés là, ce comité-là peut décider. Qui va une mesure, qui est capable de retirer. Mais il y a un nouveau élément qui se permet là, qui s'appelle micro-credentials.
1: कोर्स का 20% भाग श्रम मंडी के अनुसार होना चाहिए और इसमें लाए जाने वाले बदलाव पर समिति निर्णय लेगी। नयापन है माइक्रो क्रीडेंशियल्स जो निजी क्षेत्र के साथ तैयार होता है। कुछ कंपनियों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में नहीं है। इस समिति से हम ऐसे स्थलों में लैबोरेटरीज आदि में प्रवेश बढ़ाने पर काम कर पाएंगे। श्रम मंडी की मांगों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रोग्राम्स में बदलाव और नयापन लाया जा रहा है।
4: Mais certainement, tout le sujet des digitalisation, AI, il y a un vrai besoin. Tout ça s'appelle green transition aussi, hein? Ce qui est climat, la transformation vers les énergies renouvelables.
1: Digitalisation, AI, green transition, Jalvayu, इन सभी में क्षमताओं का विकास जरूरी है। ICT और वित्तीय क्षेत्र में भी कमियां पाई जा रही हैं। जब प्रशिक्षण मंडी की मांगों के अनुरूप न हो या जो सिखाया जाए वो आर्थिक सच्चाइयों को नहीं दर्शाता, तब स्किल्स मिसमैच की स्थिति पैदा होती है। यानी नौकरी की मांगें क्षमताओं से अलग हो जाती हैं। इसी से नौजवानों की भर्ती में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
0: विदेश खबरों में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज सुबह एक अस्पताल में आग लगने से करीब 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस अस्पताल की नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेशर फटने से आग लग गई। ये हादसा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पिम्स के गायनिकोलॉजी वार्ड में हुआ। घटना के समय नर्सरी में 16 नवजात शिशु थे, जिनमें से 15 बच्चों की मौत हो गई। सिर्फ एक बच्चे को ही बचाया जा सका। इस हादसे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित कर दिया है। हर साल 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों, अनाथों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा की जयंती हमें ये संदेश देती है कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की ज़रूरत नहीं होती। प्यार, दया और सेवा की छोटी सी भावना भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आस्था गोविंद चितामन को सुनते हैं।
5: एक सफेद साड़ी, नीली किनारी और जीवन का एक ही संकल्प, जहां पीड़ा हो वहां सेवा का हाथ बढ़े। मदर

0: टेरेसा का जीवन करुणा की ऐसी ही यात्रा है जिसमें सबसे अधिक महत्व उस मनुष्य का था जिसे अक्सर दुनिया अनदेखा कर देती है। 26 अगस्त 1910 को जन्मी मदर टेरेसा ने बहुत कम उम्र में ही सेवा का मार्ग चुन लिया था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और कुछ समय बाद भारत पहुंची। कोलकाता आगे चलकर कर्म भूमि बन गया। शुरुआती एक शिक्षिका के रूप में हुई, लेकिन विद्यालय की दीवारों के बाहर एक दूसरी दुनिया थी। गरीबी से जूझते परिवार, बीमार लोग, बेसहारा बच्चे और जीवन के अंतिम पड़ाव पर अकेले पड़े लोग। मदर टेरेसा ने अपना जीवन इन्हीं लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सफेद साड़ी, चेहरे पर सहज मुस्कान और सेवा का दृढ़ संकल्प, धीरे धीरे यही पहचान बन गई। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उद्देश्य था उन लोगों तक पहुंचना जिनके पास सहारे के लिए कोई नहीं था। अनाथ बच्चों से लेकर बीमार और जीवन के अंतिम क्षणों से गुजर रहे लोगों तक उनकी सेवा के केंद्र में हमेशा मनुष्य और उसकी गरिमा रही। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पुरस्कार नहीं था। वो थी किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठ जाना, किसी बीमार का हाथ थाम लेना और जिसे दुनिया ने भुला दिया हो उसे ये एहसास दिलाना कि वो भी महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का निधन हुआ। 2016 में उन्हें संत घोषित कर दिया गया। आज उनकी जयंती पर उनका जीवन एक सरल संदेश छोड़ता है। दुनिया बदलने के लिए हर बार बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं हो, कभी कभी करुणा का एक छोटा सा भाव भी किसी का पूरा संसार बदल सकता है।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
2: हमारे इलाके पर अस्थिर हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। कल सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लाटू पर मौसम बरसाती रहेगा। प्रवाहरेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाली जोरदार एंटीसाइक्लोन का असर शुक्रवार 28 अगस्त से पड़ने लगेगा। मौसम बरसाती रहेगा, तेज और ठंडी हवाएं बहेंगी और तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। समंदर भी खराब रहेगा और ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर शुक्रवार की सुबह। कल सुबह सूर्योदय 6:23 पर होगा और शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शिव का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मापू लेकलेसियो गुडलैंड्स में 38 साल के 38-year-old के श्री ज्ञानेश्वर सिंह बाल्डोवा, जो आतिश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 उनके घर मापू लेकलेसियो गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। रॉयल रोड रोस्टे में आराधन दुकान के पास 51 साल की श्रीमती सती प्रिया गंगा, पैदाइश नाम चांदू और जो सती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके घर रॉयल रोड रोस्टिया आराधन दुकान के पास से उठाकर दारूची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: RM

FM2 रेडियो मस्ती रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स और FM2

6:26 AM. Thank you for connecting with the Radio Masti. यहाँ पर we continue with the mood in Raftar Vibes. सभी का welcome है और यहाँ पर है Hansini जो आपके साथ है और आपके बिना Radio Masti की journey complete ही नहीं होती. So आज we are celebrating you all happy first anniversary Radio Masti की पूरी team. और याद रखिए यहाँ पर एक साल हो गया है और many more years of Masti to go. और साथ साथ Masti करेंगे, साथ साथ यूं ही हम मस्ती ज़्यादा बने रहेंगे जब तक आप लोग यहाँ पर हो. और बिल्कुल केक कटिंग तो हो गया है दिन के दौरान. वी हैड आवर रोड शो. आज हमारे सभी आरजेज जो गए थे कई जगहों पर और सेलिब्रेशंस बस जारी थे. थैंकिंग ऑल आवर टीम जो आज दिन भर के लिए वो बस जा रहे थे जगह से जगह पर पहुंच गए थे टू सेलिब्रेट. और साथ में काफ़ी सारे गेम्स हुए, गिफ्ट्स दे दिए गए हमारे लिसनर्स को और साथ में केक कटिंग. तो मुँह मीठा करके

0: यहाँ पर जो मिठास है वो बस बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं जो एवरीवन जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन आर एम फ्री रेडियो के साथ। और जी हाँ, आज बुधवार 26 अगस्त 2026 और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और आप सुन रहे हैं नई सोच प्रोग्राम। ये कार्यक्रम 7 बजे तक चलेगा। जी हाँ, इस खूबसूरत सफ़र में आप हम सफ़र बनकर साथ देंगे, हमें बहुत खुशी है। और एक से बढ़कर एक गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम की आवाज़ बढ़ती है आगे किशोर दा के साथ।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी चार दिन की है, हंसो गाओ गुनगुनाओ और हमेशा खुश रहो, बस यही है जिंदगी।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक जंग है, हमेशा एक नई जंग होती है और इस जंग में हमें जीतना ही है। इसी के साथ नई सोच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया धन्यवाद, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम।

शाम के 7 बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हैं जी हाँ, दिलों की आवाज़, वो आवाज़ जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती है, कभी खुशी बनकर, कभी याद बनकर और कभी एक खूबसूरत एहसास बनकर दिल में उतर जाती है। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप लोगों के नाम 9 बजे तक आप एंजॉय कर पाएंगे 90s और 80s के खूबसूरत तराने, पॉपुलर गाने और आपके आपका साथ रहेगा। जी हाँ, आपको फ़ोन करना है ऑन 4028070 और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5250620। चलिए, दिन बहुत लंबा था और थकावट भी है, अभी आप घर जा रहे हैं वापस काम से, तो हम आपको कहेंगे बुकवाज ऐसे, लेकिन वापस जाते जाते एक मुस्कुराहट के साथ जाइए क्योंकि कल एक नया दिन है। चलिए, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में चलिए खूबसूरत तराना सुनते हैं, आदमी फिल्म से लिया गया।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं और कुछ अपने जज्बात बातें हमारे साथ अपने गानों के ज़रिए और संगीत के साथ जुड़िए, क्योंकि कभी कभी दिल की बात लफ्ज़ों से नहीं, एक खूबसूरत गीत से कही जाती है। और यहाँ पर हमें सुन रही है फ्रॉम वाक्वा लीना जी, बहुत धन्यवाद आपको। और गाना मांग रही हैं अपनी माता जी, जी हाँ, संगीता के नाम, और भाई श्रावण के लिए। आशिकी मूवी से लिया गया। चलिए एंजॉय कीजिए अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज।
1: जी हाँ, फिल्म का नाम है करीब और आपने सुना चोरी चोरी दिल ने कहा, लेकिन दिल ने क्या कहा और जो भी कहा है प्यार से कहा होगा। और यहाँ पर अगला गाना कुदरत फिल्म से लिया गया, 1998 में रिलीज हुई और गाना जाएगा खासकर सचिन के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम पॉम्पलमुस। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं, घर पर है, खाना बना रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, तो शुभ आहार आपको और खूबसूरत गानों का मजा लीजिए।

0: दिलों की आवाज़
1: प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। चलिए यहाँ पर हमें सुन रहे हैं ज्ञान बिहारी जी, गाना खासकर

0: because हमारा जो शो था कल टीवी पर फंटास्टिक था, लाजवाब था, बहुत बहुत धन्यवाद. और जो गाना हमने गाए ओ मेरे दिल के चैन, आपको पसंद आया. और यहाँ पर इसी गीत के मांग वो कर रहे हैं और यहाँ पर हम चलाने जा रहे हैं किशोर दा का गाया हुआ इन अनदर वर्जन.
1: Do you know this one?
2: It's just an old song, but I used to sing it with my father.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: आज बजकर 7 मिनट हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम। धन्यवाद आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं फ्रॉम ओशनवा। जी हाँ, आप हैं डारेन, श्वेता, रवेश, प्रिशाल, विशा और आप आडू फैमिली, और आप लोग हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। दुलारा फिल्म का ये खूबसूरत गाना, चलिए सुनते हैं उदित नारायण, और साथ में है अर्का याग्निक।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए अगला गाना बरसात फिल्म से लिया गया और गाना हम सुनेंगे अलका याग्निक, कैलाश खेर और साथ में है प्रियंका चोपड़ा की आवाज़ों में। और ख़ास ये गाना हम चलाएंगे पृथ्वी जी के लिए जो रहते हैं मैनिल और इस समय साथ दे रहे हैं गाना उनके पापा राजन और मामा देवीना के लिए और साथ में भाई प्रणव और पूरे रघुनाथ परिवार के लिए। तो साथ देने के लिए हम आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ दीजिए, प्यार बरसाते रहिए हम पर हमेशा।

0: RM3 Radio.
1: आज बजकर 54 मिनट हुए हैं और दोस्तों आपने साथ दिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में, धन्यवाद। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, और उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सब संगत है और जी प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो है मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस एएम मोड पर और रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर, द एएम और एफएम मोड पर, दोनों मोड पर सबको के हमने की ओर से नमस्ते। बहुत छोटा का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे आज है बुधवार की रात, बुधवार 26 अगस्त 2026। और बेशक आज गमर के रात बाद जल सा के रात बाद मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के, तो नंबर ऑफ मैया का जगह देवी जगह पर

आजकल के जन्मदिन बा शादी बा शादी के सालगिरह कौन भी खास मौका को की याद करते हुए तब बेशक नंबर वक मैया काट जरो दे विद जरो विद सैंक चला शुरू कर ला जाए भोजपुरी प्रोग्राम के वो जबरदस्त गीत के साथ धना जी नाव जी की आवाज में धक्के पे धक्का

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

कमजोर हो इंसान जोन बात बात पर रोवेला जोन बात बात पर आंसू बहावेला आंसू बहे बता कौन सी मेरी संसार में चला सख्त बने के तब तू सब इस संसार के फास करे अगर बात बात मेरो बा कमजोर हो बा तो है दुनिया थोड़ा और दबा के रखी है दुनिया है इस वे एक कलयुग बोलल जला तो कोनो भी बात हो नहीं रो या उदास नहीं हो निराश नहीं हो या तू डट के सामना करिया और बोलिया भगवान अगर तू मुसीबत देवत हो प्रॉब्लम देवत हो जिंदगी में तो प्रॉब्लम सह के शक्ति भी चेहला दे गया हो कि नहीं और ऐसे में चला भोजपुरी तरह का प्रोग्राम के आगे बढ़ा आपसे कमाल बोला था अभी कुछ संगत प्रताप जी टिकटॉक पर कभी बा टिकटॉक पर आपसे रात के 10 बजे भी पोता हाउस होता ओके फिक्र नहीं करिए रात के 10 से 11 बजे ये प्रोग्राम चाहिए लाइव टिकटॉक पर टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन जहाँ पर सब के देखे भी अभी का दिन सकत बस सुने खाली रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन और अगला गीत दुल्हन के दादी बहुत ही प्यारा संगीत है और है कि जो हमने चलावती सा

ईसब संगतिया के नाम प्रीति और रेशमा माता बदल गीत तुलो के माँ इंदिरा पापा सुरेश और सब माता बदल परिवार के नाम रीता सीतालु गीत और नाम कमला जिनु के उसे आरोही खातिर देवेन नदी वाला आप वन वैनकूवर से उनके साथ देव था वन दीपक वन ब्राइटन यूके से और माँ खातिर गीत उदय दनी राम गीत और खातिर और रेहाना आसन अली फिनिक्स एवं जयलर जियाद खातिर रावी बंगारू है गीत और नाम विशाल हिरू के उसका पत्नी शालिनी कर दुगो बेटा और कर कर को परिवार है कृष्णा उक्रो नाम मुकेश है गीत चरी सूरज मुकेश गंगा सूरज गंगा सत्यम सनु और सब शिवरतन परिवार के नाम है गीत चली गीतवा एकदम जोरीबा एकदम चकाचक बा जब भी है गीतवा सुनी रहा हम तो नाचे रखी रहा गीतवा के टाइटल है दुल्हन के दादी अब दुल्हन की दादी का बोला था चल एक साथ सुने

श्री साई बाबा बोले लन टॉक लेस टॉक सॉफ्टली एंड लविंगली। दूसरे शब्दों में बाबा बोले लन कि छैना कमती बचाई के और छैना धीमी आवाज में और प्यार से बचाई के। तो साई बाबा हमेशा अच्छा बात बोले लन। शिरडी साई बाबा के टीवी सीरियल अक्सर एमबीसी टीवी पर आवेला और जुन साई बाबा के टीवी सीरियल है तो बतावेला कि इंसान की कैसे चेहरा जिए के। और बाबा अच्छा बोलन कि जब टॉकलेस यानी कि जब कमती बतेब अच्छा रहेला और जब बताया से तो चेहरा नरम आवाज में बताई के और प्यार से बताई के। तो हमेशा याद रखिए साई बाबा के कथन टॉकलेस यानी कि कमती बताई के और टॉक सॉफ्टली एंड लविंगली। एक में सबके कल्याण बाहों की नहीं। रात के 9:15 होता और ढेकुम के साथ देवतवन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर बहुत बहुत धन्यवाद के साथ दे खातिर। अगला गीत बुझावल हम बुझीला और एक गीत चलावत इस रवि दिनू के नाम फिर बाबा सिंह के भाई हरीश आई तोरों खातिर पोलॉजी की छोटी खातिर आशा जानू को जेवन प्रतिमा दीना सजू रोशनी अपाया धर्म केत गोसाई और वीरापेन ये लोग सेंटो एसएसएस कॉलेज के अध्यापक हवन जा। तो है गीत तो लोग के नाम शास्त्री बनमाली है गीत और खाती तोहर पत्नी तोहर बेटा बेटी दामाद और सब बनमाली परिवार के नाम हरीश नारायण मिडलैंड्स रहेलन है गीत और खाती तोहर माता जी खाती तोहर बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से राजमन्ना और होरियाल दिनू है गीत और नाम और यूनिवर्सिटी मगज के सब हमारे जेब लोग के नाम खासकर फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के हमारे सब स्टूडेंट्स कॉलीग और जितना कोई बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच और पीएचडी फ्रेंच में एनरोल हुआ है गीत तो लोग खातिर बुझावल हम बुझीला।

जीते जी कोई के खाए के नहीं दिला जीते जी कोई के पानी नहीं दिला पिए के तोकर मरला के बाद पत्ता में खाए के निकालत हुआ ये कौन कहते मानिया है अब वो नई बात है बैठ के रोत हुआ जब रहल तक कोई गंती नहीं ले तो इंसान की फितरत है जब वो इंसान तो रों के सामने बात जिंदा बात तब ओकर ख्याल रखिया ओके भूख लगी था खाए के दिया प्यास लगी था पानी दिया नहीं कि जब जिंदा बात तो कोई गंती नहीं लग और जब चल गल दुनिया छोड़ के तब सब कोई रोआ था आंसू बहावा था तो ता दिन कहाँ रलंजा तो इसने होला यही दुनियादारी है भैया आजकल इंसान ऐसे उगल हुआ पर सच्चा इंसान वो है जो न जब कोई इंसान जिंदा बात हो रहा के सामने में तो कर गंती लिया अब बदमिया मर गल तो कर याद में आंसू बहावत हो या खा के पत्ता में डालत हो या पानी दियो तो के जाना तो कि मिला था कि नहीं भैया ये कहते जब जिंदा बा कोई तो कर ख्याल रखे जा अगला गीत फुलिया गीत ललिता ललिता जलसा ग्रुप और एक गीत हमने चलाओ थे इस प्रेमिला के नाम हेलो प्रेमिला इंदिरा लौटन अनिता लाल जी और सब बीतू परिवार मोदाल से अनिता वन फ्री कॉम फ्लैग से परी की ओर से भाई माधव टुक टुक कर प्रणाम करते रहे और भाई अबू हवन भाकवा से आफिज लावेनिया सैंपियर से रोजिदा हाईलैंड से इब्राहिम भाई पोर्टविस से फातमा न्यू ग्रोव से गोबियो न्यू ग्रोव शोभा पॉम्पलेमुस से और राफिक मोहित हवन तयाग से और राफिक मोहित बड़ा जोर गमट कर रहा था बोला था प्रताप जी और गीतवा डाल देना फुलिया तो चल फुलिया की गीतवा सुनब सर और कमरवा डुलावब सर ए हे

Assim, nós temos que ter a camarada do leite e a casa de 0885 para telefone e carteira. E agora, passando a voz para a guita, sonteira. Desse trabalho, TikTok page para observar que 10 para Jibirat, que não bate cada rolba. Ora, sangue a logo. हमने सब को यहाँ कुनो न कुनो पालतू जानवर बा कोई चिराई पोसेला कोई तोची पोसेला कोई बिल्ली पोसेला और मॉरिशस में देखो एक कुत्ता पोसेला तो कुत्ता हमने के गो पालतू जानवर है लेकिन ये जानवर कम परिवार के सदस्य ज़्यादा लगेला और कुत्ता हमने के घर के गार्दी करेला असल में कुत्ता जो है भैरव भगवान के दूसरा रूप है अगर भारत में जेबा तो जहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति बा दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे कुत्ता की मूर्ति रह रहा तो सबसे पहले कुत्ता के पूजा होला भैरव देवता के रूप में और फिर दुर्गा माँ के तो भैरव भगवान के प्रणाम करी रहा सा और बोल जला कि जब यमदूत आवेला कोई के प्राण हरे तो हमने के जो कुत्ता है वो यमदूत से याचना करेला वो बोलेला हे यमदूत स्वामी हमार मालिक के लेके नहीं जा कहे कि हमारे मालिक के जो है वो हमके खाए के देवेला हमके पाल पुस के इतना बड़ा कर लगवा तो यमदूत से ढेर याचना करेला और प्रार्थना करेला अपन मालिक खातिर इतना वफादार है कुत्ता जो कुत्ता जनावर है जिसके हमने खाए के दे रहा सको तो झूठा खाए के दे देवेला पर ये झूठा खाकर भी हमेशा वफादार रहे रहता जब यमदूत अवेला कोई के प्राण हरे तो एक कुतवा होकर से जिसकी ते करे रहा बोले रहे हमारे मालिक के प्राण नहीं हर कहे कि हमारे मालिक अंके ध्येय माना प्यार देवे अंके खाए के देवेला तो यमदूत भी कबू कबू है भैरव भगवान की बात सुन के ओकर हृदय पिघल चला और वो खाली हाथ लौट चला ऐसे बुलर गलबा है ढेर मना पुस्तक में जब हमें रिसर्च कर रही था ऐसा बुलर गलबा कि कुत्ता जो है वो यमदूत भगवान से प्रार्थना करेगा कि ओकर मालिक के गोरा अच्छा से रखे के और ओके नए लेके जाए के यमपुरी तो बेशक अब यह जब अपन कुत्ता के देखब ओके दुलार करब तो हमारे बात सोचिए कि कैसे यमदूत भगवान से झगड़ा करेगा और अपन मालिक के प्राण बचावेगा

और अंग्रेजी में कहावत कहावत में immense best friend is his dog. Le meilleur ami de l'homme, c'est son chien. ऐसे ही लिखा लोग नहीं बोलगा ना. और अगला गीत आज करके छोकरी नीरज को मधु की जगह 11 सैंपल किरण भा बालमुकुंद गीत तोहर खातिर तोहर दुगो बेटी खातिर रवेंच पोस के श्रीमती दुआ खाच के नाम माया काशी हवन गीत और नाम शैलेश महावीर की ओर से होकर पापा जीवन घरोली को लेकर और सब महावीर परिवार के नाम और शैलेश महावीर हमने के संगे खूब नाचा था गावा था कमरवा डरा था शैलेश महावीर एक गीत खासम खास तोहर खातिर

आजकल के छोकरा छोकरी लोग बड़ी कमाल करेगा आज नहीं जन्म के छोकरा के छोकरी जो कहते पहनावा कबू छोकरा लोग लंबा बार धारण करेरा फूली पहने रहा और कबू छोकरी लोग पहुंचा रहा टी शर्ट पहने रहा तो पीछे से दिख बता नहीं जन्म सकब बोल एक्सक्यूज मी सर हाउ आर यू तो दिख बता महिला भाई एक्सक्यूज मी बहन जी बोल दे रहा दिखा था तब पुरुष हाँ तो आजकल जिप्सी बा बोले के नारी है और के पुरुष लोग के पहनावा से नहीं सकब से जाने भैया आजकल मॉडर्न जमाना बा रात के 9 बज का था वो था तू सुनते रेडियो मॉरिशस सर रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम भोजपुरी तर का रात के 11 बजे रे और बेशक तो लोग पसंद जागी का जगह देवी जगह पर टिकटॉक पे जो खुलब सा रात के 10 बजे अब हमें बात करब सर जीरा के बारे में तो जीरा कौन सी है जीरा एगो उपयोगी मसाला है एक इस्तेमाल हमने रेसिपी में इस्तेमाल करी रहा सर इस स्वाद और खुशबू के और बढ़ावेला तो डाइजेस्टिव सिस्टम का तेल अच्छा है पाचन में मदद करेगा जीरा पेट के खाना पचाए में सहायता करेगा और जिसे बड़ी पेट के आराम पहुँचावेगा और जीरा में आयन बा मैग्नीशियम बा और खनिज भी बा और एंटीऑक्सीडेंट बा जीरा में ऐसा प्राकृतिक यौगिक होला जो शरीर के शिकन के ऑक्सीडेंट नुकसान से बचावेला है और खाना में उपयोगी है जीरा सकब से दाल में डाले सब्जी में करी में चावल में रायता में या चटनी में जीरा डाला और भूख में सहायता करेला जीरा के सुगंध और स्वाद भूख बढ़ावेला तो जो आदमी लोग के भूख नहीं रखेला कमती खालन से तो जब जीरा दलबा हो जिन पौफेवा खैवा में से निकली आ हा हा ऐसा सोंधा मोकेरा तो करिया गम गम तो थोड़ा मन करी खाए के तो जीरा को छोटा सन मसाला जरूर बा लेकिन स्वास्थ्य आ हा हा एकदम ही स्वादिष्ट खाना के बनावेला तो जरूर जब मसाला में कोनो भी तकारी पकावत हो चाहे वेज हो नॉन वेज हो तो जीरा का इस्तेमाल जरूर करिए जा और ऐसे में भोजपुरी बजाया बाजी बॉयज के वो गीत नहीं सर गीत चलाओ जी सर आप लोगों के विशाल बिसी सर के नाम ओकर घरोली ओकर बेटा और सब बिसी सर परिवार के लिए तो विशाल बिसी सर है गीत खासम खास तोहर नाम पैंक पैंक झुलवा लो तू

अब हमने चौराहे को कहानी सुनाओ सर बेनॉर्ड इज सैम्पियर ये कहानी जो ना मॉरिशस में गुजरबा और बेशक कहानी के टाइटल है पॉल और वियर्जिनी पॉल और वियर्जिनी कहानी जो ना ये बेनॉर्ड डे सैम्पियर जो ना वो लिख रहा है इल दे फ्रांस में है ये कहानी रहा और बेशक पॉल वियर्जिनी जो है दुगो लेकर जो मॉरिशस में है रलंसा पॉल गरीब घर के लेकर वियर्जिनी धनवान घर के लेकर रहल और बचपन से लोग साथ साथ स्कूल जाता है बड़ा ले जो है ये लोग में दोस्ती हो फिर दोस्ती प्यार में बढ़ल और एक दिन वियर्जिनी के मौका मिलल जाए कि लाफ्रांस पढ़े जाएगी घूमे जाएगी पर वो वादा कर लक पॉल से कि जब वापस इल दे फ्रांस लौटी तो उससे शादी करी हालांकि पॉल गरीब लड़का रहल पर बहुत ही मेहनती रहल और काम करवा छुकरा रहल और वियर्जिनी जो है वो चाहे कितना भी धनी क्यों ना रहल पर वो पॉल के जो है सामान नज़रिया से दिखत रहल और जो दिन वियर्जिनी का लाफ्रांस वो दिन पॉल बहुत रोलक और इंतज़ार कर लग कि वियर्जिनी एक दिन मॉरिशस आए तो उससे शादी करी हालांकि परिवार लोग डाको नहीं रहल कहे कि वियर्जिनी जो है धनी घर के लड़का रहल और पॉल गरीब घर के लड़का कहानी आगे बढ़ते जा रहा और वियर्जिनी एक दिन को बातों में आवेला तब बातवा जो तब बातवा डूब जाला और वियर्जिनी की मौत हो जाला तो इस सदमा से पॉल के भी सदमा पहुँचेला और पॉल भी मर जाला तो एगो प्रेम कहानी है जहाँ दोनों प्रेमी जो है मर जाला क्या कि एक दूगो प्रेमी एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे सर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते रहन सर तो जब पॉल सुनला कि वियर्जिनी के जहाज डूब गल बा और मर गल बा तो ओकरे सदमा में उस शोक में जीते जीते जीते एक दिन पॉल भी दम तोड़ देवेला और पॉल की भी मृत्यु हो जाए।

रहा है अगर थोड़ा मौका मिली तो सोशल मीडिया पर जाइए या कोनो लाइब्रेरी में जाइए और हे लिबुआ खोजिए उपन्यास के टाइटल पोलिवियजनी और की निक्लेवन बेन ऑर्डर सेंट पियर एक ट्रांसलेशन हिंदी में बा तमिल तेलुगु में भी बा दे माना भाषा में भी बा सकब है के इंटरनेट पर भी कहानी पढ़े कहानी के शीर्षक याद रखिए पॉल ए वियजनी और अगला गीत मामा और पापा और अगवा के लेके गीत कल्याणी की ओर से चलावते से कल्याणी रन बॉशेरी है गीत सुरागनी की ओर से वो भी रहन बॉशेरी और जितना कोई अभी हमने की सुना था रात के गीत थोड़ा ना मामा पापा और अगवा के लेके मामा पापा अगवा के लेके रात में कहाँ जाते हैं चला एक साथ सुनब जा

रात के 9:50 हुए भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलता है रेडियो मार्शल्स रेडियो मनोरंजन पर। और संगति आलोक भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले वन कि जो इंसान तोर हक छीने की कोशिश करता तब तोरा चेहरा अपन हक खाते लड़े की, अगर तू अपन हक खाते

अर्जुन है गो स्टूडेंट के रूप में है और एगो अध्यापक कैसे अपन चेला के समझावता कि अपन हक खातिर छेना लड़े के अर्जुन सोचेला कि वो लड़ाई नहीं सके करी खाए कि जगह से लड़ाई कर तक कुसे है परिवार तो कृष्णा बोले नहीं तो एगो क्षत्रिय हव और क्षत्रिय हो के नाते तो के छेना अपन धर्म निभाए के ऐसे ही हमियों के छेना अपन धर्म निभाए के हैं जब भाई दुनिया में आने से तो नहीं छा डरे के कि ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए नहीं हमने के छा अपन कर्म करे के धर्म के रास्ता पर जाए के नेकी के रास्ता करे के और अच्छा काम करे के फल की इच्छा नहीं कर फल वो अपने आप आए तो भगवदगीता जो है एक में ढेर कुछ मिलेगा सीखे के हमने की हाँ कि नहीं अब चल अगला गीत सुन आतिश भगीरथी की तो छोड़ के मोरी स्वा और गीत हमें चला होते इस जितना कोई विदेश में हो उनसे मॉरिशस वासी उनसे पर विदेश में पढ़ाई ढेर कोई पढ़ाई करेगा बा ढेर कोई काम करेगा बा जैसे दुबई कनाडा इटली जर्मनी फ्रांस स्वीडन जहाँ कहीं भी मॉरिशस वासी जो है विदेश में हो उनसे और हमने की सुनो तो इंटरनेट के जरिए गीत और नाम अजय और पूनम चिंताराम हो ऑस्ट्रेलिया में रंभा हवन लास्विस में और दीपक यूके ब्राइटन में हवन है गीत सब मॉरिशस वासी जन विदेश में बा और हमने के प्यार से सुना था देवन नदी वाला वनकुवर कनाडा में तय गीत थोड़ो नाम छोड़ के मोरिसुआ

0: कौन सी बात हो बे बेटा? छोकरिया पसंद बात हो के?
1: हाँ दादा, हमार बगल से तो हाँ बा।
0: एक बगल से तो मुंह मीठा करी जा और छोकरी से पूछी था तेरी सर। कहाँ बोला था वो बेटी? तोहरा भी पसंद बा? शर्मा हो नहीं बोला ना? तब ना के बात बोली? पसंद बा तोहरा?
2: हाँ, पसंद बा।
0: तेरी बोल यार।

0: 800 and 19 floors. This is Radio Mauritius.
1: Continuous music. RM3.
2: भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. दो घंटों का सुरीला सफर पोएटो पीमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पोएटो पीमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास.

संगतेरो घड़ी में डाला ही बखत रात के ठीक 10 बजल बा तू सुनाते हुआ रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन और हमने के दिखाते हुआ रेडियो मॉर्शस के टिकटॉक पेज पर जहां अभी लाइव चली टिकटॉक पेज रात के 11 बजे ली और जलसा गमत हंगामा तो होते रही रात के 11 बजे ली अगला गीत किशोर खिमिया की आवाज जलसा लालबा है कि जो हमने चलावते इसे ही सब संगत चालू खातिर जो हमने के साथ जुड़ा हवन जाप हवन सुभाष मोती शारीश आकाश अविनाश लखन बीना बीना के उससे कर दुगो बेटा और घरोला और है कि जो चलावते स्टेसी खातिर दया नमस्ते सुरेखा विदेश बहादुर रेनू रेशमा मधु रेहाना जमन एनरिको बाटिस निर्मला स्वरूप रोजिफिनेट वुलया नरगिस नौबत अंजनी विदेव्याप रानी और नाशा जीना साथ में सनबीर के साथ हैं हेलो सन संध्या नमस्ते कैसी समाचार वनाशा जीना बीम के साधुवन रीत आशीष बॉस स्काई 26 समरुद्दीन मनीन पांड्या वो भी इनके दिखाते वन रेडियो मॉर्शस के टिकटॉक पेज पर और बुलतन प्रताप जी क्या बात है देविका भी बहुत प्यार से इनके दिखाते वन और सुनाते वन रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन पर मिजाब बीबी गुडो माधवी हेलो वश्ती नितिशा मिजाब बीबी लेओ फिर मही नारायण आई गीत तोरो नाम जलसा लालबा फ्रेंकी भी ये गीत पसंद करता था और जितना कोई भी रात की थोड़ा नींद नहीं लगता था गीत तो लोग के नाम जलसा लालबा

इस दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं रह बा तो आसान बात नहीं बा बहुत जरूरी है पढ़ा लिखा रहे कि आज की दुनिया में और ये खातिर हमने बोला सर कि सब कोई के चाहला खूब पढ़ा लिखा रहे कि अगर वो बीए कर ले हुआ या एमए कर ले हुआ तो यह नहीं रोकिया अपन पीएचडी रे अपन पढ़ाई करिया रिसर्च करिया और जितना तू पढ़ा लिखा रहा उतना अच्छा बात है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा आदमी लोग के मूर्ख बनावेला और आदमी लोगों के एक्सप्लॉयटी करेला तो पढ़ल लिखल जो है बहुत जरूरी है दुनिया में और बेशक यहाँ पर ही हमने तो लोग के साथ दे होते इस रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर फिर टिकटॉक पेज पर हमने के लाइव चलाता है प्रसारण जहाँ पर हमने के दिखाता हुआ और हमने तो हमेशा आस पर रहते इस अगला गीत सोचे कि अंजू गीत आगे लग एक फिलोसॉफिकल सॉन्ग है और एक गीत चला होते इस सब संगत यालों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल वंजा और ऊहवन दिनेश मगर सुमन प्राणी ट्विंकल माधवी बुदाई यश शास्त्री तेनगव रेशमा उषा कुंज बिहारी हेलो उषा और ये गीतवा ट्विंकल खातिर पृष्टि हंसनी अर्जुन रजनी रजनी की ओर से गीत चली और बेटी पूजा दामाद अविनाश पति मान और है गीतवा चलावत इस देवन नदी वाला खातिर राधे राधे राधे राधे दिव्य नदी वाला उकाम पे हवन और एंजॉय करते हवन रोशन साहब गीत तोहरो नाम नमस्ते जी उमिला जोदा श्रोते और वंदेवेल मिलन पुन मगर जितेन दुलुआ देवी पाम सूरज और साथ में भावना की ओर से गीत चली ओकर सब परिवार के नाम संदीप गीसाओ गोल्डन ब्रश और जितेन दुलुआ है गीत चली राज दुलुआ खातिर और सब परिवार के नाम और है गीत चाहते सर जुआनीता के नाम और अभी को संगत

0: लाइन पे एक बार से मीरा अफजा। हेलो हेलो
1: प्रताप जी।
0: हेलो नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते।
0: के हवा जा
1: हम रोजबे से मनु है।
0: हाँ मनु कैसे समाचार?
1: ठीक बस सब तो हर दिन
0: है। चलो तो धीरे धीरे हॉली हॉली बोला।
1: धीरे धीरे हॉली हॉली शनिवार को लाइन नहीं खुली रहा।
0: नहीं लान खोले रहीसा और पापी में लिखा था दिशा तो नाम बोला था दिशा। हाँ डायरेक्ट मजे ऐसे नहीं पास कर तेरे पास कब जब ढेर कॉल रहे तो पहले हाली हाली लिखे के ना
1: वो खाते।
0: हाँ अरे बोला था
1: सबके
0: बता जीवन
1: लागे
0: कौन नाम
1: बाबा
0: कौन नाम बा
1: ठीक ओके दिवेश दिवेश आगन बहू के हां जी के शादी जीवा हुए दे से समय उनका पापा हवान उनका पापा उनका माँ है कविता उनका पापा राज उनका बहन हवान और सब आगन परिवार के लिए अब राखी बा।
0: हाँ रक्षाबंधन अभिनंदन
1: रक्षाबंधन अभिनंदन हमारे तीन गो भाई के डालिया राजन राकेश राजेश हमने अपनी पांच जो बहन है सब सुबा देवी बसंती हम है।
0: कितना भाई बात और
1: तीन गो भाई बा
0: तीन गो भाई कई गो बहन
1: पांच गो बहन है सब
0: पांच गो बहन
1: हाँ पांच गो बहन तीन गो भाई और मनोरंजन के शुभकामना देवा था।
0: हाँ रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती एक बारिश होगा।
1: हाँ रेडियो मनोरंजन हमके जब बहुत दिन भर हम सुनी ला घरे रही ला ना
0: हम
1: अच्छी बेबे के देखी ला तो हम दिन भर सुनर करी ला बहुत अच्छा
0: ओके
1: हाई लाइन वा खुला बहुत हमके अच्छा लगे ला दिन के सब गीत झल हम लिए अपन जवानी याद करी ला
0: सब गीत सुन के सच्चे के सच्चे बोले तो
1: सुन के सब जवानी याद करी ला
0: ऐसे उदास नहीं रे बस खस में नहीं रे गाजवा खेलर करी गीत वा सुनर कर बा।
1: हां गीत वा हां सुनर करी ला सा जोड़ी जोड़ी सांते झल हाई सम गीत वा सुनी रहा सा तो बहुत अच्छा लगेला
0: बिरा तो के तो गमत होते रहेला।
1: हाँ गमत होते रहेला तम तीन को भाई के अभी राखी तो हो के सब परिवार
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: रक्षाबंधन अभिनंदन और एक शुभकामना दीप सब भाई लोग के अच्छा से रही भगवान सबको के निमन से गुण हाथ निमन से बनाई ले रही माप जाप नहीं बदल हमने पांच गो बहन जिनको भाई ये मिलजुल के रही ला सा।
0: हाँ बड़ा आदमी तो सब चल जाता का कर।
1: हाँ हमार बेटी ओकरो बोल देवत है राती बा रीना बा उ लोग अपन भाई के बंधाए कविराज गंगा
0: अभी चला लो मन से के यन से अभी
1: नहीं काला होता
0: काला काला इनसे तो भाई यन से वीकेंड
1: काला होता तब बहुत धन्यवाद शुभ
0: शुभ रात्रि तोरो
1: शुभ रात्रि आपको भी
0: रक्षाबंधन अली बाबा आली बहुत धन्यवाद उनसे बात कर ला रजनी अपन भाई लोग खातिर गीत मंगले वन और रजनी की ओर से गीत चली दामाद अविनाश दीनदयाल और बेशक देखा गीतवा चुन मंगले हुआ तो आगे थे को गीत मंगला गीतवा क्लासिक होगा समय रही तो जरूर चलाओ अब सर कहे कि जैसे तुरंत अभी मिसाज भिजा करा तो और मिसाज भिजा करला से पहले देर कोई टेलीफोनिक करके गीत मांगने ले हूँ सर निराश नहीं हो या समय रही तो जरूर गीत आ रहा पर गीत अभी क्लासिक हो गल बा ठीक बा थोड़े आगे थे कोई सुनने का लग है नाराज नहीं हो रहा रजनी सब काम को फांसी से होला अगला कि सुल्तान या वंदा गीत और नाम यशवीर फिर गीत चली सुनीता अनीता के नाम और ये गीत हुआ चलाओ थे संदीप गीसाओ के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ पद्मिनी काउदेन हेलो पद्मिनी है गीत और नाम और ज़िंदगी में कबो कबो बैठ के पहला सोचेंगे कि कैसे जिंदगी ई मोड़ पर चला कि कबो कबो कोनो इवेंट में होला अपने खिलाफ में तो बैठ के सोची रह ना चिंतन मनन कई रह सा कब कबो अच्छा है बैठ के सोचे के कि कैसे कौन सी होल बा कैसे हुआ था और आगे कैसे होई। हाँ तो एगो रिफ्लेक्शन है चला गीत सुने अंजू की आवाज़ और जितना कोई भी ड्राइव करता है धीरे धीरे अपन गाड़ी चलाइए और हमने के साथ दे कोई जब भी काम पे जाता दे कोई काम से वापस लौटता धीरे माना जगह में काम होता पुलिस स्टेशन में मेटेरियल सर्विसेज में फायर सर्विसेज में अस्पताल में क्लिनिक में डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर काम करता सिक्योरिटी गार्ड्स को काम करता कॉल सेंटर में धीरे कोई काम करता सोफिया लोग काम करते वन सर पासाजेरे के जाते पासाजेरे के आवत वन सर taj gito lo ke nam e gito asunia e karme e go reflection ba e go filosofi ba tela gito asune anju ke awa

हाँ दिन सबको छोड़ छाड़ के जाए की बा कौन चीज नहीं निकाय सर कौन चीज निकल जाब सर अगला गीत वंदना वंदना तू हमार सुना और गीत हमने चलावती सर विश्वानी जो नवन वो भाषा से गीत तोर खातिर सेव एंजल उमिला जोदा दान सुल्तान याया और रजनी गीत तोहर दामाद अविनाश दीनदयाल और तू गीत मांग वंदना वंदना हमार सुना त गीत अभियावत गीता जाबुल गीत और नाम उमिला जोधा जैस श्यामा बिपिन बिपिन बी लवना और ओके हाँ बिपिन मॉरिशस में नहीं बा मॉरिशस से बाहर हो जा और राइट संगीत है तो है गीत का तो खाते सुनीता और परमानंद खातिर श्यामा है गीत तोहर बेटा के जन्मदिन के अवसर पर तो हैप्पी बर्थडे बेटा ढे मना प्यार ढे मना आशीर्वाद और सूरज खातिर उमिला जुदा के अवसर सूरज खातिर गीतवा चली और मिस्टर मंगल के साथ वो तो वन और ही गीतवा चलाते सर रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती खातिर है दोनों राज्यों के एक साल हो गल और किरण जैसा कि गाटू कटली सा गाटू खैली सा गालू गाटू पता से कर ली सा तेमबीसी रेडियो के दुगो जो रेडियो हब जवान हो गलवन सा एक बरिस हो गल एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती और रेडियो मन

मनोरंजन। बहुत बहुत बधाई टू द होल टीम जितना कोई काम कर रही राज्य में, राज्य में हम काम करी जा और जय प्रताप सिंह ढेर कोई काम करा जैसे अजय परिबा और जय सुमिता बा रोशनी बा रत्ना बा अभी बा विकास बा द होल टीम और जो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती जो है कर एक साल हो गल बात कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई हो बधाई। चल एक साथ सुने वंदना वंदना तू हमर सुना

आज के नारी जुन्हा कदम से कदम मिला के पुरुष के आगे बढ़ते जाता नारी हर क्षेत्र में बा निज काशों में एग्रीकल्चर में इकोनॉमी में कॉमर्स में ला सांते में ते नारी जुन्हा ओके कर स्थान हमेशा से मिला रहा हमेशा रही और इसे ही चला आगे बढ़ते जाए के और आज के पढ़ लिखल नारी जुन्हा सके को देश के भी चलाए सके दुनिया के भी चलाए और नारी नहीं रही तो पुरुष अधूरा बा नारी चहला देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन तो सब नारी लोग के प्रणाम जो माँ स्वरूपा हवन से नारी की ढेरू बा माँ बहन बेटी भौजी बहू हो कि नहीं तो नारी जो है उस शक्ति के प्रतीक है नारी जैसे शक्ति की पूजा कही रहा सर दुर्गा माँ बा सरस्वती माँ बा काली माँ बा तो नारी के सम्मान चहना करके जो घर में नारी के सम्मान नहीं होला वो घर में देवी वास नहीं करेला हो कि नहीं तो चला अभी अगला गीत सबसे नारी गीत अगर ज़्यादा गीत आ गई रेवन और गीत चली माला बहू के नाम अब्दुल शरीफ दीप वंदना गुमानी कर घरोला और कलिका लो खातिर चांद भाई है गीत और नाम रांद्रियाम है गीत और नाम अजीत सवारत है गीत खासम खास तौर खातिर फाली लक्ष्मी है गीत चली अनिरुद्ध के नाम कर जन्मदिन बा कल हैप्पी बर्थडे अनिरुद्ध है मना प्यार आशीर्वाद और आशा करते हैं अनिरुद्ध की है जो जन्मदिन है तो हर जिंदगी में ढेर सारी खुशी और प्यार मोहब्बत लाए और तोहर लंबी आयु हो तोहर स्वास्थ्य अच्छा रही इंदिरा हम ठीक हैं तू कैसे हो खेमराज गीत तोरो नाम इंदिरा के नाम भी और जितना भी हमने लिखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के और जो कुछ सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर गीत तोरों का इंदिरा की ओर से गीत चली खासम खास श्रीमान राजेश उगर के नाम और सब उगर परिवार के लिए सरिता भी उनके साथ हो तो हाय सरिता गीत तोहरो नाम नारी

आदमी कभी इधर भागेला कभी उधर भागेला बड़ी चंचल है आदमी अगर मानने को जगह नहीं रहेला भक्ति रहेला भक्ति रहेला भक्ति रहेला और अगला गीत भक्ति रहेला आदमी चंद्र जी जी बोधन गीत गए सरी का चेता का गीत और खातिर लकी वुमन गीत और नाम कवि कविराज वीना अनिता संद्री नेरा वीना बबीता निमन सतीश कुमार डॉक्टर जाक फिर जानकी बसात परिवार गीतरी जयराज रानी अंतेश अंकुश स्नेहा और सब दुलाव परिवार के नाम आप हो नालमाटी से और मिशन क्रॉस हो नालमाटी से रविराज सिन्हा बिचुक की ओर से कर गीत कर पत्नी स्वयं प्रभा बिता प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम हेलो एमबी है गीत तोहरो नाम और खेम राजगिरी गीत तोहरो खाती चलावती सा दिनेश गोपी और सब गोपी परिवार के नाम अयोगी चली रावीश मंदु कैसे बा समाचार रावीश गीत तोहर खाती तोहर पिताजी तोहर माताजी तोहर भाई भौजी और सब मंदु परिवार के नाम और जितना कोई अभी भी रेडियो सेट ऑन कर लगबा तय गीत तोहरो नाम भागते रहे आदमी

संगत यालोग बंधु मोहम्मद खालिद के गावल थोरा जिले है जो के संगे हमने के तुलों के साथ पूरा हुआ था रात के 9 बजे से अभी हम के साथ दिला जाए हमने के टिकटॉक पेज पर देख ला रेडियो वर्सेस रेडियो मनोरंजन पर सुनना गीत मंगला जाए एसएमएस फोन कॉल्स खातिर शुक्रिया 11 बजे सुन बचा अगला कार्यक्रम सुनहरे पल और के प्रस्तुत हाँ सुनहरे पल प्रोग्राम सुन बजा और कर बाद रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने के दोनों की मुलाकात हुई कल बीफे के साथ के 4 से 5 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही दिल से मेरे दिल रोमांटिक गीत के कार्यक्रम कल तक हमने की इजाजत अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको के नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल बाय बाय नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार, हमारे

प्यारे प्यारे हियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त यानी कि गिनिशा, लेकर आ गई हूँ यादों से भरा एक खूबसूरत सफर सुनहरे पल में। हम साथ मिलकर सुनेंगे वो पुराने बॉलीवुड गीत जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और चलिए लौट चलते हैं उन हसीन लम्हों की तरफ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

कभी कभी एक पुराना गाना सुनते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। बचपन की वो यादें, पहला प्यार, दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं लम्हों को फिर से महसूस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आने वाले हैं हर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी कहानी जो खासकर आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

रेडियो मॉरिशस के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी दिल को छू लेता है तो ये महफिल सिर्फ आपके लिए है। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत, वो अमर नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल आइए मिलकर संगीत भरी शाम को यादगार बनाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में ऐसे ऐसे गीत हम पेश कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वो गीत जो हर खुशी में साथ रहे, हर गम

सहारा बने। सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है, लेकिन अगला गाना जो हम पेश करने वाला है ना, I'm pretty much sure कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और वो भी दिल से। हम आपका साथ देंगे रात के 12 बजे तक, सिर्फ यादों और संगीत की दुनिया में खो जाइए हमारे साथ।

हर गीत एक एहसास है, हर धुन हमेशा एक कहानी सुनाती है और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूँ गिनिशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं।

0: क्यों?
1: इसलिए कि भौरा तुम्हारे हसीना उड़ाए,
0: बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना।
1: क्यों?
0: इसलिए

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: मोहब्बत के लब में तुम भी लगाना।
0: क्यों?
1: इसलिए कि

0: ना।
1: क्यों?
0: इसलिए के शर्मा
2: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौर में अगर कुछ हमें सुकून देता है ना तो वो होते हैं संगीत। और जब बात हो पुराने बॉलीवुड गीतों की तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। तो चलिए आज मिलकर उन्हीं मधुर गीतों के साथ यादों के सफर पर निकलते हैं सुनहरे पल में।

खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनाते सुनाते. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू. बिल्कुल जी, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि दोबारा फिर से लौट के आप आए आपके लिए एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना जी.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: क्या कहा?